एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 अगस्त सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

हम बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार, और समाचारों के ठीक बाद विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राज मार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब सरकार पर राज्य में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री पात्रा ने कहा कि बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की जुलाई की इस परीक्षा के परिणाम पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने सवाल उठाया कि परीक्षा को पहले क्यों नहीं रोका गया और क्या इसे दोबारा कराया जाना चाहिए। श्री पात्रा ने दावा किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां पंजाब सरकार के उस पुराने बयान के विपरीत हैं जिसमें पेपर लीक से इनकार किया गया था।
2: पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने सच्चाई आई। एग्जाम को रोक दिया गया है, उसके रिजल्ट अभी नहीं निकलेंगे और विषय अगली हियरिंग तक जा रहे। ये दिखाता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी, इनके दोहरे मानदंड हैं।
0: उधर झारखंड में कई दौर की वार्ता और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और आंदोलनकारी विद्यार्थियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। विद्यार्थी वर्ष 2024 की JSSC CGL परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं।

के माध्यम से 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियां हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी सीआईडी जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। आवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की कथित ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव क्षेत्र में कथित हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त कार्रवाई समिति के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया कि लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, सीखना कभी बंद ना करें, हर दिन एक नया पाठ सिखाता है। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

इसी के साथ आज का वंदनवार कार्यक्रम संपन्न होता है।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आइए जानते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अब से कुछ ही पलों में यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 279। 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा। कलाकार हैं गायिका शुभा मुग्दल। सुनिए इस श्रृंखला का 13वां भाग। प्रस्तुति है कांचन प्रकाश संगीत की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। 7 सुनिए भूले बिसरे की। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी। 8:30 पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर कार्यक्रम पेश होगा आज के फनकार। कार्यक्रम आधारित है अभिनेत्री वैजंती माला पर। प्रस्तुति रमेश गोखले की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। सुबह 10 पिटारा में आप सुनेंगे आज के मेहमान में लेखक निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का 2रा भाग। संपादन सहयोग है मनीषा सिंह का। प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। 11 सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 पर यादों की महफिल। 1 से तय करेंगे सुरीला सफर। 2:30 पर सुनिए सदा बहार नगमे। 3 सखी सहेली। 4 हेलो फरमाइश में। संवादन है मंदाकिनी जोशी का। प्रस्तुति राघवेंद्र नेकी की। 9:00 नए पुराने कार्यक्रम सुनिए 5:30 पर। 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन। 7 जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए इनसे मिलिए। साउंड इंजीनियर और वॉइस आर्टिस्ट रूपाली सुरवे से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत। 8 सुनिए हवा महल में झलकी तमाशा। लेखन निर्देशन है गुरमीत रामल मीत का। 8:15 पर सुनिए रात्रि चित्रलोक। 9 आपके लिए और 10 सुनिए छाया गीत।

और 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

सीता की खोज में जाने को उद्यत पवन पुत्र हनुमान ने बार बार श्री राम का नामस्मरण करके सागर के समीप स्थित पर्वत पर से जो छलांग लगाई तो पर्वत पाताल में जा धंसा। प्रभु के अमोघ वाणों की भांति उन्हें लंका की ओर बढ़ते देख देवताओं ने उनके बल और बुद्धि की परीक्षा लेनी चाही और इसके लिए उन्होंने सर्पों की माता सुरसा को भेजा। मार्ग रोक कर सुरसा ने अपना विकराल मुंह खोल दिया और बोली, बहुत दिनों बाद देवताओं ने मेरा आहार भेजा है। हनुमान बोले, हे माता, मैं श्रीराम का कार्य करके लौट कर स्वयं तुम्हारे मुंह में आ जाऊंगा, अभी मुझे जाने दो। किंतु उनकी विनती की अनसुनी कर सुरसा ने चार योजन में अपना मुंह खोल दिया। पवन पुत्र ने अपना आकार 8 योजन कर लिया। सुरसा ने 16 योजन में मुंह खोला तो हनुमान 32 के हो गए। उत्तरोत्तर बढ़ता सुरसा का मुंह 100 योजन का हुआ कि पवन पुत्र अत्यंत लघु रूप धारण करके उसके मुंह में जाकर बाहर आ गए और नतमस्तक होकर सुरसा से विदा मांगी। सुरसा ने पवन पुत्र के बलबुद्धि की था पाली थी। आशीष देकर उसने कहा, श्री राम का काम तुम अवश्य पूरा करोगे।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 279।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

मामला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। इनसे बातचीत कर रही हैं कांचन प्रकाश संगीत। वर्षा चौमासा।

0: वर्षा चौमासा श्रृंखला में आज की कड़ी है 13वीं कड़ी। कल मैंने कहा था कि कजरी को लेके मन में एक सवाल है। आइए शुभा जी से पूछती हूँ, आप भी सुने और क्या कहती हैं मैं भी सुनूं। शुभा जी, कजरी कहने से जो कुछ अर्थ का बोध होता है
1: जी,
0: तो क्या क्या है इसका जो भावार्थ?
1: अलग अलग मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कजरी जो शब्द है उसका सीधा संबंध कजरा या काजल से है, और जिस प्रकार वर्षा ऋतु में उमड़ने वाले बादल कजरे के समान काले होते हैं, वैसे ही उसी प्रकार का साहित्य कजरी में आपको मिलता है, इसलिए कजरी या कजली भी कहा जाता है इसे। और कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि मिर्ज़ापुरी कजरी बहुत प्रचलित है, लोकप्रिय है, तो मिर्ज़ापुर जिले में विंध्यवासिनी देवी का स्थान है, जिनको कजली देवी भी कहा जाता है
0: जी।
1: और श्याम रंग श्याम वर्ण की देवी हैं वो, उनके लिए ये चीज़ें गाई जाती हैं, इस कारण
0: कजली देवी।
1: जी, कजली देवी।
0: हाँ, हाँ।
1: तो उसका भी एक संबंध इसके नामकरण से है। तो ये अनेक ऐसी चीज़ें मिलती हैं, कुछ कथा कुछ किंवदंती कि कैसे इसका नाम कजरी पड़ा।
0: काले बादल जब आकाश में छा जाते हैं तो पूरा वातावरण ही कैसा स्याह स्याह सा, गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है ना, और वाकई मन में फिर हूक उठने लगती है। फिर वो संयोग श्रृंगार हो, वियोग श्रृंगार हो, उसकी जो मिठास है
1: जी, बिल्कुल,
0: वो मिठास मुझे लगता है कि इस कजरी में
1: जी जरूर
0: खुल जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आज आप क्या फिर से एक आध कजरी और सुनाएंगी?
1: एक कजरी का चयन किया है मैंने, भोजपुरी की कजरी है ये, और इससे मुझे जो एक बात याद में आई वो ये कि हर ऋतु के लिए अलग जो परिधान है वो भी बदलता है। अब अगर ग्रीष्म ऋतु में हम रेशमी कपड़ा पहन लें तो

0: गर्मी लगेगी, या बहुत
1: जी
0: मोटा कुछ कपड़ा पहन लें, शॉल इत्यादि पहन लें तो गर्मी लगेगी। उसी प्रकार जब वर्षा ऋतु है तो किस रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, ये भी इन गीतों में, हमारे भारतीय संगीत में ये भी आपको पता चलता है।
1: कितनी अनूठी बात है।
0: जी
1: हाँ
0: पूरी एक संस्कृति का चित्रण होता है।
1: जी
0: तो कौन सा पकवान, कौन सी चीज किस ऋतु में खाई जानी चाहिए, कैसी चीजें बननी चाहिए, क्या रीति रिवाज हैं, वो सब इनसे पता चलता है। तो इस कजरी में ये कहा गया है कि रंग दे गुलाबी मोरी साड़ी रंगरेजवा।
1: मतलब ये परिधान का संबंध प्रकृति से जुड़ा गया है
0: बिल्कुल
1: इसमें, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है।
0: बिल्कुल।
1: जी
0: तो वो कहती हैं कि रंग दे गुलाबी मोरी साड़ी रंगरेजवा, बीचे बीचे रंगी है गुलाबी रंगरेजवा, मतलब साड़ी का जो जो बीच का जो हिस्सा है उसे तो गुलाबी रंगिएगा, लेकिन धानी रंग रंगी है किनारी रंगरेजवा। उसमें धानी किनारी होनी चाहिए,
1: हाँ
0: बॉर्डर जो है वो
1: जी
0: धानी रंग का होना
1: जी
0: चाहिए। सरिया पहर हम बगिया में गईली, जब साड़ी पहन के बाग में बगीचे में गए, पड़े लागल सावन के फुहारी रंगरेजवा,
1: वाह
0: भीग गई चुनरी वर्षा में। रिम झिम बरसे बदरवा, लागेला हिंडोला डारी डारी रंगरेजवा।
1: बहुत खूब,
0: झूले भी पड़े हैं,
1: वो भी डाली डाली।
0: हाँ हर हाली
1: हाँ
0: पे झूल झूल झुलवा पर गावे कजरिया, उस पे झूले पे बैठ के कजरी गाई जाती है। झूली झूली झुलवा पर गावे कजरिया, पिया संग सुंदर नारी रंगरेजवा।
1: वाह
0: तो ये
1: वाह,
0: चीज आपको सुनाना
1: वो
0: चाहूंगी।
1: नारी तभी सुंदर होती है जब वो पिया के संग होती
0: संयोग में।
1: है। शुभा जी, आप मुझे ये तो कजरी हम सुनेंगे आपसे, लेकिन मिर्जापुरी और बनारसी कजरी के बीच जो भेद है, कुछ गाने का भेद है।
0: भाषा का ज्यादा भेद है, जैसे कि आप जानती हैं कि हर कुछ किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, तो बनारसी बोली और मिर्जापुरी बोली,
1: जी
0: और उसी तरह भोजपुरी की भी कजरा, इनमें भाषा का ज्यादा,
1: चार कोस पे पानी बदला, आठ
0: हाँ
1: कोस पे
0: भाषा भी
1: पानी, इस
0: बदली,
1: तरह से।
0: और धुन भी जो है वो पारंपरिक जो धुन है
1: जी
0: वो अलग अलग बदली बदलती
1: तो
0: जाती है।
1: अभी ये जो कजरी आपने सुनाई है,
0: जी
1: जो शब्द बताए हैं, वो मिर्जापुरी।
0: ये भोजपुरी कजरी है।
1: जी
0: जी।

0: शुभा जी, मैं श्रोताओं के साथ कल के लिए इंतजार करूंगी। आज यहीं रुकते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वनियांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

नमस्कार, भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं टैक्सी ड्राइवर फिल्म के इस गाने के साथ। आशा भोसले की आवाज में साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक

आप सुन रहे थे नास्तिक फिल्म से इस गाने की झलकी, लेकिन इसके पहले आप सुन रहे थे शबाब फिल्म का गाना शमशाद बेगम और साथियों की आवाजों में शकील बदायूनी के बोल नौशाद का संगीत। आइए अब सुनते हैं नास्तिक फिल्म से वो गाना जिसकी झलकी आपने सुनी थी लता मंगेशकर की आवाज में प्रदीप के बोल सी रामचंद्र का संगीत।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियाँ फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के सुनिए बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला गाना बूट पॉलिश फिल्म से मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में शंकर जयकिशन के बोल, संगीत है शैलेंद्र का।

0: अभी आप सुन रहे थे बूट पॉलिश फिल्म से ये गाना। इस गाने के बोल शैलेंद्र ने लिखे थे और शंकर जयकिशन का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे अमर फिल्म से ये गाना, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गीता दत्त की आवाज में आप सुन रहे थे आर पार फिल्म से ये गाना, मजरू सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे आकाशवाणी मुंबई का प्रसारण विविध भारती के कार्यक्रम हम बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

सुनने वाले आप तमाम श्रोता दोस्तों का नमस्ते रोहतास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में सबसे पहले आज का सुविचार। आप जो भी सोचेंगे

आप वही हो जाएंगे। अगर आप खुद को कमज़ोर सोचेंगे तो आप कमज़ोर बन जाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि आप शक्तिशाली हैं तो आप शक्तिशाली बन जाएंगे। स्वामी विवेकानंद।

और अब आइए एक नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर। आज यानी 13 अगस्त ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 13 अगस्त वर्ष का 225वां दिन है, यानी साल में अभी और 140 दिन शेष हैं।

13 अगस्त के इतिहास के झरोखे हम देखें तो आज के ही दिन यानी 13 अगस्त सन 1784 में भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए पिट्स इंडिया विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश हुआ। भारत में निर्मित पहले विमान हिंदुस्तान ट्रेलर 2 ने पहली उड़ान भरी आज के ही दिन यानी 13 अगस्त सन 1951 में। सन 1956 में आज के ही दिन राष्ट्रीय राजमार्ग लोकसभा में विधेयक पारित हुआ। अंतरिक्ष शटल के पहले ग्लाइड का परीक्षण किया गया सन 1977 में आज के ही दिन यानी 13 अगस्त को।

आज के ही दिन सन 1999 में लेखिका तस्लीम नसरीन की पुस्तक आमार मैं बेला मेरा बचपन पर बांग्लादेश सरकार ने प्रतिबंध लगाया। सन 2008 में आज के ही दिन यानी 13 अगस्त को विश्व की प्रमुख इस्पात कंपनी टाटा स्टील ने वियतनाम में संयुक्त रूप से इस्पात परिसर के निर्माण के लिए वहां की दो प्रमुख कंपनियों के साथ समझौता किया। भारत ने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर MBRL वीपन सिस्टम पिनाक का सफल परीक्षण किया। आज के ही दिन यानी 13 अगस्त सन 2008 में

और अब आइए एक नज़र डालते हैं उन प्रमुख नामों पर जिनका जन्मदिन आज है। 13 अगस्त 1984 में भारतीय महिला मुक्केबाज रही हैं। इनका जन्म हुआ 1984 13 अगस्त उषा नेगी सेटी का, गंगा प्रसाद वर्मा, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ रहे हैं। इनका जन्म 1863 में आज के ही दिन हुआ। भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री 1936 में जन्मी वैजयंती माला, आज के ही दिन यानी 13 अगस्त को। भारतीय अभिनेता और निर्माता सुनील शेट्टी का जन्म हुआ आज के ही दिन 1961 में। भारतीय सिनेमा की ख्याति प्राप्त अभिनेत्रियों में से एक रही हैं

देवी। इनका जन्म सन 1963 में आज के ही दिन यानी 13 अगस्त को हुआ। हिंदी सिनेमा जगत की जानी मानी अभिनेत्रियों में से एक योगिता बाली, इनका जन्म 13 अगस्त यानी आज के ही दिन सन 1952 में हुआ। भारतीय अभिनेत्री, खाद्य व यात्रा लेखिका और टेलीविज़न का जाना पहचाना नाम है मधुर जाफरी। इनका जन्म हुआ सन 1933 में आज के ही दिन यानी 13 अगस्त को। नरेंद्र मोहन सेन भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी रहे हैं। इनका जन्म सन 1887 में आज के ही दिन यानी 13 अगस्त को हुआ। रमेश चंद्र दत्त अंग्रेजी और बंगला भाषा के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। ये धन के बहिर्गमन की विचारधारा के प्रवर्तक तथा महान शिक्षा शास्त्री भी रहे हैं। इनका जन्म हुआ सन 1848 में आज के ही दिन यानी 13 अगस्त को। तेरह अगस्त को हुए कुछ लोगों के ऐसे नाम पर चर्चा करते हैं जिन जो आज के ही दिन हमें अलविदा कह गए। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ सोमनाथ चटर्जी, इनका निधन सन 2018 में आज के ही दिन हुआ यानी 13 अगस्त को। भारतीय उपन्यासकार, लघु कथा लेखक तथा फिल्म निर्देशक रहे हैं भवेंद्र नाथ सैकिया, इनका निधन सन 2003 में 13 अगस्त को ही हुआ। भीकाजी कामा प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रांतिकारी, सन 1936 में आज के ही दिन यानी 13 अगस्त को इनका निधन हुआ। अहिल्याबाई होलकर भारत की वीरांगनाओं में से एक, इनका निधन सन 1795 में आज के ही दिन यानी 13 अगस्त को हुआ।

और अब आइए हम आपको लिए चलते हैं गीत और संगीत की दुनिया में, और सुनवा रहे हैं गीत गाता चल फिल्म का ये गीत।

0: आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग देहियों के बुलंदियन के पाख।
1: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
0: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
1: आकाशवाणी का चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता असुलभ।
0: तो बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700014242 पर।
1: जी हाँ, नंबर बा 8700014242।
2: श्रोता दोस्तों, अब आइए नमस्ते रोहतास कार्यक्रम में एक नज़र डालते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर। करगहर बाजार में गुजरना मुश्किल, सड़क के दोनों किनारे कब्जा, 5 साल में 3 CO ने 4 बार अतिक्रमण हटाने का दिया आदेश, हुआ कुछ भी नहीं। हाल में भी नए CO पंकज कुमार ने योगदान दिया। उन्होंने इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाते हुए 5 अगस्त को अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की तिथि निर्धारित की, लेकिन वह भी पिछले आदेश की भांति सिर्फ दफ्तर की फाइलों में तक ही सिमट गई। इस संबंध में अंचलाधिकारी पंकज कुमार जी के अनुसार 4 अगस्त तक बाजार में सड़क के दोनों तरफ से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था। नहीं हटने पर अगले दिन 5 अगस्त को बुलडोजर कार्रवाई की तिथि निर्धारित की गई थी। चेहल्लुम तथा दिनारा में बड़ी घटना के कारण पुलिस बल उप

उपलब्ध नहीं हो पाया, इसी कारण अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं हो पाई। बात सासाराम की, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग भारत सरकार की ओर से स्कूलों की स्वच्छता और हरियाली पर रेटिंग की जाएगी। स्कूलों में स्वच्छता को बढ़ावा देने और बच्चों में स्वच्छ आदतें विकसित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग की शुरुआत की है। इसके तहत 2026 के लिए स्कूलों में आवेदन मांगे गए हैं। जो विद्यालय स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और 6 मानकों पर खरे उतरेंगे, उन्हें 1,00,000 रुपये का नकद इनाम प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलेगा। यह प्रोत्साहन राशि उनकी आधारभूत सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए दी जाएगी। अब बात संझौली की। यहाँ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के बुधवार को संझौली प्रखंड कार्यालय से वीडियो प्रभा कुमारी की अध्यक्षता में प्रखंड भर के पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रभारी राहुल शुक्ला, के मिडिल स्कूल के प्रभारी सुनील कुमार, प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय के प्रभारी कमलेश पांडे सहित स्कूल के बच्चे व शिक्षक, बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। अब आइए विक्रमगंज चलते हैं। यहाँ रामाश्रय प्रसाद सिंह उच्च विद्यालय बड़का गांव के 50 छात्र छात्राओं का शैक्षणिक भ्रमण दल बुधवार को रोहतास किला एवं इंद्रपुरी डैम के लिए रवाना हुआ। भ्रमण दल का नेतृत्व विद्यालय के वरीय शिक्षक राम नरेश पांडे एवं चंद्रमा पांडे ने किया। कैमूर जिले में 15 अगस्त से 15 सितंबर तक सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में प्रशस्त ऐप 2.0 के माध्यम से विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। बता दें कि इस दौरान ऐसे बच्चों की पहचान की जाएगी जिन्हें सीखने, देखने, सुनने, बोलने, व्यवहार या अन्य किसी प्रकार की विशेष शैक्षणिक सहायता की आवश्यकता है। विभाग का मानना है कि इससे जरूरतमंद बच्चों तक समय पर आवश्यक शैक्षणिक और सहयोगात्मक सुविधाएं पहुंचाना आसान होगा। रामगढ़ की बात करें तो यहां अहिवास गांव के बधार में शुक्रवार की सुबह 2 हिरण कुएं में गिर गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना जलदाहा स्थित हिरण रेस्क्यू सेंटर के कर्मियों को दी। रेस्क्यू सेंटर के कर्मी रामेश्वर रविदास, राजेश कुमार, अरविंद कुमार, रविशंकर शर्मा ने कुएं में गिरे 2 हिरणों को जाल के सहारे रेस्क्यू कर बाहर निकाला।

तिलौथू की बात करें तो यहां हुरका में डीएम और एसपी समेत अन्य अधिकारियों ने लोगों को बताई तिरंगे की महत्ता, घरों में ध्वज फहराने की अपील। स्वतंत्रता दिवस वीरों के त्याग की याद दिलाता है। तिरंगा यात्रा अभियान के तहत स्कूलों में भी हुई प्रतियोगिता। सूरजपुरा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर बुधवार को दावत प्रखंड कार्यालय से बीडीओ विकास कुमार, जबकि सूरजपुरा में नोडल सह जिला सांख्यिकी पदाधिकारी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकालकर समूचे मुख्य सड़क और बाजार में भ्रमण किया।

आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा, सफाई, साफ सफाई, बैठने की व्यवस्था, पेयजल, अन्य जरूरी इंतजामों के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

15 अगस्त को विक्रमगंज इंटर कॉलेज स्टेडियम के मुख्य समारोह में अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप कुमार झंडोत्तोलन करेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी जाएगी। विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं परेड प्रस्तुत करेंगे। मुख्य समारोह स्थल पर बच्चों को नियमित रूप से परेड का अभ्यास कराया जा रहा है। जल जमाव के कारण अभ्यास में परेशानी हो रही है। प्रशासन की ओर से भी मैदान को समारोह के अनुकूल बनाने के लिए

शरीर की सुंदरता, शक्ति और संपत्ति अस्थाई नहीं। भभुआ के परसिया में जियर स्वामी ने मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य पर प्रकाश डाला और उन्होंने कहा कि माता पिता का अपमान किसी स्थिति में उचित नहीं। और अब आइए एक नज़र डालते हैं आज के अखबारों की सुर्खियों पर। रोज़ की तरह आज भी हमारे पास है अखबार हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और प्रभात खबर। हिंदुस्तान अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखता है, एलेन मिश्रा संस्थान में 1400 सीटें बढ़ेंगी। ये कहना है माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी का। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आगाज 2026 में घोषणा की, 3000 हो जाएगी सीटों की संख्या बढ़कर संस्थान में। सीएम की प्रमुख बातें हैं, पाटलिपुत्र टाउनशिप में 10 एकड़ में संस्थान का सैटेलाइट कैंपस बनेगा। हर सत्र में 100 छात्रों को एक माह के लिए विदेश भेजा जाएगा। एआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और सेंटर फॉर अर्बन पॉलिसी एंड गवर्नेंस की स्थापना होगी और क्वांटम कंप्यूटर सेंटर का निर्माण भी इस संस्थान में किया जाएगा। कुशल युवा कार्यक्रम को 2030 तक बढ़ाने की मंजूरी, राज्य के 2.57 लाख युवा हर वर्ष रोजगार का प्रशिक्षण लेंगे।

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 950 करोड़। राज्य मंत्रिपरिषद ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को भी अगले 5 वर्षों के लिए विस्तार दिया है, साथ ही इसके लिए 950 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

श्रीलंका में भारतीय पेसरों का टेस्ट, चार तेज गेंदबाजों में से किसी ने नहीं खेला है श्रीलंका में, स्पिनरों की ऐसगाह पिच पर सिराज पर होगा दारोमदार, 15 से गॉल में पहला टेस्ट। महंगाई 19 माह के उच्च स्तर पर, खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने से खुदरा मुद्रा स्फीति 4.45% रही और डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे मजबूत। मौसम की बात करें तो वर्षा 6.0% होने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान आज 34 और न्यूनतम 26 रह सकती है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 75%, न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 45%। हवा की गति की बात करें तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, पवन दिशा 130 डिग्री और क्लाउड कवर की बात करें तो 6 ओक्टा पर रहने की उम्मीद की गई है। और अब इसी के साथ नमस्ते रोहतास कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 1446 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे

0: बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया।
1: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
0: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने के लोकसभा के प्रस्ताव का स्वागत किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने यह कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव कंबोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया। याचिका में दावा किया गया कि संगठित धोखाधड़ी रैकेट ने इस परीक्षा में अनियमितताएं की।
2: इस कथित पेपर लीक के कुछ ही घंटों के भीतर पंजाब पुलिस ने फरीदकोट, कोटकपुरा और फिरोजपुर के 25 परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई करके एक अंतरराज्यीय चीटिंग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। पुलिस ने 7 मुख्य साजिशकर्ताओं और 28 उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया था जो इस मामले में सीधे तौर पर शामिल थे। पंजाब सरकार ये कहती आ रही है कि यह घटना पारंपरिक पेपर लीक के बजाय हाईटेक चीटिंग से जुड़ी है। बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल सहित विपक्ष पार्टियों ने आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सहित पार्टी के नेतृत्व पर कथित पेपर लीक को मामूली चीटिंग का मामला बताने की कोशिश करने के लिए निशाना साधा है। विपक्षी पार्टी के नेता जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया कि बमबारी और गोलीबारी में परिसंपत्ति को भी नुकसान हुआ।
3: समूह ने सुरक्षा बलों पर घायल नागरिकों को हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सकों पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। कुछ घायलों की मौत उपचार न मिलने के कारण हुई। ड्रोन और कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर इलाके में गश्त करते दिखाई दिए। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस स्थिति का संज्ञान लेने तथा बलोच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। पिछले एक दशक में कबायली इलाकों में पाकिस्तान सेना के हवाई हमले और बमबारी में अनेक नागरिक मारे गए हैं। मानवाधिकार समूहों ने इन हमलों की कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान का अपने ही लोगों पर सैन्य बल इस्तेमाल का इतिहास रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ओम प्रकाश ने पाकिस्तान के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की खामोशी पर सवाल उठाया है।
4: पाकिस्तान सुराप में वही कर रहा है जो वो दशकों से करता आ रहा है, बलोचों के साथ, पठानों के साथ, सिंधियों और कश्मीरियों के साथ। कितनी आश्चर्य की बात है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय, जो कि हर दूसरे देश में बोलता रहता है, पाकिस्तान पर आके चुप हो जाता है। एक अच्छी बात यह है कि अब बलोच, सिंधी, पठान, कश्मीरी सारे एथनिक ग्रुप्स अब मिलकर आवाज उठाने लगे हैं, एक दूसरे के साथ ताल मिला के। ये निश्चित रूप में एक आशा का किरण है।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है।
5: कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव, क्षेत्र में हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने पर सवाल उठा रहे हैं। कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शनों में लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आज उड़ीसा में तेज वर्षा होने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज और तेज होकर डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके असर से उत्तरी ओडिशा, खासकर बालेश्वर, मयूरभंज और केंदुझर में लगातार भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में बालेश्वर में लगभग 137 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भद्रक, अनुगुल, जाजपुर और ढेंकानाल जिलों में भी भारी बारिश हुई है। इस बीच कोरापुट जिले के नंदापुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले डारे गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे।
7: अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान न केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक का प्रतीक है, बल्कि कलाकारों के निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को भी मान्यता देते हैं। अकादमी फेलो के सम्मान में 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जबकि अकादमी पुरस्कार में ताम्र पत्र और अंगवस्त्रम के अतिरिक्त 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फेलोशिप के लिए चुने गए लोग और पुरस्कार विजेता भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरजू के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: झारखंड में 14वीं JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का ये मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुँच गया है।
8: 14वीं JPSC परीक्षा में कथित विसंगतियों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अभ्यर्थी पूरी तरह लामबंद हैं। इसी कड़ी में रांची में JPSC JSSC रिफॉर्म मंच की कोर कमेटी की एक अहम बैठक हुई। बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर गहन चर्चा की गई और छात्रों ने मांगे पूरी होने तक अपना प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प दोहराया। उधर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पिछले दिनों हुए लाठीचार्ज का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। भारतीय पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर झारखंड सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया और पूरे विवाद की CBI जांच कराने की मांग दोहराई। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम।
0: केरलम में आज 3 स्थानों पर सशस्त्र बल के बैंड संगीत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में ये संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
9: नौसेना और वायुसेना आज तिरुवनंतपुरम, कणूर और कोची में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए बैंड का प्रदर्शन करेगी। इसमें तालमेल और अनुशासन के साथ देशभक्ति और लोकप्रिय गानों का प्रदर्शन होगा। वायुसेना का बैंड तिरुवनंतपुरम के निशा गांधी में, कोची सदर नेवल कमांड बैंड एर्नाकुलम के लुलू मॉल में और एजीमाला नेवल अकेडमी बैंड कणूर के थाजे चोवा में प्रदर्शन करेगा। ये कार्यक्रम आज शाम 6 बजे शुरू होंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है।
10: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने कहा कि बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास में सहयोग करने और अफगानी खिलाड़ियों को उच्चतम प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान ने इस वर्ष जून में भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला खेली थी। दोनों टीमों ने जनवरी 2024 में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला भी खेली थी। भारत ने 2018 में अफगानिस्तान के ऐतिहासिक पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की मेजबानी की थी और तब से दोनों

0: टीमें विभिन्न प्रारूपों में नियमित रूप से परस्पर मैच खेलती रही हैं। समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। संसद के मॉनसून सत्र में छात्रों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के शब्द सभी अखबारों ने प्रकाशित किए हैं। अमर उजाला लिखता है, संसद में हर मुद्दे पर जवाब दूंगा, विपक्ष बहस शुरू करे। पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोप साबित, संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। लोकसभा जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जलते नोट सुलगते सवाल, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं को दी गई सीख प्रकाशित की है, रील के दौर में युवा शॉर्टकट नहीं मेहनत का रास्ता चुनें। प्रधानमंत्री ने कहा, रेलवे स्टेशन पर लिखी बात अवश्य याद रखें, शॉर्टकट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कर्नाटक में गुटखा पान मसाला बनाने बेचने और रखने पर रोक, स्वास्थ्य के लिए सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, भारत में तंबाकू जनित बीमारियों से हर वर्ष करीब 13 लाख से अधिक मौतें होती हैं। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर शिक्षा से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर न रहें स्कूली पढ़ाई, चित्रों और शब्दों को मिलाकर अपनी कहानी गढ़ने समझने जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए तो ये खेल खेल में सीखने जैसी प्रक्रिया होगी। दैनिक जागरण ने CBSE द्वारा पूरक परीक्षा के परिणाम जारी करने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, CBSE 12वीं की पूरक परीक्षा का परिणाम जारी, 53.8% विद्यार्थी हुए पास, डिजी लॉकर और CBSE की वेबसाइट पर देख सकते हैं परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बच्चों को घर से निकालने का आदेश सही बताया, कहा बुजुर्गों को मिलने वाले सम्मान से ही सभ्य समाज की होती है पहचान। पीठ ने कहा, अनुभवों का खजाना होते हैं बुजुर्ग, अमर उजाला की खबर है। आज विश्व अंगदान दिवस पर नवभारत टाइम्स ने विशेष खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश में अंगदान की कमी बनी चुनौती, भारत में मृतक अंगदान की दर प्रति 10 लाख की आबादी पर 1 से कम। पत्र ने एक और सुर्खी दी है, ट्रांसप्लांट के बाद दवाएं मुफ्त देने की संसदीय समिति की सिफारिश, साल भर में जितने किडनी ट्रांसप्लांट उससे 5 गुना मरीज अब भी कतार में।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपर लीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए। और BCCI ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है देशभक्ति संगीत।

0: वतन।
1: हकीकत फिल्म में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को। कैफे आज़मी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी मदन मोहन ने। और अब इसी के साथ देशभक्ति संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है आपके पत्रों पर आधारित फिल्मी नगमों का कार्यक्रम पसंद आपकी।

सुनने वाले आप तमाम श्रोता दोस्तों का पसंद आपकी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, आज आपके साथ है आपका अपना ओम प्रकाश। जी हाँ, पसंद आपकी, जहां हर धुन अपने साथ यादों की एक खूबसूरत कहानी लेकर आती है। हिंदी फिल्म संगीत की सुरीली दुनिया में आज भी वही जादू है जो दिल को छूकर चेहरे पर मुस्कान ले आता है। तो तैयार हो जाइए आपकी फरमाइश और आपकी पसंद के गीतों के इस खूबसूरत सफर को हम शुरू कर रहे हैं इन पंक्तियों के साथ कि सुरों की महफिल सजे, गीतों की बरसात हो, हर धुन में छुपी कोई मीठी सी बात हो, दिल से दिल तक पहुंचे हर नगमा आज, यही तो है संगीत की सबसे खूबसूरत सौगात।

जूली फिल्म के इस गाने को सुनवाने के लिए हमें खत भेजे हैं हमारे ये श्रोता, गढ़नोखा लालगंज बिहार से राजकिशोर सिंह चौहान, बड़क सिंह चौहान और आर के सिंह चौहान। इसी गीत को सुनवाने के लिए हमें खत आया है नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से। इस खत में नाम है मुसर्रत जहां नाज तलत जहां।

नाज फरहत जहानाज रिफत जहानाज नुजहत जहानाज साजिया शाहिन नाज और नारिया नूरी नाज, माफ़ कीजिएगा नाजिया नूरी नाज। और ब्रह्मपुरा मनीगाछी से भाई अच्छे लाल राय, श्रीमती पानो देवी, मुकेश कुमार राय, प्रेम कुमार और प्रिंस कुमार।

दोस्तों, कुछ गीत ऐसे होते हैं जिनकी धुन सुनते ही दिल में इंतज़ार, उम्मीद और अपनों की यादें जाग उठती हैं। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत गीत है, आएगी ज़रूर चिट्ठी मेरे नाम की। तो आइए, सुनवा रहे हैं आपको और सुनिए इस भावपूर्ण नगमे को, जिसमें इंतज़ार की मिठास और दिल की उम्मीद दोनों समाई हुई है। इंतजार और चिट्ठी के बारे में तो अक्सर लोग बातें करते हैं और कहते हैं कि इंतज़ार की घड़ियां भी क्या खूब रंग लाती हैं, इंतज़ार की घड़ियां भी क्या खूब रंग लाती हैं, दूर बैठे अपनों की यादें दिल में मुस्कुराती हैं, एक चिट्ठी की आस में धड़कता है दिल, शायद आज मेरे नाम की खुशखबरी आती है।

डाबवाली मिसप्रिंट है, जेके बकोला, श्रीमती सुनीता, संजय अनिल और मीनू और आप हैं। ताजपुर मोरबा से भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंज राजारियन आरती, पुंज आकर्षण, पुंज जय श्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढोली सकरा से आप हैं जयंत कुमार बैरागी।

दुल्हन फिल्म के इस गाने को सुनना चाहते हैं। मछली गोदाम कैदी मूड़ा रायगढ़ से भाई पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, ऋषभ सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लिल्लू और ऋतु सिंह इसी गाने को सुनना चाहते हैं।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: दोस्तों, कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, बल्कि दिल में उतर जाते हैं। ऐसा ही एक खूबसूरत नगमा है, फूल तुम्हें भेजा है खत में। प्यार, खुशबू और मोहब्बत के एहसास से सजा यह गीत आज भी अपने मधुर बोलों से दिल को छू लेता है। तो आइए, यादों की इसी खूबसूरत खुशबू के साथ सुनते हैं यह सदाबहार गीत, जो कहता है कि फूलों की खुशबू में मोहब्बत का पैगाम आया है। फूलों की खुशबू में मोहब्बत का पैगाम आया है, दिल ने चुपके से फिर किसी को याद किया है। खत तो कागज़ पर लिखा था हमने, मगर हर लफ्ज़ में दिल का एहसास समाया है।

सरस्वती चंद्र फिल्म के इस गाने को सुनवाने के लिए हमें खत मिले हैं थाना मोड़ गढ़नुखा रोहतास से। मुना भाई मंसूरी, नजबून निशा, सद्दाम मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शबाना और शाहबाज जी का। और इसी के लिए और भी खत मिले हैं। ये खत है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के लोग हैं। नाम है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, जीतू, निहारिका और वंश बत्ता। और आप हैं गोला बाजार बक्सर से जयराम बिंद, सीतामुनि देवी, लालसा कुमारी, काजल कुमारी, पद्युमन और प्रीतम कुमार।

0: पसंद आपकी कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से। प्रादेशिक समाचार।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। कुछ देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है। अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं, कुछ नहीं हुआ, दिमाग मनाता है। कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खाई ना पाओ तो क्या फायदा, इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ। पर दिल जिद करता है, खाऊंगा तो पूरा ही। इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन कौन जीतता है, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है। आज से ही खाने में चीनी, नमक और तेल कम कीजिए।
6: खाद्य संरक्षा आयुक्त, स्वास्थ्य विभाग बिहार और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: और इस गीत के बाद
8: छाया की
7: और

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने युवाओं को नए दौर के रोजगार से जोड़ने के लिए कुशल युवा कार्यक्रम को 5 वर्ष तक विस्तारित किया। प्रतिवर्ष 2.5 लाख से अधिक युवा होंगे प्रशिक्षित। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कहा, नवसृजित डिग्री महाविद्यालयों में संविदा पर नियुक्त शिक्षकों को पीएचडी पूरा करने के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त परीक्षा में चयनित 2027 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। और प्रदेश के विभिन्न भागों में हर घर तिरंगा अभियान के तहत किया जा रहा है तिरंगा यात्रा और वंदे मातरम के सामूहिक गान का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अगले 5 वर्ष तक के लिए विस्तारित कर दिया है। इसके लिए 950 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने बीएड कॉलेजों में डिग्री कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। सचिव श्री सोहेल ने बताया कि इस फैसले के बाद मान्यता प्राप्त राज्य के 300 निजी बीएड संस्थानों में अब 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम और कौशल आधारित

0: पाठ्यक्रम संचालित किए जा सकेंगे।
1: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के दिशा निर्देश के अनुसार लगभग 300 हमारे जो स्टैंड अलोन बीएड कॉलेजेस हैं, अब उसको हम लोग राज्य सरकार बहुविषयक डिग्री महाविद्यालयों में रूपांतरण और शैक्षणिक शुद्धिकरण की स्वीकृति दी गई है। इससे 300 और कॉलेज वैसे उपलब्ध हो सकेंगे जिसमें बच्चे बीएड के अतिरिक्त बाकी सब बहुविषयक शब्दों पर विषयों पर डिग्री प्राप्त कर सके।
0: मंत्रिपरिषद ने 4 नगर निकायों गया जी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के निर्माण के लिए पेट्रोलियम कंपनियों को 10-10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का भी निर्णय किया है।
1: राज्य के 4 नगर निकायों में गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने के लिए भारत सरकार की जो सरकारी वायल कंपनी है IOCL, गेल, HPCL और BPCL को 10 एकड़ भूमि 25 वर्षों के लिए निःशुल्क उपयोग के लिए दी गई है। इसमें जो कचरा निकलता है भीगा हुआ, उससे इसका प्रोसेस किया जाएगा, उससे खाद बनेगा और उससे ऊर्जा उत्पादित होगी। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है जो स्वीकृति दी गई है।
0: सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मोहम्मद सुहेल ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि कैबिनेट ने युवाओं को नए दौर के रोजगार से जोड़ने के लिए 7 निश्चय 3 के तहत कुशल युवा कार्यक्रम को वित्तीय वर्ष 2030-31 तक विस्तारित कर दिया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए 430 करोड़ रुपए के व्यय की मंजूरी दी गई है।
2: 7 निश्चय 3 के अधीन जो दोगुना रोजगार दोगुना आय की योजना है सरकार की, उसके अधीन 2026-27 से 2030-31 तक अर्थात अगले 5 वर्षों के लिए इस योजना को स्वीकृति दी गई है और 26-27 के लिए इस पे 430 करोड़ 8,33,000 रुपए के व्यय की भी स्वीकृति दी गई है। कुशल युवा कार्यक्रम के अधीन जो गांव-गांव में स्किल डेवलपमेंट का काम युवाओं के लिए किया जाता है, इसके 5 साल के एक्सटेंशन से युवाओं को स्किल मिल सकेगा और उनको रोजगार मिल सकेगा।
0: कैबिनेट ने कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि इस फैसले से 6,436 रोजगार के अवसर सृजित होंगे और प्रतिवर्ष 2.5 लाख से अधिक युवा प्रशिक्षित होंगे। इसके तहत युवाओं को AI, ड्रोन, सोलर नेटवर्किंग, डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग, विदेश भाषा और उद्यमिता जैसे भविष्य के कौशलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्यपाल से कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कहा है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में PhD में नामांकित वे अभ्यर्थी जो नव सृजित डिग्री महाविद्यालयों में संविदा नियुक्ति में सफल हुए हैं, उनके लिए विशेष निर्देश जारी किए जाएंगे। लोकभवन में राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ आयोजित बैठक में श्री हसनैन ने कहा कि इन अभ्यर्थियों को अपनी संविदा नियुक्ति के साथ साथ शोध कार्य भी समय पर पूरा करने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों को युवाओं की बदलती सोच और आकांक्षाओं को समझना होगा। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ संवाद के जरिए उनकी समस्याओं और अपेक्षाओं को समझने तथा उनके लिए सकारात्मक माहौल बनाने पर जोर दिया है। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। राज्यसभा ने कल इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। यह विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
3: सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
0: बिहार पुलिस विधि व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और प्रदर्शन के दौरान AK-47, इंसास और सेल्फ लोडेड राइफल का उपयोग नहीं करेगी।

0: पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार सेमी ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल केवल उग्रवाद, आतंकवाद और दुर्दांत अपराध से जुड़े मामलों में किया जाएगा। गौरतलब है कि बिहार बंद के दौरान सीवान में एक जवान द्वारा AK-47 से गोली चलाई गई थी। इधर राजद ने इस घटना के विरोध में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 19 अगस्त को राजभवन मार्च की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त परीक्षा में चयनित 2027 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। यह कार्यक्रम पटना के बापू सभागार में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी तथा विजेंद्र प्रसाद यादव समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल के माध्यम से results.digilocker.gov.in पर अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर प्रदेश में लोगों में व्यापक उत्साह देखा जा रहा है।
1: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
0: विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि अभियान के तहत तिरंगा रैलियां और वंदे मातरम का सामूहिक गान किया जा रहा है। सुपौल में रेलवे स्टेशन परिसर के पास सशस्त्र सीमा बल SSB की ओर से जैज बैंड का प्रदर्शन किया गया। बल के प्रशिक्षण केंद्र के उप महानिरीक्षक विजय सिंह के कुशल मार्गदर्शन में बैंड ने मनमोहक प्रस्तुति दी। अरवल जिले में अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में कई वरिष्ठ पदाधिकारी, स्कूली बच्चे और आम लोगों ने भाग लिया। बक्सर जिले में उप विकास आयुक्त निहारिका छवि के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। यात्रा में जीविका दीदी, स्वयं सेविकाएं और अन्य लोगों ने भाग लिया। इधर पटना GPO में वंदे मातरम संगीत अभियान का आयोजन किया गया। पटना GPO के मुख्य डाकपाल राजदेव प्रसाद समेत अन्य अधिकारियों और कर्मियों ने वंदे मातरम गीत का सामूहिक गान किया।
1: हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
0: इस बीच शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में 17 अगस्त तक तिरंगा यात्रा आयोजित की जाएगी। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारियों समेत सभी सक्षम अधिकारियों को अपने अपने जिलों और प्रखंडों के विद्यालयों में तिरंगा यात्राएं आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि पटना में प्रस्तावित पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के क्षेत्र में जमीन की खरीद बिक्री और हस्तांतरण को लेकर पूर्व में लागू प्रतिबंध अब प्रभावी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विभाग द्वारा जिला समाहर्ता सह जिला निबंधक को सूचित कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोर क्षेत्र समेत पाटलिपुत्र टाउनशिप के संपूर्ण क्षेत्र में भूमि की खरीद बिक्री और हस्तांतरण पहले की तरह की जा सकती है। श्री मिश्रा ने कहा कि इस निर्णय से क्षेत्र के भू स्वामियों और आम नागरिकों के बीच बनी असमंजस की स्थिति समाप्त होगी। भागलपुर स्थित विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त भाग के पुनर्निर्माण कार्य के चलते 29 अगस्त से वाहनों का परिचालन पुल पर प्रतिबंधित रहेगा। इससे पहले पुल निर्माण निगम ने 1 सितंबर से वाहन परिचालन बंद करने का फैसला किया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्य समय पर शुरू करने के लिए 3 दिन पहले ही ट्रैफिक रोकने का निर्णय लिया गया है।

0: अररिया जिला मुख्यालय स्थित विद्युत कार्यालय में आज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर मेला सह लून मेला का आयोजन किया जाएगा। मुंगेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत लाल दरवाजा मोहल्ले से अपहृत बच्चा भोजपुर से बरामद कर लिया गया है। मुंगेर पुलिस ने इस संबंध में 3 महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में 2 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सारण जिला प्रशासन ने हाल ही में संपन्न सिपाही बहाली परीक्षा के दौरान कर्तव्य में लापरवाही और अनियमितता के आरोप में अलग अलग अनुमंडलों में पदस्थापित 6 वीक्षकों को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की अनुशंसा पर की गई है। राज्य सरकार ने सारण जिले के 9 स्वास्थ्य उपकेंद्रों को शहरी हेल्थ और वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत इन केंद्रों का संचालन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इन केंद्रों पर सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अब खबरें खेल की। बीसी राय राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए बिहार जूनियर बालक टीम का चयन 17 और 18 अगस्त को बेगूसराय के बरौनी में आयोजित होने वाले चयन शिविर में किया जाएगा। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने राज्य के युवा तैराक श्रेयांश यादव को सम्मानित किया। श्रेयांश ने हाल ही में संपन्न 48वीं राष्ट्रीय सब जूनियर तैराकी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार कैबिनेट के फैसलों से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, हर साल 2,57,000 को ट्रेनिंग, 300 निजी बीएड कॉलेजों में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स। हिन्दुस्तान लिखता है, रबी मौसम से पीएम फसल बीमा योजना लागू होगी। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, केंद्र ने गंगा और सहायक नदियों के लिए तय की नई परिभाषा, गंगा बाढ़ क्षेत्र की परिभाषा से निर्माण मुक्त क्षेत्र हटा। दैनिक भास्कर लिखता है, राम मंदिर के सीईओ के इंटरव्यू खत्म, अब 3 नाम भेजेगी चयन समिति। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, राज्य में खुलेंगे 598 नए अर्बन पीएससी और वेलनेस सेंटर, 2 रुपए में होगा इलाज। आज अखबार लिखता है, रूस ने पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ का अपना मध्यस्थ बनाया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने युवाओं को नए दौर के रोजगार से जोड़ने के लिए कुशल युवा कार्यक्रम को 5 वर्ष तक विस्तारित किया। प्रतिवर्ष 2.5 लाख से अधिक युवा होंगे प्रशिक्षित। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कहा, नव सृजित डिग्री महाविद्यालयों में संविदा पर नियुक्त शिक्षकों को पीएचडी पूरा करने के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त परीक्षा में चयनित 2027 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। और प्रदेश के विभिन्न भागों में हर घर तिरंगा अभियान का हो रहा है आयोजन। तिरंगा यात्रा और वंदे मातरम के तहत सामूहिक गान का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। अभी से थोड़ी देर बाद यानी 9:10 पर आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका। विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से 9:30 पर। पूर्वाह्न 10:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार। वापिस स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से पूर्वाह्न 10:05 पर हम प्रस्तुत करेंगे साहित्यिक कार्यक्रम आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता। विषय होगा सावन के झूले और कजरी गायन की परंपरा। वार्ताकार होंगे डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी। इसके अलावा काव्य पाठ भी आप सुनेंगे। कवि होंगे दिनेश गार्गीय। भोजपुरी एल्बम लोकगीत का प्रसारण लोकमाधुरी आप सुनेंगे पूर्वाह्न 10:30 पर। पूर्वाह्न 10:45 पर सुनिए भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसधार। पूर्वाह्न 11:00 हम और आप शामिल होंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र की सभा में और तब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन आकाशवाणी सासाराम स्टूडियो से हम प्रस्तुत करेंगे शाम 5:10 पर। शाम 5:30 पर सुनिए भोजपुरी समाचार बुलेटिन जिसे आकाशवाणी के पटना केंद्र से हम रिले करेंगे। कार्यक्रम युववाणी आज आप सुनेंगे शाम 5:35 पर। भोजपुरी लोकगीत का प्रसारण होगा शाम 6:05 पर। शाम 6:10 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत की प्रस्तुति होगी शाम 6:40 पर। सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास रोज की तरह आज भी आप सुनेंगे शाम 7:15 पर। प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। समय होगा शाम 7:25। शाम 7:50 पर आप सुनेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद। संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे ई मन पसंद कार्यक्रम का शेष भाग।

रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का प्रसारण। समाचार संध्या रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 8:45 पर। रात्रि 9 सुनिए भोजपुरी लोक गीतों का कार्यक्रम लोकधारा। गजलों की महफिल सजेगी रात्रि 9:15 पर और रात्रि 9:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। रात्रि 10 हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही के रिकॉर्डिंग का प्रसारण। हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसरंग की प्रस्तुति होगी रात्रि 10:15 पर। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने और रात्रि 11 हिंदी समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:10 हुए हैं। प्रस्तुत है हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका।

0: काला बाजार फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थी। शैलेंद्र के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी एसडी वर्मन ने। गीत मालिका कार्यक्रम में दोस्तों अब आइए हम आपको सुनवाएं नमक हलाल फिल्म का एक गीत। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें हैं, गीतकार हैं अनजान और संगीतकार हैं बापी लहरी।
1: अरे ना ना ना ना ना ना ना।

नमक हलाल फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें थी। गीत मालिका कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं कुमार शानू और अलका याग्निक को। समीर के लिखे इस गीत की धुन बनाई है नदीम श्रवण ने। फिल्म का नाम है बरसात।

इसी के साथ हिंदी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम गीत मालिका यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:30 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

भारतीय सिनेमा की नामचीन अदाकारा वैजयंतीमाला बहुआयामी प्रतिभा संपन्न कलाकार हैं। अभिनय के अलावा भरतनाट्यम, कर्नाटक संगीत गायन और नृत्य निर्देशन में अपनी कामयाबी साबित करने के बाद जनप्रतिनिधि के रूप में भी अपनी एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने शानदार अभिनय और नृत्य में अपनी दक्षता के रहते वैजयंतीमाला ने फिल्म जगत में बनाई अपनी विशिष्ट पहचान।

सिने जगत में वैजयंती माला ने 16 बरस की आयु में अभिनय की शुरुआत जिस फिल्म से की वो थी 1949 में आई तमिल फिल्म वजकई। अगले ही बरस 1950 में उन्होंने तेलुगु फिल्म जीवितम में काम किया। अपनी प्रतिभा से वैजयंती माला ने दक्षिण भारतीय फिल्मों में तो कामयाबी के शिखर छुए ही, मुख्य धारा के हिंदी सिनेमा की भी वो बेहद लोकप्रिय और सफल अभिनेत्री साबित हुई।

13 अगस्त सन 1933 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत की मद्रास प्रेसिडेंसी के ट्रिप्लिकेन में जन्मी वैजयंतीमाला की शुरुआती फिल्म मंगामा सबाथम बहुत सफल रही। सन 1951 में रिलीज हुई वैजयंतीमाला की पहली हिंदी फिल्म बहार।

फिल्म बहार के 3 बरस बाद वैजयंती माला की यादगार फिल्म आई नागिन। राजेंद्र कृष्ण के गीतों और हेमंत कुमार के संगीत से सजी इस फिल्म के गाने आज भी बेहद लोकप्रिय हैं।

0: सन 1955 में आई शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर कृति देवदास पर इसी नाम से बनी बिमल रॉय द्वारा निर्देशित फिल्म, जिसमें वैजयंतीमाला ने निभाई चंद्रमुखी की भूमिका।
1: इतने कपड़े लगते पेटी बिस्तर की जरूरत तो नहीं थी मुझे।
2: जरूरत थी या नहीं, ये मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। सुनो, परदेश में एक तासी की तो जरूरत होगी, मुझे भी साथ ले चलो।
1: ये हो ही नहीं सकता चंद्रमुखी, दुनिया तुम पर उंगलियां उठाएगी और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा।
2: मगर मुझे बहुत फिक्र हो रही है, तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं, परदेश में के लिए कैसे जाओगी, कैसे रहोगे?
1: मैंने धर्मदास को खत लिख दिया है, वो स्टेशन पे मुझे मिल जाएगा।
2: मुझे एक वरदान दोगे?
1: क्या?
2: अब कभी शराब नहीं पियोगे?
1: वादा तो नहीं करता चंद्रमुखी, लेकिन तुम्हारी बात याद जरूर रखूंगा।
2: सुनो, जहां भी रहो, अगर तुम्हारा शरीर जरा भी खराब हो तो इस दासी को जरूर खबर दे देना।
1: अच्छा चंद्रमुखी, देखो ये रख लो अपने पास।
2: नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं।
1: जरूरत है या नहीं ये तो मैं जानता हूँ। देखो चंद्रमुखी, जीने का तो कोई भरोसा नहीं, तुम क्या मझदार में डूबोगी? ये अपने पास रख लो और कुछ मत कहो।
2: अब फिर कब मिलना होगा?
1: कौन जाने, पर जब तक मैं जिंदा हूँ चंद्रमुखी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकूंगा, तुम्हें देखने की प्यास कभी नहीं बुझेगी। न जाने पाप और पुण्य के विचार करने वाले तुम्हारे बारे में क्या फैसला करें, लेकिन अगर मरने के बाद मेल होता है तो मैं तुमसे कभी दूर नहीं रह पाऊंगा।
2: उसी जन्म के इंतजार में जिंदगी गुजार दूंगी।
0: शरद बाबू की जैसी कालजयी कृति है देवदास, उस पर बनी फिल्म भी उतनी ही खूबसूरत है।
3: वरना

देवदास के लिए वैजयंतीमाला को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार देने की घोषणा हुई, लेकिन वैजयंतीमाला ने यह कहकर पुरस्कार अस्वीकार कर दिया कि उनकी भूमिका सह अभिनेत्री की नहीं बल्कि मुख्य भूमिका जैसी ही थी। फिल्म फेयर पुरस्कार अस्वीकार कर देने वाली वो पहली कलाकार थीं। इसके बाद वैजयंतीमाला की कई कामयाब फिल्में आईं। ये थीं न्यू दिल्ली, नया दौर और

1958 में वैजयंतीमाला की दो चर्चित फिल्में आईं, जिन्हें दर्शकों और फिल्म समीक्षकों की भरपूर सराहना मिली। इनमें से एक थी फिल्म साधना।

पुनर्जन्म की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में वैजयंतीमाला के नायक थे दिलीप कुमार। मधुमति अपनी कहानी, कलाकारों के अभिनय के अलावा अपने सुमधुर संगीत के लिए भी सराही।

0: लगभग इसी दौर में वैजयंतीमाला तमिल सिनेमा में वापस लौटी और उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया। सन 1961 में मूल रूप से दक्षिण भारतीय सिने कलाकार वैजयंतीमाला ने गंगा जमुना में काम किया, जिसमें उनके संवादों में भोजपुरी का रंग था। उन्होंने इस फिल्म में बहुत समर्पित होकर काम किया। गंगा जमुना को फिल्म समीक्षक उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनते हैं। फिल्म गंगा जमुना में अपने शानदार अभिनय के लिए वैजयंतीमाला को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार।
1: बीच रस्ते में हुड़दंग मचा रहे गुंडे के लिंके।
2: अरे देख रही धन्नो, हम अपने मुन्ना के लिए फाउंटेन लावा है। फाउंटेन
1: लावा है, चलक ना ही सारे से की निकाल दे हो एक मिनट में।

0: अरे महारानी बा, फोकट का माल लूट के लाई रही बजरिया से का?
1: फोकट का नहीं, इकन्नी दिए हूँ, इकन्नी चार पैसे, खून पसीना एक करके। हाँ
0: अरे इकन्नी देखी है कौनो दिन?
1: हाय हाय, तेली का तेल जले, मसालची की छाती फटे, तोरी छाती का है फटेरे। एक को समझाए दियो,
0: नहीं तो का तोप दम कर देगी।
1: ये हाथन में कांच की चूड़ियां नहीं, लोहे के कड़े हैं, कड़े दिखा।
0: तो ये हाथन में भी मेहंदी नहीं लागी है देखा?
2: अरे ज्यादा चिपड़ चिपड़ लग कर हटे, हटे, हटे, हटे, हटे, हटे, हटे, हटे, हटे।

0: सन 1964 में भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर लेकर आए अपनी फिल्म संगम। इस फिल्म में राज कपूर और वैजयंती माला के अलावा राजेंद्र कुमार ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रेम त्रिकोण पर आधारित इस फिल्म में वैजयंती माला जी को किस तरह अभिनय के लिए राजी किया गया, इस बारे में एक दिलचस्प प्रसंग का जिक्र करते हुए अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राज कपूर के अभिनेता पुत्र ऋषि कपूर।
1: संगम में मुझे एक किस्सा बताया गया था कि जब वैजयंती माला जी को साइन करने की इच्छा थी उन्हें, तो उन्होंने टेलीग्राम भेजा वैजयंती माला जी को कि बोल राधा संगम होगा कि नहीं, यानी कि ही वांटेड हर टू प्ले द लीड इन संगम। उन्होंने टेलीग्राम वापस भेजा होगा होगा होगा।

फिल्म संगम में अपने अविस्मरणीय अभिनय के लिए वैजयंतीमाला ने तीसरी बार पाया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार।

0: फिल्म संगम के बाद वैजयंतीमाला की एक और महत्वपूर्ण फिल्म आई आम्रपाली। आम्रपाली में वैजयंतीमाला के नायक बने सुनील दत्त। इस फिल्म के गीतों को यादगार धुनों से सजाया शंकर जयकिशन ने।
1: जाके

गीत संगीत अभिनय हर तरह से बेहतरीन होने के बावजूद फिल्म आम्रपाली को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म आम्रपाली का संगीत आज भी कालजयी है।

अपने करियर के ढलान में भी वैजयंतीमाला ने कई खूबसूरत फिल्मों में काम किया। ये थी सूरज, ज्वेल थीफ, प्रिंस और संघर्ष।

0: सन 1968 में वैजयंतीमाला ने चमनलाल बाली से विवाह किया। विवाह के बाद 1968 से 1970 के बीच उन्होंने अपनी कुछ फिल्मों की शूटिंग कर उन्हें पूरा किया। इन फिल्मों के नाम हैं प्यार ही प्यार, गंवार और प्रिंस।
1: ठंडी

वैजयंतीमाला जी का एक बेटा है जिसका नाम है सुचेंद्र बाली। स्थायी रूप से चेन्नई में बस चुकी वैजयंतीमाला ने सहयोगी लेखिका ज्योति सबरवाल के साथ मिलकर लिखी अपनी जीवनी बॉन्डिंग। वैजयंतीमाला जी की फिल्मों से, उनके अभिनय से दर्शकों की जो बॉन्डिंग है वो अटूट है।

0: आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला पर। कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।

0: संसद के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन है। पिछले महीने की 20 तारीख से आरंभ सत्र आज समाप्त हो रहा है। राज्यसभा में आज खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। दोनों सदनों में आज निजी सदस्यों के विधायी प्रस्ताव भी चर्चा के लिए सूचीबद्ध हैं। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया।
1: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
0: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव कंबोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया। झारखंड में 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का ये मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुंच गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को आज संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेगी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में आज संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का दृढ़ संकल्प, लगन और साहस रखता है, वो जीवन की चुनौतियों से कभी नहीं हारता। संस्कृत का एक उदाहरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि निरंतर प्रयास ही सफलता की असली कुंजी है और धैर्य, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति ही अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का कल शुभारंभ किया। राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस पर की गई इस पहल का उद्देश्य गांधीनगर, कलोल और सांणंद विधानसभा क्षेत्रों के गांवों में बच्चों को पढ़ने की आदत से जोड़ना और उन्हें गांव में ही ज्ञान के व्यापक संसाधन उपलब्ध कराना है। इस ऐप से अब तक 752 पुस्तकालय जुड़ चुके हैं, जबकि 280,000 पुस्तकों के भंडार वाले 4 बड़े पुस्तकालयों को ग्रामीण पुस्तकालयों के साथ जोड़ा गया है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया है कि बमबारी और गोलीबारी में परिसंपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। संगठन ने घायल नागरिकों को सुरक्षा बलों द्वारा हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसका संज्ञान लेने और बलूच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मनहास ने कहा है कि बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास में सहयोग करने और अफगानी खिलाड़ियों को उच्चतम प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मौसम विभाग ने उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके असर से आज गंगा के पश्चिमी भाग और उड़ीसा में तेज वर्षा होने की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से।

स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाहन के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है साहित्यिक कार्यक्रम। आइए आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं एक वार्ता। वार्ता का विषय है सावन के झूले और कजरी गायन की परंपरा। वार्ताकार हैं डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी।

सुहावन मन भावन सावन आ गया है। आकाश से बरस रही रस बूंदियों ने धरती को संतृप्त कर दिया है। उस प्यासी धरती को जो गर्मी की तपन से झुलस चुकी थी, उसका आवरण जीर्ण शीर्ण होकर पीला पड़ चुका था। प्राणियों और वनस्पतियों का हाल बेहाल था, किंतु आज रिमझिम बरसात के साथ पुरवैया और पछुआ हवा के झोंकों से शीतलता का एहसास हो रहा है। धरती रसिक्त हो नव यौवना की तरह हिठलाने लगी है। भला धरती का यह हाल है तो नव यौवनाओं का क्या होगा। सावनी मदमस्ती का प्रभाव उन पर भी पड़ चुका है।

वर्षा ऋतु का माह सावन, प्रकृति का श्रृंगार सावन, मयूर युगल का नृत्य सावन, खेती का मास सावन, चतुर्मास की शुरुआत सावन, विष्णु शयन का माह सावन, देवाधिदेव महादेव का प्रिय सावन, कांवरियों की यात्रा का सावन, कृष्ण की मोहनी मुरली का महीना सावन, आनंद और उल्लास के पारावार का सावन, भाई बहन के प्यार का सावन, दाम्पत्य का प्रेम सावन। जी हाँ, यह सावन माह जीवन के हर क्षेत्र, प्रकृति, प्रेम, भक्ति, मुक्ति सभी को प्रभावित करता है। हमारे जीवन में नवरस का संचार करता है। यह रस गीतों के माध्यम से बारहमासा, चौमासा, छमासा, मलार, मोरा, चाचर, चौहट, उधवा, बरसाती, सावनी, झूला, कजरी आदि के रूप में फूट पड़ता है। लेकिन इनमें सर्वप्रिय गीत है कजरी। संभवतः सावन माह में बादलों की घनघोर काली छटा के समय इन गीतों को गाए जाने के कारण इनका नामकरण कजली या कजरी हुआ। वैसे तो भविष्य पुराण, जयद्रथ तंत्र, मार्कंडीय पुराण और आल्हा खंड में कजरी का उल्लेख मिलता है। हालांकि कजरी भोजपुरी लोक गीतों की एक शैली है। कजरी के वर्ण विषय कई हैं। प्रकृति है, परिवेश है, कृष्ण जन्म है, कृष्ण रास लीला है, कृष्ण झूला है, भोले भंडारी हैं। यही नहीं, आम जीवन में ननद भौजाई की नोक झोंक है तो श्रृंगार और दाम्पत्य प्रेम भी है। सच पूछिए तो कजरी का वर्ण विषय मूलतः नारी प्रधान है। कजरी तीन तरह की होती है, पूर्वी कजरी, बनारसी कजरी और मिर्जापुरी कजरी। पूर्वी कजरी और मिर्जापुरी कजरी शैली में लगभग एक समान होती है। बनारसी कजरी थोड़ी भिन्न होती है। देखते हैं थोड़ा तीनों कजरियों का रूप। हम पूर्वी कजरी का पहले उदाहरण लेते हैं।

वैसे तो मिर्जापुरी कजरी सबसे अच्छी मानी जाती है। कजरी के विकास का श्रेय मिर्जापुर को ही है। यहाँ कई अखाड़े हैं कजरी के, जरा इस कजरी का भी रस लें, जो हरी हरी या आरे रामा की टेक के साथ गाया जाता है कि

कजरी गाई ही नहीं जाती है बल्कि खेली जाती है। यह खेल होता है झूलों पर, झूलों के प्रेम के साथ जब दिलों में सिहरन होती है तो मुख से कजरी फूटती है। झूले आज ही नहीं लगाए जाते बल्कि हमारे देश में तो लगभग 2000 वर्ष पहले भी इसका वर्णन मिलता है। वात्स्यायन ने अपने प्रसिद्ध काम सूत्र में लिखा है कि वाटिका की सघन छाया में प्रेंखा दोला यानी झूला लगाया जाता था। इसकी प्रथा वर्षा ऋतु में ही अधिक थी। सुभाषितों में तो वर्षा ऋतु के वर्णन के अवसर पर प्रेंखा दोलाओं का वर्णन पाया जाता है। आनंद से खेले जाने वाले इस खेल को दोला विलास की संज्ञा दी गई है। एक स्थान पर लिखा गया है, आनंदोल्लास के हास से जब कमल नयनाएं विद्युत गौर कांति वाली तरुणियां तेजी से झूलती हैं तो उन्हें नभ में छाए काले बादलों, उनसे हो रही चंद्रिका की वृष्टि और विद्युत तड़क का जरा भी भान नहीं होता। भान होता है सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट का, अपने पियू का, प्रिय का। और अगर दोला विलास की नायिका राधा रूप में हो तो भला उसे कृष्ण मुरारी की याद क्यों नहीं आएगी।

झूले तो पड़ेंगे वृक्षों की डालियों पर, लेकिन आज वाटिकाएं, बाग बगीचे भला कहाँ बचे हैं। वन वनस्पतियां वृक्ष सभी को तो हम काटने में लगे हैं। इससे प्रकृति ने भी हमसे मुख मोड़ लिया है। जिस खेती के लिए यह सब किया हमने, वह अब होगी कैसे। अब तो सावन की झमाझम बरसात सपना होती जा रही है। नभमंडल में छाई काली घटा बीते दिनों की बात हो चली है। अब न वो परिवेश रहा न आपसी प्रेम, अब झूले लगेंगे कैसे, कजरी कैसे गाई जाएगी। क्या हमारे जीवन से रहा सहा आनंद भी गायब हो जाएगा। ऐसा न हो, आइए वृक्ष लगाएं, खेती करें, झूला झूलें, कजरी गाएं और जीवन का आनंद उठाएं।

0: इस कार्यक्रम में हमने गीत लिया था मंदाकिनी सिंह, ओम प्रकाश मिश्र,
1: राम पुकार मिश्र
0: और सुदामा राम के स्वरों में शोध, आलेख और स्वर डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी।

श्रोता दोस्तों, आप सबों ने अपने रेडियो और मोबाइल सेट को ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र, और इस वक्त आप सुन रहे हैं साहित्यिक कार्यक्रम।

छोड़ चले चौराहे बुझरहा अलाव, छोड़ चले चौराहे बुझरहा अलाव, रत्ती भर धूप देख ललच गया गाँव, ठिठुरे तन दौड़ पड़े पाने को ठाँव।

पारती भर धूप देख ललच गया गाँव, ठिठुरे तन दौड़ पड़े पाने को ठाँ।

छप्पर पर छाई है चिड़ियों की चाँव, छप्पर पर छाई है चिड़ियों की चाँव, रत्ती भर धूप देख ललच गया गाँव, रत्ती भर धूप देख।

चा मारी, खूटे की बछिया भी कुलाचा मारी, कौओं के पंख फूले बोल गए काँ, कौओं के पंख खुले बोल।

की भुतही धरती। इसी भूमि पर श्रम का डेरा लाया है एक नया सवेरा, फूलों की क्यारी मुस्काती, रोज घूमने बस्ती आती, हवा खेलने यहीं उतरती, इसी गांव की भुतही धरती। इसी गोद में पके आम हैं, इसी गोद में पके आम हैं, अमरूदों के बड़े नाम हैं, यहीं चहकते रैन बसेरा, यहीं कोकिला का है डेरा, यहीं गिलहरी कुछ कुछ करती, इसी गांव की भुतही धरती। धरती मेहनत को अपनाती, फूलों में खुशबू बन जाती, अपने तन का दूध पिलाती, इसीलिए माता कहलाती, दाने दाने में अवतरती, इसी गांव की भुतही धरती। तीसरी कविता है शिक्षा का दीप। मुनिया रानी पानी लाती, खेतों पर खाना पहुंचाती, गाय बैल को खिला पिलाकर गोबर काढ़ किनारे रखती, आंगन वाली धूप देखकर ठीक समय पर पढ़ने जाती, बाबूजी हलवाही करते, माँ करती है खेत रुपाई, दोनों मिलकर रोज बरसते, कर दे मुनिया बंद पढ़ाई, मुनिया मन ही मन मुस्काती, रात रात भर दीप जलाती, रोज का कहरा गिनती लिखती, हिंदी वाली पोथी पढ़ती, धीरे धीरे चली पढ़ाई, अंग्रेजी भी लिखने आई, मुनिया माँ को लगी बताने, वर्णाक्षर का भेद पढ़ाने, तख्ती पर कुछ शब्द लिखकर मिठी बोली में समझाने, माँ को भी जब बोध हो गया, कुछ दिन में अज्ञान खो गया, ऐसे ही दीपक जलता है, एक एक से जग पलता है, हम सब मिलकर करें प्रकाश, उज्ज्वल हो धरती आकाश। और एक कविता है पोखर का गांव।

को ठाव। दूसरी कविता है मेहनत का फल। इसी गांव की भूतही धरती, इसी गांव की भूतही धरती, कूस का सदियों से परती, विधवा के बिखरे बालोसी, बुढ़े हाथी की खालोसी, जहां सक्की जोड़ी चरती, इसी गांव की भूतही धरती। रोज रात भर कहर कहर कर, यहां निकलते शब्द ठहर कर, पढ़ते थे जो जंतर मंतर, कहते थे यह बांझिन बंजर, पहले हलवा है को हरती, इसी गांव की भूतही धरती। यहाँ रात दिन अजगर पलते, बिस्धर के दो दांत निकलते, यहीं टिटिभ उड़ते चिल्लाते, दौड़ दौड़ कर पंख हिलाते, हवा रोज दुर्गंधी भरती, इसी गांव।

दिनेश गर्ग के इस काव्य पाठ के साथ ही साहित्यिक कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी।

निमिया के डाढ़े मैया एल्बम का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मुन्ना सिंह की आवाज़ में दीप मोहम्मद के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी दुर्गा प्रसाद ने। और अब आइए सुनते हैं शारदा सिन्हा को।

शारदा सिन्हा की आवाज़ में अभी आप ये सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत। इसी के साथ लोकमाधुरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाह्न के 10:45 हुए हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसधार।

अभी आप सुन रहे थे मुन्ना सिंह को। श्रोता दोस्तों, आप सबों ने अपने रेडियो और मोबाइल सेट को ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र। और इस वक्त आप सुन रहे हैं भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसधार।

मुन्ना सिंह के गाए इस भोजपुरी देवी गीत के साथ ही रसधार कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाह्न के 11 बजे हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग के साथ हाजिरों में आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

लता मंगेशकर की आवाज़ में मीराबाई का ये भजन आपने सुना, गांधी फेवरेट्स भजन्स बाय लता मंगेशकर, ये इस एल्बम से हमने आपको सुनवाया। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर रंग तरंग।

0: फिजा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कादर गुलाम मुस्तफा और मुर्तजा गुलाम मुस्तफा की आवाजें, शौकत अली ने इसे लिखा, ए आर रहमान का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहासे हुजूर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: द बेस्ट ऑफ सजदा। इस एल्बम से हम आपको ये गजल सुनवा रहे थे जिसे साहिद कबीर ने लिखा था। जगजीत सिंह का संगीत और आवाजें लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की। और इससे ठीक पहले आपने टुगेदर इस एल्बम से जगजीत सिंह को सुना, कैफ भोपाली के कलाम के साथ, और संगीत उन्हीं का था।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में निधा फाजली का कलाम। खयाम ने इसे संगीत से सजाया और ये है एल्बम आशा और खयाम से हमने इसे लिया है।

0: सितम। इस एल्बम से चंदनदास की आवाज में गजल आप सुन रहे थे जिसे लिखा बशीर बद्र ने।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर। हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरं।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय।

लकी अली को आप सुन रहे थे उन्हीं के संगीतबद्ध किए इस गीत में, जिसे लिखा असलम ने और इस गीत को हमने लिया एल्बम सुनो। इस एल्बम से ये गीत आप सुन रहे थे और रंग तरंग में अब आप सुनने वाले हैं सुनो तो दीवाना दिल। इस एल्बम से गीत कमाल खान की आवाज, वीके मेहता के बोल और कमाल खान का संगीत।

सरफरोश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में, निदा फाजली ने इसे लिखा, जतिन ललित का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जो कि है मैं हूं ना फिल्म से। सोनू निगम और आफताब साबरी और हाशिम साबरी की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, अनु मलिक का संगीत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने हेतु विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित बनाना है। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान 25 दिनों में लोकसभा की 19 बैठकें हुई। सदन में कई विधायी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं हुई। इस दौरान लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, अधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधि संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 और केरल नाम

0: वर्तन विधेयक 2026 सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक, प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्यवाही में बार बार बाधा आई। भारतीय जनता पार्टी ने आज विपक्षी दलों पर पंजाब और झारखंड के छात्रों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
1: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहां निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: मिजोरम के प्रभावशाली छात्र संगठन मिजो जिरलाई पावल MZP ने मिजोरम लोक सेवा आयोग में सुधारों की मांग को लेकर चल रहे अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया है। संगठन के नेता ने बताया कि सरकार द्वारा आयोग में सुधार के लिए एक समिति गठित किए जाने के बाद यह आंदोलन समाप्त कर दिया गया। संगठन ने 6 अगस्त को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ अपना आंदोलन शुरू किया था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने सरसों के आनुवंशिक संसाधनों से जुड़ी लाभ व्यवस्था के तहत 15 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। ये राशि 26 राज्य जैव विविधता बोर्डों और 3 केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों को दी जाएगी। ये वितरण जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
2: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो न्यांती 2 दिन की यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंची। आज वे हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह दौरा भारत और लाइबेरिया के बीच सौहार्दपूर्ण और घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 124 अंक गिरकर 77,843 जबकि निफ्टी 78 अंक घटकर 24,358 पर था। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रैंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टीएन को हराया। उधर महिला सिंगल्स में कोको गोफ और ईगा स्वियातेक ने फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे आनंद बख्शी के बोल, शिवहरी का संगीत चांदनी फिल्म के इस गीत में। आज है अभिनेत्री श्रीदेवी का जन्मदिन और यादों के महफिल कार्यक्रम में आज उन्हीं की फिल्मों के गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। सुनते हैं खुदा गवाह फिल्म से ये गीत।

खुदा गवाह फिल्म का ये गीत आपने सुना अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज अभिनेत्री श्रीदेवी के फिल्मों से गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: लम्हे फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और ईला अरुण की आवाजें, आनंद बख्शी की बोल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिनमें आज आपको सुनवा रहे हैं अभिनेत्री श्रीदेवी अभिनीत फिल्मों से गीत, क्योंकि आज है उनका जन्मदिन।

0: चालबाज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आज अभिनेत्री श्रीदेवी अभिनीत फिल्मों से गीत।

गुलजार के शब्द आप सुन रहे थे येसुदास की आवाज में। इलैयाराजा का संगीत सदमा फिल्म के इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल, जिसमें आज अभिनेत्री श्रीदेवी अभिनीत फिल्मों से गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: तोहफा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें, इंदिवर के बोल, बप्पी लाहिरी का संगीत, और इससे ठीक पहले आपने सुना हिम्मत वाला फिल्म का गीत जिसमें आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की थी, इंदिवर के बोल बप्पी लाहिरी का संगीत।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
2: वंदे मातरम सुजला।
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम, एक जय घोष। वंदे मातरम, एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे।
2: जय घोष, वंदे मातरम।
1: लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम, एक जय घोष।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज श्रीदेवी अभिनीत फिल्मों से गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में नागिन, माफ कीजिएगा, नगीना फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल। आइए सुनते हैं मिस्टर इंडिया फिल्म से ये गीत, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना।

0: है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में आप सभी हमसे जुड़ते हैं फेसबुक पेज के जरिए, और अगर आप अब तक हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो www.facebook.com/vbsmumbai इस पते पर जाकर आप हमें आपको मिल जाएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का फेसबुक पेज, और वहां आपको हर कार्यक्रम से संबंधित जानकारी भी मिलेगी। और आज के इस कार्यक्रम में जैसा कि हर दिन हम एक इबारत आपके सामने रखते हैं और उनमें ही शब्द छुपे होते हैं जिनसे गीत सुनवाए जाते हैं कार्यक्रम में, और आज की इबारत है सरगम मन की धुन में बसने लगी है। फिर से, सरगम मन की धुन में बसने लगी है, गाता है मन मेरा तो बजती है सितार कहीं, डोलती है डालियां, सरसराती हवा छेड़ती है रागिनी, गरजते हैं बादल जैसे दे रही हो ताल तबले पर, सुनकर उसे उतरती हैं अप्सरा सी बूंदें धरा पर, घुंघरुओं से थिरकती नाचती हैं हो मगन, झूमकर गाने लगती हैं नन्ही चिड़िया कहीं कोमल स्वरों में, सुना है कभी इनका गीत, मन में बसने लगा है प्रकृति का जीवन संगीत। तो इससे आपने अंदाजा लगाया है कि प्रकृति के जादू या प्रकृति के जो अलग अलग तरह से संगीत से किस तरह से होता है, किस तरह से हम महसूस करते हैं, उसके विषय में आज हम बातें करने वाले हैं। तो आप हमें बता सकते हैं कि प्रकृति के बीच आप कैसा महसूस करते हैं, या आपने कोई ऐसी प्राकृतिक यात्रा की हो जो आपका मन के भाव कुछ अलग रहे हों, मान लीजिए नकारात्मकता रही हो या कुछ उदासी रही हो, और ऐसे समय में जब आपने प्रकृति की यात्रा की हो और प्रकृति का प्रभाव आपके मन पर पड़ा हो, तो उन किस्सों को आप हमसे साझा कर सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि क्या कभी जलाशय जो होते हैं प्राकृतिक जलाशय, नदी तालाब झरने, ऐसे प्राकृतिक जल के संसाधनों का उपयोग आपने कभी किया है, वहां का पानी पिया हो, या वहां पैर ही बस थोड़ी देर डुबाकर अगर हम बैठ जाते हैं तो कितना सुकून मिलता है, कभी अगर हम वहां जाकर उस ठंडे ठंडे पानी में नहाते भी हैं, तो ऐसा कुछ अगर आपने किया है तो भी हमें बताइए। हमारे एक साथी कहते हैं कि प्रकृति स्वयं एक अद्भुत संगीतकार है, जब मन के सरगम जागती है तो हवाओं की सरसराहट रागिनी बन जाती है, डालियां लय में झूमने लगती हैं और बादलों की गर्जना में मानो तबले की थाप सुनाई देती है, फिर बारिश की बूंदें घुंघरुओं की तरह धरती पर उतरकर नृत्य करने लगती है, नन्ही चिड़िया की मधुर चहचहाट इस संगीत में अपनी कोमल तान जोड़ देती है। सच है, प्रकृति के सानिध्य में बिताया हर पल मन को शांति से भर देता है। तो

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में आप सुन रहे थे सरगम फिल्म का ये गीत, और आपने बिल्कुल सही जवाब हमें दिया। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब मनुष्य मानसिक तनाव और शोर से घिरा है, तब प्रकृति की ये संगीतमयता एक औषधि की तरह काम करती है। कुछ क्षण प्रकृति की गोद में बिताकर उसके इस मूक संगीत को सुनना हमारे भीतर नई ऊर्जा का संचार करता है। आज प्रकृति को निहारने भी ये कहीं गए हुए हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ये इबारत प्रकृति को केवल देखने नहीं बल्कि उसे सुनने महसूस करने का निमंत्रण देती है। प्रकृति जब गुनगुनाती है तो उसके हाथ में कोई वाद्य नहीं होता, फिर भी उसकी हर आहट में संगीत जन्म लेता है। हवा की सरसराहट, बादलों की थाप, बारिश की बूंदों की रुंझन और दूर बैठी कोई चिड़िया कोमल स्वर में उस अनदेखे गीत की एक पंक्ति गुनगुना देती है और मन जाने कब उस अनसुनी धुन का हिस्सा बन जाता है। शायद सुकून भी यही है, जब बाहर प्रकृति अपना संगीत बजाती रहे और भीतर कोई खामोश सुर देर तक मुस्कुराता रहे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज का कार्यक्रम संगीतमय होने वाला है। हम देखते हैं हमारे आजू बाजू चारों ओर संगीत बसा है। शहरों के चकाचौंध में, वाहनों में, रेलगाड़ी में, लोगों की बातों में, यहां तक कि शोर में भी संगीत बसा है। संगीत हर चीज में विद्यमान है। अगर जंगल, पहाड़ों और शांत जगह की कल्पना करें तो फिर क्या कहने। हरियाली, पहाड़, नदी, पगडंडी सभी अपनी लय में है और संगीत का निर्माण कर रहे हैं। देखा जाए तो ये दुनिया ही एक संगीत है, बस उसके साथ हमें एकाकार होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात आपने कही। वहीं मेरे एक साथी ने कहा कि सभी जगह का तो नहीं, लेकिन पहाड़ों पर जाने पर, खासकर दार्जिलिंग सिक्किम के पहाड़ों से पतली पतली झरने नुमा पानी आता रहता है, तो हमने उस पानी को पिया है और बेहद ठंडा और मुंह से निकला वाह। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज

के टेक्स्ट में स्वर्ग से लेकर धरती, प्रकृति और प्राकृत के जीवों से लेकर सुरों को भी शामिल किया गया है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि आपने प्रकृति का संगीत कभी महसूस किया है? उसके हर रंग संगीत में समाया हुआ है, जो अपनी थाप पर बजता है। उसका निर्देशन कभी हवा करती है तो कभी बादलों की गड़गड़ाहट उसे मीलों तक पहुंचा देती है। आजकल के सावन के मौसम में रात में झिंगुर की तान, मेढकों का लय ताल आवाज करना मन को भाता है, कानों को अच्छा भी लगता है। रात के सन्नाटे में पपीहे की बोली तो विरहिणियों के लिए जैसे जहर का प्याला लगता है, क्योंकि अभी प्रियतम दिवाली का वादा करके गया और ये पक्षी पी कहां बोलते बस बेचैनी बढ़ा रहा है। रही सही कसर झूमती पुरवाई भी निकाले, जिसने काले बादल घुमड़ कर आ रहे हैं और घर आंगन को तर कर दे रहे हैं। ऐसे में आधी रात में कड़कती बिजली तो जान ही निकाल देती है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि गीत जीवन की बहार है और जब बारिश का मौसम हो तो चारों ओर झमझमा करके रागिनी की बहार आ जाती है। गीत नदी की धारा के समान है। संगीत कठिन वक्त के लिए औषधि की तरह है। कितना भी कठिन वक्त हो, संगीत मन और दिल के लिए राहत की तरह है। तो ऐसी ही एक राहत यानी ऐसा ही गीत आपके पास पहुंचा रहे हैं। हमें बताइए कि इस गीत में आवाज किसकी है और फिल्म का नाम क्या है। और हाँ, ये भी बताते रहिए कि क्या आपने प्राकृतिक जलाशयों में कभी कुछ नहाने या फिर पानी पीने या सर पैर डुबाकर उस जल को महसूस करने का कोई काम किया है? किया है तो वो किससे हमसे बताइए। और कौन से प्राकृतिक जगहों की आपने यात्रा की है जब आपके मन को ऐसा लगा कि यहां से वापस जाना ही नहीं है?

लड़की फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और गीता दत्त की आवाजें। और हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में खेतों में बहुत ही घूमे हैं, खूब हरियाली होती थी।

का पानी पिया है, तालाब में बहुत नहाए हैं, तो हम ये कहेंगे कि आपको प्रकृति का बड़ा ही सुकूनदायक एक साथ मिला है हमेशा। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गीत का बता रहे, संगीत के बगैर जीवन अधूरा लगता है। बच्चों के रोने, हंसने, बात करने समय, हवा से सरसराते पेड़ पत्तों की आवाज, गाय भैंस के रंभाने में भी कुछ संगीत का पुट होता है। जब कभी मन बहुत उदास हो, किसी भी काम में मन ना लगे, तो खूबसूरत गीत सुनने से मन हल्का महसूस करने लगता है। संगीत सुनते रहने से अनेक रोग भी कम होते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही, संगीत से तो कई रोगों का इलाज भी होता है। संगीत पद्धति भी इसके लिए काम आती है। हमारे एक साथी कह रहे हैं, हमें तो प्रकृति के साथ रहना बड़ा ही अच्छा लगता है। यदि हमें काम ना हो तो हम बस प्रकृति के साथ रहना चाहेंगे, पर हम घर में रहकर ही इसका अनुभव कर लेते हैं। वो ऐसे कि पक्षियों की आवाजों में भी संगीत और पत्तियों पर पड़ती बारिश की बूंदों में भी अद्भुत संगीत महसूस किया है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि प्रकृति से उत्पन्न सुर ताल का अद्भुत संगम है। आज ऊंचे ऊंचे घने जंगलों और ऊंचे पर्वत से पहाड़ों को चीरती हुई झरनों का अद्भुत शोर और संगीत पूरे प्रकृति से लोगों का मन मोह लेती है, और हरे हरे पेड़ों और उसकी शाखाओं से बारिश की बूंदें प्रकृति के सौंदर्य को अलग से खुशनुमा बना देती है। पत्तों पर बारिश की बूंदें गिरती हैं तो थपथपाहट से एक तालबद्ध संगीत सुनाई देता है। एक हल्की सी नरम आवाज पैदा होती है जिससे पक्षी भी शांत हो जाते हैं। बस पानी के बरसने का प्राकृतिक शोर ही सुनाई देता है। छोटे छोटे तालाबों में पानी की बूंदें गिरने से एक तालाबों में गोल घेरे बनते हैं, तो अजीब तरह का एक संगीत इससे उत्पन्न होता है। वहीं हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि प्रकृति का संगीत शब्दों का मोहताज नहीं होता, सीधे दिल से बात करता है। सुबह की पहली किरण के साथ चिड़ियों की चहचहाट जैसे कोई राग अलापती है, पत्तों की सरसराहट में बांसुरी की तान सुनाई देती है, और दूर बहती नदी की कलकल में तबले की थाप, बारिश की बूंदें जब छत और मिट्टी पर गिरती है तो लगता है धरती खुद कोई करुण गीत गा रही है, जिसमें खुशी भी है और विरह भी। जंगल की गहरी रात में झिंगरों की झंकार और हवा का सन्नाटा मिलकर ऐसा सन्नाटा रचते हैं जो सबसे ऊंचा संगीत बन जाता है। ये संगीत ना किसी सभा में बजता है, ना किसी स्टेज पर जहां हम रुककर सुने। जिस दिन हम सच में सुन लेते हैं, उस दिन समझ आता है कि प्रकृति हमें हर पल बिना मांगे सुकून का सबसे पुराना राग अलाप रही है। तो ऐसी बहुत सी बातें हमारे साथी कह रहे हैं, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक स्थान पर अगर आप जाते हैं तो कुछ देर अगर आप शांति से वहां रुकते हैं तो इतनी अच्छी अच्छी आवाजें आपको सुनाई देती हैं कि आपका मन अपने आप शांत हो जाता है। हालांकि जब हम किसी प्राकृतिक जगह पर जाते हैं तो अपने अंदर इतना शोर भरकर ले जाते हैं कि उसकी खूबसूरती देखकर ही कभी कभी हमारे मुंह से कुछ बातें निकल जाती हैं, कभी हम बहुत सारी फोटोज खींचने के चक्कर में रह जाते हैं और उसका आनंद नहीं ले पाते। तो फोटोज भी लीजिए यादों के लिए, लेकिन कुछ देर शांति से बैठकर उस वक्त को महसूस कीजिए। कुछ ऐसी ही बात कर रहा है ये गीत। हमें बताइए आवाज किसकी है और फिल्म का नाम।

मिशन कश्मीर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें बिल्कुल सही पहचाना हमारे सभी साथियों ने। और हमारे एक साथी बता रहे हैं कि आज मैं महाराष्ट्र के हरिहरेश्वर की बातें बताती हूं, वहां हम लोगों को सुकून देता पल मिला। रात में समुद्र इतना शोर मचा रहा था कि मन वहीं रहने को कह रहा था और दिन में गजब का समा था। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि शिमला उन्हें बहुत पसंद है क्योंकि वो उनका नेटिव प्लेस है और वहां की प्रकृति उन्हें बहुत अच्छी लगती है। अगर वो खिड़की खोलकर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बादल ही कमरे के अंदर आ जाएंगे और साथ में ठंडी हवा के झोंके। और रात में बारिश की जो बूंदें होती है वो छत की जो टीन की छतें होती हैं उस पर धीरे धीरे जब बरसती हैं तो एक अलग ही अनुभव देती हैं। वहां की लाइफ ही अलग ही पीसफुल है, ऐसा इनका कहना है। वहीं मारिक साथी ने एक दूसरी बात बताई, वो कह रहे हैं कि गंगटोक की वो रात घनघोर बारिश रात भर हो रही थी और सुबह सुबह फोन आया कि उनके भाई सीरियस हैं, आईसीयू में हैं, तो मन सन्न रह गया। आनंद फानंद में हवाई टिकट करके पहले दिल्ली और फिर दिल्ली से भुवनेश्वर और वहां से सड़क मार्ग से आगे जब गए तो हाथ पांव जोड़कर सबको अलग अलग, क्योंकि भूस्खलन से जाम था तो किसी तरह से वो आगे बढ़े। और बेटी ने एयरपोर्ट से फोन करके मेडिकल इमरजेंसी वजह करके बोर्डिंग पास की सुविधाएं करवा दी थी और आधे घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचे। शाम

और वहां से सड़क मार्ग से आगे जब गए तो हाथ पांव जोड़कर सबको अलग अलग, क्योंकि भूस्खलन से जाम था, तो किसी तरह से वो आगे बढ़े और बेटी ने एयरपोर्ट से फोन करके मेडिकल इमरजेंसी वजह करके बोर्डिंग पास की सुविधाएं करवा दी थी और आधे घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचे। शाम तक वो अस्पताल पहुंचे, भाई तो ठीक हो गए, लेकिन इस प्राकृतिक प्रकोप के बारे में जो ये जो अनुभव था वो उन्हें अब तक याद है। वहीं हमारे एक साथी ने बताया कि कनाडा के नाइग्रा फॉल में वो प्रकृति का अनुभव जो उन्होंने किया, समझ नहीं आ रहा उसे कैसे बयां करें, क्योंकि ऐसा अद्भुत नजारा हमने पहले कभी नहीं देखा था। पानी की बूंदें, हवा के रुझान, नाव में बैठे हम, वो लहरें, वो इंद्रधनुष के रंग जब पानी पर पड़ रहे थे और जो झरने बह रहे थे हवा के साथ, उनका संगीत इतना मधुर, इतना सुंदर नजारा हमने देखकर कुछ देर अपनी आंखें बंद कर ली ताकि बाद में उसे महसूस कर सकें। आंखें भी चलक पड़ी खुशी के मारे। वाकई जब प्रकृति के साथ हम एकाकार हो जाते हैं, कुछ डूब जाते हैं उसमें, तो आंखों से आंसू बहना वो इतना भाव ज्यादा हो जाता है, कहते हैं भावविह्वल हो जाते हैं, और खुशी के मारे जो आंसू आते हैं ना, वो एक अंदर से आत्मसंतुष्टि मिलती है, वो जरूर महसूस करना चाहिए। जल्द ही वो महसूस नहीं होता, कभी कभी अचानक से ऐसा लगता है कि प्रकृति के साथ जुड़ाव हो गया। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि नदी नाले, नर्मदा नदी से पचमढ़ी तक सुंदर झरने, मन को लगे हरने, दार्जिलिंग की यादें ताजा हुई। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हेलो फरमाइश में उनका कॉल लग गया है, आज शाम वो सुन सकते हैं सभी साथी, ऐसा उनका कहना, हम उन्हें बधाई देते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सह्याद्री और हिमालय में जब भी गिर्यारोहण को जाता हूं, हमेशा झरनों का ही पानी पीता हूं, संग साथियों को भी इसका महत्व समझाता हूं। बिल्कुल सही बात है कि इस तरह से झरनों और झीलों को जब हम जाते हैं, प्राकृतिक स्थानों का पानी इतना शुद्ध होता है कि आप उसे जब महसूस करते हैं तो बड़ा ही अनोखा वो अनुभव होता है। हमारे एक साथी कहने की प्रकृति में जो संगीत व्याप्त है उसे नाद ब्रह्म या ईश्वरीय वाणी कहा जाता है। प्रकृति के अलग अलग तत्वों में सजीव संगीत को महसूस किया जाता है। नदियों में बहता कलकल करता जल और झरनों से नीचे गिरता जल, जल तरंग तो कभी वीणा के तारों से छेड़ी सरगम सुनाता प्रतीत होता है। सनसन करती हवाएं जब पेड़ों के पत्तों से गुजरती हैं तो कभी बांसुरी या शहनाई की सुर लहरियां छिड़ती हुई सुनाई देती हैं। बारिश की बूंदों में घुंघरू और पायले के रुनझुन के स्वर सुनाई देते हैं। सभी प्रकृति में समाहित होते ऐसे सुर और ताल हैं जो प्रकृति के नाद सौंदर्य को पारिभाषित करते हैं। और आपने भी बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी इस बात को अलग अलग तरह के शब्दों के साथ पिरोया है, तो अब तो मन कर रहा है कि क्यों ना एक गीत सुना जाए, और आपको ये बताना है कि इसे लिखा किसने है और फिल्म का नाम।

लता मंगेशकर की आवाज में हनीमून फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, शैलेंद्र ने इसे लिखा। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हम बहुत पहले नैनीताल गए थे, वहां के झील में नाव से सैर करने गए थे, उस पानी में पैर डुबोकर मजा लिया, लेकिन हमारे केवट ने ऐसा करने से मना किया क्योंकि वहां मगरमच्छ का खतरा था। हाँ, तो ये बातें जानना भी बहुत जरूरी है कि किस जगह पर आप पानी में पैर डाल सकते हैं या नहा सकते हैं, क्योंकि बहुत से जीव जंतु वहां वास करते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक बेहद खूबसूरत प्रकृति के बीच बसा है, जिसकी यात्रा हमेशा याद रहेगी। ऊंचे विशाल वृक्षों से घिरे रास्ते, चारों ओर फैली हरियाली, कल कल बहते झरने और शाम को नर्मदा जी की आरती मन में एक अनोखा सुकून और शांति भर देती है। ऐसा लगता है बस वहीं के होके रह जाएं। हमारे एक और साथी ने एक बात कही कि प्राकृतिक सौंदर्य वाली जगहों पर आजकल लोग ज्यादा जाने लगे हैं, इससे उन जगहों के प्रारूप में विक्षेप आता है, लोग अक्सर उन जगहों को प्रदूषित करते हैं। भाई, ये जरूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी किसी जगह पर हम जाते हैं, हमें वहां जाकर इतना अच्छा लगता है मिलकर, वहां जाकर लोगों से मिलकर, लेकिन जो प्रकृति के साथ सानिध्य हमारा होता है, लेकिन फिर आते आते वो जो कचरे हम वहां छोड़ आते हैं, वो हमारे बाद जो लोग आएंगे वहां देखने, उन्हें कितना बुरा लगेगा, या हो सकता है उन्हें लगे कि वहां कचरे ही डाले जाते हैं उस जगह पर, और हमारा देखा देखी वो एक तरह से वो काम बन जाए और सब लोग वही करने लगे। तो इससे अच्छा है कि आप साफ सफाई रखें, जिस तरह की सफाई पर आप जाते हैं उसी तरह से उसे ध्यान रखें। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि सरगम पर सब तिरकने वाले हैं, हमने सुना है चिड़ियों का चहचहाना, उसे महसूस भी किया है, उसकी बातों को समझने की कोशिश भी की है, थोड़ा असफल रहे, कभी कभी इस दिल ने उनकी बातें समझी। आपको पता है कभी कभी यूं भी लगा मानो कह रही हो कि इन पेड़ों को मत काटो ना, हमारा यहाँ बसेरा है, हमने कई बार छोटी चिड़िया को दाना भी खिलाया है, सुबह सुबह इनका चहचहाना बहुत प्यारा लगता है। हालांकि चिड़िया क्या कह रही है वो तो चिड़िया ही जानती है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि संगीत सात सुरों में बंधा नहीं होता, अगर महसूस करें तो दैनिक जीवन में संगीत ही संगीत भरा है, कोयल की कूक, पानी की कलकल से लेकर हवा के सरसराहट तक, हर जगह संगीत ही तो है। आवश्यकता है इसे अनुभूत करने की, और प्रकृति का अनुपम वरदान है संगीत, यहाँ अनादिकाल से विद्यमान है। संगीत के आदि स्रोत भगवान शंकर माने गए, उनके डमरू और श्री कृष्ण की बांसुरी में संगीत के सुर निकले हैं, माँ सरस्वती के करकमलों में वीणा की उपस्थिति संगीत की महानता की कहानी कह जाती है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि इस तरह से संगीत हमारे कण कण में बसा हुआ है और देवी देवताओं के साथ भी उसे जोड़ा गया है। हमारे साथी एक किस्सा लिख भेजे हैं जो आज ही का एक किस्सा वो कह रहे हैं, छोटी गिलहरी की कहानी। लेकिन उससे पहले जब संगीत के कणकण में होने की बात हमारे साथियों ने कही तो ये गीत हमें याद आता है। बताइए कि इसमें आवाज किसकी है और फिल्म कौन सी है।

सपने फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे इमासर देसाई और मलेशिया की आवाज उम्मीद जावेद अख्तर ने से लिखा ए आर रहमान का संगीत और बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी बहुत सी बातें हम तक भेज रहे हैं लेकिन हमने कहा था कि एक गिलहरी की बात जो हमारे साथी ने भेजी वो कह रहे हैं कि आज इबारत पढ़कर कुछ शब्दों से सजी गीत सोच रहा था कि अचानक छत के मुंडेर पर एक नन्ही सी गिलहरी आई, डरी सहमी सी कभी नजर आती तो कभी छिप जाती। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना चाह रही। तभी मन में विचार आया कि हो सकता है, देखिए ये तो बातें इन्होंने बनाई हैं कि गीतों के बारे में बताने आई है, लेकिन ख्याल आया कि इस ननी गिलहरी को कुछ नाश्ता पानी करवाया जाए। तो तूने नीचे गया, चने बिस्किट लाया, बारीक चूरा करके वहां रख दिया। तो फिर क्या, कुछ ही सेकेंड्स में नन्ही गिलहरी आई तो आई, साथ में बहुत सी गिलहरियां आ गई, नाश्ता पानी करने लगी। देखते ही देखते हमारे छत पर गिलहरी कबूतर चिड़ियों का मेला सा लग गया। छत पे खूब रौनक हो गई, गिलहरी और पक्षियों के साथ साथ मेरा मन भी खुश हो गया, जैसे पल भर में कई सारे दोस्त मिल गए। तो सच मानिए आज का दिन बन गया, मन आनंदित होकर खुशी से नाचने लगा। वही हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि प्रकृति का संगीत और जीवन संगीत एक दूसरों का पूरक है। जी हाँ, प्रकृति की हर ध्वनि इंसानी जीवन के सुख दुख और धड़कनों के साथ मिलकर एक संपूर्ण राग बन जाती है। जैसे कि सागर में लहरें उठती हैं, आशा का ज्वार है, हवाओं की सरसराहट मन की पुकार है, बिजली की कौंध ऊर्जा और क्षण भंगुरता का एहसास है, तो भोर का शांत मौन कोयल की कूक पपीहे की तान चैतन्यता का तराना है, नई कलियों का खिलना जीवन का मुस्कुराना है। सृष्टि और जीवन दो ऐसे अनंत स्वर हैं जो विश्वव्यापी एक ही सितार पर बिना रुके एक साथ बज रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने प्रकृति के संगीत को मानव के संगीत के साथ या मानव के जीवन के साथ पिरोया। हमारे एक और साथी कहते हैं कि गाने जैसी इबारत तो अच्छी लगी, पढ़कर ऐसा लग रहा है जैसे सितार की सरगम पर जो रागिनी बज रही है तो मेरा मन डोल रहा है, जैसे मैं बूंदों के घुंघरू बांधकर कहीं दूर वन में पहाड़ी पर नृत्य कर रही हूँ। हाँ, मैंने सुना प्रकृति का गीत हर दिन हर क्षण। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि पहाड़ों पर घूमने की याद पुरानी है। 1982 में एक बिजनेस टूर में मसूरी जाने और घूमने का कार्यक्रम बना। मॉल रोड पर होटल में रात्रि निवास के बाद काफी मेंबर कैंपटी फॉल देखने निकला। एक साथ कई गाड़ियों का काफिला वहां पहुंचा। जब झरने में नहाने वालों का कितना लुभावना दृश्य था वर्णन नहीं कर सकते। नहाते लोगों की फोटोग्राफी का शौक चरम पर था, इसमें महिलाओं की कोई हिचकिचाहट नहीं दिखी। हमारे सभी साथियों ने भी नहाने का लुत्फ उठाया, फोटोग्राफी भी हुई और फिर दोपहर बाद जब सब होटल लौटे तो वीसीआर पर फिल्म देखी गई सौतन। ये फिल्म कुछ समय पहले ही रिलीज हुई थी, तब आज की तरह नहीं था कि फिल्में लोग वीसीआर पर देख सकते थे तब, या दूरदर्शन के लाइव प्रसारण पर हफ्ते भर बाद फिल्म आती थी। वहीं हमारे एक साथी ने अपनी नैनीताल की ट्रिप याद की और कहा कि वहां की झील में नाव से सैर करने गए थे, उस पानी में पैर डुबोकर मजा लिया और मगरमच्छ

की बातें इन्हीं की हमने पढ़ी थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं, अलग अलग बातें हमारे साथी कह रहे हैं अपने संगीत की। एक और हमारे साथी कह रहे हैं कि मनाली में प्रकृति का अद्भुत नजारा देखा, वहां जो पानी था उसका क्या कहना, इतना मीठा पानी तो कहीं का नहीं हो सकता है, ऐसा लगता था मानो गंगा मैया खुद आकर अपनी खूबसूरती बिखेर रही है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से जब प्रकृति के साथ आप जाते हैं और प्रकृति से आप मिलते हैं तो आपको ऐसा महसूस तो होता ही है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कन्याकुमारी के अंतिम शोर पर तीन समुद्रों का संगम, दुबई के समुद्र किनारे के होटल में रहकर समुद्री सुंदरता का अनुभव करना, अमेरिका में न्यूजर्सी का अंतिम शोर के समुद्र का आनंद, नायग्रा फॉल का सौंदर्य, थाईलैंड का समुद्र और चार धाम यात्रा में सबसे सुंदर उत्तराखंड का आध्यात्मिक वातावरण में आत्मिक शांति का अनुभव जिंदगी भर याद रहेगा। तो आपके साथ प्रकृति से जुड़ी बहुत सी यादें हैं, लेकिन हम यहां आपको सुनवाने वाले हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आपको बताना है कि आवाज किसकी है और फिल्म का नाम।

दो दुनी चार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, और आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे साथी कह रहे हैं कि सरगम की बात चली है और हम सब श्रोता संगीत के दीवाने हैं, इसलिए हिंदी फिल्मों के दो बेजोड़ कलाकारों की याद आ रही है। एक तो दिलीप कुमार साहब, जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर सितार बजाते हुए सितार पर सही हाथ चले और देखने वालों को वास्तविक रूप में सितार बजा रहे हैं ऐसा दिखे, इसलिए कई माह तक सितार बजाना सीखा। दूसरे कलाकार हैं ऋषि कपूर, जो सरगम फिल्म में डफली बजाते हैं, और इस फिल्म में डफली पर उनकी चलती हुई उंगलियां संगीत और लय के साथ जो चलती हैं।

वो देखते ही बनता है, दोनों कलाकारों की मेहनत का जवाब नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि प्रकृति में ही सरगम है, इस धरा में संगीत, हवाओं में गरजते बरसते बादलों में, टपकती बूंदों में, रिमझिम बारिशों की फुहारों में, कल कल बहते झरने में और चिड़िया की चहचहाहट में हर प्रकार का सुकून भरा संगीत मन मोह लेता है। प्रकृति के संगीत सुनने के लिए बस थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि ये समय समय सुनाई देने वाली धुन है। भोपाल में अच्छी बारिश होने लगी है। होशंगाबाद और भोपाल के बीच बुधनी के जंगलों में इस सीजन में खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। चारों तरफ हरियाली, बहते झरने और पहाड़ों पर उड़ते हुए बादल, बरसते पानी में मनमोहक दृश्य इस इबारत को बयां कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें हमारे साथी कह रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संगीत और प्रकृति दोनों ही जीवन में संयम और शांति लाने में मदद करते हैं, तो आपको कब ऐसा अनुभव हुआ कि आपके जीवन में शांति लाने में प्रकृति का संगीत मदद कर रहा है, ये हमें बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं वो किस फिल्म का है, किसकी आवाज में है और क्या आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ।

मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि इन दिनों कश्मीर के अनेकों शीतल जल स्रोतों के दर्शन करने का, शीतल जल को छूने का और डुबकी लगाने का मौका मुझे और मेरी धर्मपत्नी को मिला है। भाई देखिए, जल की बहुत बातें हो गई कि अलग अलग जलाशयों में आप गए, पानी में पैर डाला, पानी की आवाज़ें सुनी, बूंदों की आवाज़ें सुनी, लेकिन क्या कभी घने जंगलों के बीच गए हैं? तो घने जंगलों का भी तो कुछ बताइए, कहीं ऐसी जगह पर गए हों जहाँ आपको जीव जंतु देखने मिले हों, शेर चीते बाघ, ऐसे कुछ दर्शन हुए हों, या आपको दर्शन हुए हों नाग देवता के, क्योंकि सावन का मौसम चल रहा है और सावन बहुत सी जगहों पर आ गया। हमारे बहुत से साथियों ने बताया है कि अब गुजरात और दक्षिण भारत के बहुत से भागों में भी सावन अब आ गया है।

तो इसकी शुभकामनाएं भी सब दे रहे हैं और झूले की बात भी इस गीत में हुई, तो ये बताइए कि झूलों का किस तरह से आप आनंद लेते हैं, और अब आपको कार्यक्रम के अगले गीत का आनंद दिलवाते हैं, और आपको ये बताना है किस फिल्म का गीत है और किसकी आवाज में।

लाजवंती फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर और दिल को सुकून देने वाली इबारत है, जब प्रकृति की सुंदर छटाओं के बीच मधुर संगीत गूंजने लगे तो कितना ही बेचैन मन क्यों ना हो, कुछ पलों के लिए तो सुकून मिल ही जाता है। प्रकृति और संगीत दोनों ही हमें गहरी शांति की ओर ले जाते हैं, तो आज के समय में बहुत कम लोगों को जो मिल पाती है ये शांति। सुंदर प्राकृतिक छटा के बीच मधुर संगीत की धुन न केवल मनुष्य को बल्कि पशु पक्षियों को भी भाव कर देती है। और बस ही मोर नाचने लगते हैं, चिड़िया चहकने लगती है, ऐसे में भला हमारा मन मयूर क्यों ना नाचेगा। ऐसे में याद आ रहा है इन्हें मेरी सूरत तेरी आंखें का, नाचे मन मोरा मगन तीगदा दीकी दीकी, जो गीत हमने सुनवा दिया। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेरे छत के ऊपर कभी कभी गिलहरी आती है तो आवाज लगाती है, उसकी आवाज सुनकर बचपन याद आ जाता है, मैं चूकता नहीं गिलहरी के वीडियो जरूर बनाता हूं। एक और साथी कह रहे हैं कि पार्क में अचानक बहुत सारे कौवे बोलने लगे तो ध्यान गया कि बंदर महाशय उनके घोंसलों को कुछ कर रहे थे और कौवे ने चोंच मारकर उसे हटाने लगे, तो किसी ने कुछ खाने के लिए दिया तो बंदर वहां से दूर चला गया, लेकिन कौवे ने फिर भी उन्हें चोंच से मारते रहे और दोनों बंदर वहां से दुम दबाकर भाग गए, क्योंकि कौओं का जो इस तरह से एक साथ होना इन्हें बहुत अच्छा लगा। आजकल लोगों के घूमने का स्वभाव में काफी बदलाव हुआ है, महानगरों कार्य व्यस्तताओं से आजीज होकर आकर अक्सर प्रकृति के गोद में जंगल कैंप ट्रैकिंग इको विलेज को प्राथमिकता देते हैं। ज्यादातर कॉरपोरेट जगत की मीटिंग में इसे ज्यादा पसंद किया जाता है। हमारे एक साथी ने बताया कि सपरिवार हिमाचल की सैर की

जिसमें प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य से रूबरू कराया। शिमला में आसमान से गिरती बर्फ जो सड़क तक जमी थी और ऊपर से बारिश भी, वहीं मनाली की हरी भरी वादियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़, देवदार के जंगल और तेज ठंडी हवाओं ने मन मोह लिया। हमारे एक और साथी कह रहे, कुछ दिन पहले उदास थी, आंखों में बस आंसू छलकने वाले थे कि रात की बची रोटी लेकर छत पर चले गए। रोज सुबह कबूतर और चिड़ियों को दाना डालते हैं, दूसरी बार गए अपना गम बांटने। सच में एक एक करके पानी पीते देखकर हमारे आंसू नहीं छलके बल्कि होंठों पर मुस्कान आ गई। हमारे एक और साथी कह रहे कि बिहार के बहुत सारे जंगलों में मैं गई हूं, घने जंगलों में भीतर जाने पर बहुत अच्छा महसूस नहीं हुआ क्योंकि बेहद उमस और गर्मी थी। जंगलों में जीव जंतुओं में मुझे छोटे छोटे ब्राउन वाले खरगोश दिखाई दिए और अजगर के बच्चे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मैं आजकल बर्लिन अपनी बेटी के यहाँ आई हुई हूँ, घर से ही सुरीला सफर सुन रही हूँ। यहाँ मौसम बहुत सुहावना है, गर्मी तो बिल्कुल नहीं है इस समय, और यहाँ सुबह का 10:15 का समय हुआ है। और हम अपने साथियों से ये कहना चाहते हैं, जो घने जंगलों की बात हो रही थी, ऐसा ही एक ऐसी कविता हमें पढ़ाई जाती थी, अगर आपको भी पढ़ने के लिए मिली हो, उस जगह का हम नाम नहीं बता रहे हैं, और उस किसी एक खास जगह का नाम कहकर उसके घने जंगल, ऐसी वो कविता थी। अगर आपको याद आ रही हो तो हमें बताइए, और न याद आ रही हो तो हमें ये बताइए कि जो गीत हम सुनवा रहे हैं वो कौन सी फिल्म का है, किसकी आवाज़ में।

0: दे तो फिर मेरी चाल देख ले, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले।
1: क्या चाल है तोरी?
0: जरा झूम ले गोरी।

संघर्ष वन से गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। और हमने जिस कविता का जिक्र किया था वो सतपुड़ा के घने जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की लिखी कविता, जिसको भी आपने बिल्कुल सही पहचाना। और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त परीक्षा में चयनित 2027 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य मौजूद थे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त पदाधिकारियों से विकसित भारत और विकसित बिहार के संकल्प को पूरा करने के लिए कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से काम करने की सलाह दी। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान 25 दिनों में लोकसभा की 19 बैठकें हुई। सदन में कई विधायी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान लोक परीक्षा, अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, अधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधि संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इधर राज्यसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के दौरान नीट पेपर लीक, प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्यवाही में बार बार बाधा आई। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि समारोह में होने वाले झंडोत्तोलन और परेड का फाइनल रिहर्सल किया गया। इधर हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूलों, सरकारी विभागों और सामाजिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी से तिरंगा यात्रा, प्रभात फेरी, साइकिल रैली और सामूहिक वंदे मातरम गायन जैसे

0: कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर दिल्ली पटना के बीच नई ट्रेनों के परिचालन की मांग की है। साथ ही उन्होंने किशनगंज जलालगढ़ नई रेल परियोजना को जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया है। श्री यादव ने रेल मंत्री से कोसी सीमांचल क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए अन्य लंबित परियोजनाओं को गति देने का भी आग्रह किया। प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आने से लोगों को एक बार फिर उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 37.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ वाल्मीकिनगर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं मधुबनी के झंझारपुर में सबसे अधिक 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटों में राज्य के उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर आंधी के साथ वज्रपात की आशंका है। वहीं कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। इस अवधि में तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के दिक्की नया टोला में अपराधियों ने एक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार अपराधियों ने लगभग 10 राउंड फायरिंग की। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। शेखपुरा जिले के कुसुम्बा थाना क्षेत्र के काशीचक मोड़ के पास उत्पाद विभाग की टीम ने एक एम्बुलेंस से 10 कार्टन शराब बरामद की है। मौके से चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र के जीटी बाईपास ओवरब्रिज के पास यात्री बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 20 यात्री घायल हो गए। इनमें से 5 की स्थिति गंभीर बताई जाती है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: के जज्बे से जुड़े मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। स्कूलों, सरकारी महकमों और समाजी तंजीमों की सरगर्म शराकत दारी से तिरंगा यात्रा, प्रभात फेरी, साइकिल रैली और इज्तमाई वंदे मातरम गीत जैसे प्रोग्राम का इनेकाद हो रहा है। पूर्णिया के रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव ने वजीर रेल अश्वनी वैष्णव से मुलाकात करके दिल्ली पटना के दरमियान नई ट्रेनों को चलाने का मुतालबा किया है। साथ ही उन्होंने किशनगंज जलालगढ़ नए रेल लाइन प्रोजेक्ट को जल्द मंजूरी देने की दरखास्त की है। जनाब यादव ने वजीर रेल से कोसी सीमांचल इलाके की रेल कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए दिगर जेरे अल्तवा प्रोजेक्टों को रफ्तार देने की भी दरखास्त की। रियासत में बारिश की सरगर्मियों में कमी आने से लोगों को एक बार फिर उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 37.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत के साथ वाल्मीकि नगर रियासत का सबसे गर्म मकाम रहा। वहीं मधुबनी के झंझारपुर में सबसे ज्यादा 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पेशगोई में कहा गया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के शुमाल मगरिब और जुनूब मगरबी इलाकों में कुछ मकामात पर आंधी के साथ बर्फबारी का अंदेशा है। वहीं कुछ मकामात पर हल्की बारिश भी हो सकती है। इस मुद्दत में दर्जा हरारत में कोई खास तब्दीली नहीं होगी। भागलपुर वाके विक्रमशिला सेतु के नुकसानजदा हिस्से के तामीर नौ के सबब 29 अगस्त से गाड़ियों की आमदरफ्त पर पाबंदी रहेगी। इससे कबल पुल तामीर कारपोरेशन ने 1 सितंबर से गाड़ियों की आमदरफ्त बंद करने का फैसला किया था। मौसूला इत्तला के मुताबिक काम वक्त मुकर्रा पर शुरू करने के लिए 3 दिन कबल ही ट्रैफिक रोकने का फैसला लिया गया है। हाजीपुर सदर थाना इलाके के दिग्घी नया टोला में जरायमकारों ने एक ठेकेदार का गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक जरायमकारों ने तकरीबन 10 राउंड फायरिंग की। जरायम पेशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। शेखपुरा जिला के कुसुम्बा थाना इलाके के काशीचक मोड़ के करीब महकमा एक्साइज की टीम ने एक एम्बुलेंस से 10 कार्टन शराब बरामद किया है। मौके से ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। औरंगाबाद नगर थाना इलाके के जीटी बाईपास ओवर ब्रिज के करीब मुसाफिर बस और ट्रक के दरमियान हुई टक्कर में 20 मुसाफिर जख्मी हो गए। इनमें से 5 की हालत नाजुक बताई जाती है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। लीजिए अब रोजगार सूचना सुनिए। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने कस्टमर सर्विस एसोसिएट CSA के पद पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु सीमा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ibps.in से प्राप्त किया जा सकता है। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB सिलेक्शन कंट्रोलर के कुल 119 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए विज्ञापन देखें। इसके लिए आयु सीमा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम 33 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त

किया जा सकता है। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी लोकल बैंक ऑफिसर एलबीओ के कुल 545 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। इसके लिए आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.pnb.bank.in से प्राप्त किया जा सकता है। रोजगार सूचना समाप्त हुई।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। इस समय 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार के लिए आइए, अब हम आपको दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं।

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मॉनसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। कोलंबिया ने शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया। और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिन में 19 बैठकें हुई। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केवल 19% कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने

0: अपने समापन वक्तव्य में सदन की कार्यवाही में बार बार आई बाधा पर चिंता व्यक्त की। हालांकि उन्होंने कहा कि सदन ने 12 विधेयकों को पारित और वापस करके अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा किया।
1: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 start questions, 380 zero-hour submissions and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions and 93 special mentions could be taken up. The floor was open, but we didn't make the fullest use of the opportunities.
0: श्री राधाकृष्णन ने बताया कि राज्यसभा की कार्यवाही केवल 37 घंटे 49 मिनट चली, जिससे सदन में 39.17% ही कामकाज हुआ। इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड में हल्द्वानी में अपनी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में किए गए हवन का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अपने भाषण में किसी समुदाय और धर्म का उल्लेख नहीं किया।
2: मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और मिथिला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो।
3: शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाए नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ।
4: सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को आश्वस्त किया कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच की जाएगी।
5: बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर वन। नंबर टू, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, ये उचित नहीं है।
4: संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी आयोजित की है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में कोयले का अधिकतम उत्पादन किया गया है।
5: भारत सरकार चाहते हुए मिनरल का रेट देश भर में एक स्थित हो,

0: को लोग कोई विश्वास नहीं है।
1: इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले

0: कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी, इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है।
1: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
2: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के

0: से मैं पूनम करकट्टा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कला, कठपुतली कला, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। अकादमी फेलोशिप के तहत 3 लाख रुपए की राशि और अकादमी पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की राशि के साथ साथ ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम दिया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार विजेता आधुनिक भारत की प्रतिभा और निष्ठा के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि देश की संगीत, नृत्य और लोक रंगमंच की कई विधाएं हैं।
2: कला से जुड़े प्राचीन विद्वानों ने भारतीय नाट्य की बड़ी व्यापक परिभाषा की है। उनके अनुसार नाट्य जीवन का ही पर्याप्त है। जीवन के ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा नाट्य अपने भीतर ग्रहण ना कर सके और फिर व्यक्त ना कर पाए। उनकी परिधि में आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर शास्त्रीय विद्या तक, हस्त कौशल से लेकर संगीत और नृत्य तक तथा मनुष्य के विभिन्न कर्म और व्यवहार समा हुआ है।
1: गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज तिरंगा फहराने के साथ साथ हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है और हर भारतीय में गर्व की भावना जागृत कर रहा है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
3: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
1: स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किले में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। अमेरिका में विभिन्न राज्य 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी कर रहे हैं। इसके तहत भारत की स्वाधीनता, समृद्ध विरासत और विविधता के साथ साथ अमेरिकी ताने बाने में भारतीय अमेरिकी समुदाय के बढ़ते योगदान को सम्मानित किया जाएगा। अभी हाल ही में डेलावेयर राज्य के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने आदेश पर हस्ताक्षर कर सभी नागरिकों से भारत दिवस मनाने का आग्रह किया। इससे पहले न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी और मैसाचुसेट्स ने ये आदेश जारी किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो डालास प्रिएजा ने जबरदस्त भूकंप

0: के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया है। कोलंबिया में इस सप्ताह सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में 265 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,494 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कोलंबिया में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत कोलंबिया को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रेंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रेंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टियन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मॉनसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नक्मे।

0: गंगा जमुना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शकील बदायूनी ने इसे लिखा, नौशाद का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
2: वंदे मातरम सुजला।
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम, एक जय घोष। वंदे मातरम, एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम, एक जय घोष।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और इस कार्यक्रम में आज वैजंती माला अभिनीत फिल्मों से गीत।

संगम फिल्म का ये गीत मुकेश और साथी की आवाज में आप सुन रहे थे शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में आम्रपाली फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, शैलेंद्र के बोल तर्ज शंकर जयकिशन की।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहां से हुजूर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: ना जाए।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे प्रिंस फिल्म का ये गीत, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।
2: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
3: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
2: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
3: एक निर्देशक और

0: एक प्राध्यापक, तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत, फिल्म मधुमती।

अब आज का सदाबहार नगवे प्रोग्राम खत्म होता है। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सखी सहेली कार्यक्रम के लिए।

0: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। नेहा, आपको भी हमारा नमस्कार।
1: ममता जी, आपको मेरा नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी नेहा शर्मा का नमस्कार।
0: क्या हाल है?
1: भई हाल तो ठीक है।
0: आज हमने देखा आपको कि एक तो सजीव प्रसारण में आप लगातार बोल रही थी,
1: जी
0: और उसके पहले मैंने देखा कि हाथ में कुछ क्रोशिया का बिनाई भी कर रही थी और साथ में अखबार के बंडल भी लिए हुए थी, पढ़ रही
1: जी
0: थी। तो ये काम के साथ साथ एक साथ इतने सारे शौक निभा लेती हैं?
1: वो अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि देखिए, काम तो करना ही है ममता जी, लेकिन साथ में अगर कुछ ऐसे काम कर लिए जाए जिससे मन बड़ा प्रसन्न रहे तो अच्छा लगता है। शौक
0: बिल्कुल
1: हमारे ये अच्छे रहते हैं, ऐसे
0: हाँ।
1: काम
0: और
1: के।
0: ये शौक बचपन से डेवलप होना चाहिए।
1: जी
0: अगर बच्चों में, छोटा बच्चा नहीं जानता कि उसको क्या शौक है, लेकिन माता पिता देखते हैं। मेरा तो ये कहना है कि मेरा जो निजी अनुभव और निजी सोच है, वहाँ
1: जी
0: ये बताना चाहती हूँ कि अभी माता पिता और परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर की ओर उन्मुख करना चाहिए, क्योंकि
1: जी
0: जब वो बड़े हो जाते हैं, नौकरी पेशा करने लगते हैं, और जाहिर सी बात है कि आपके पास दोहरी तेरी जिम्मेदारियां हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर फील होता है आपको,
1: जी
0: और कहीं ना कहीं तनाव

0: महसूस होता है। तो ऐसे में अगर आपके काम के साथ कोई अलग भी शौक है, हुनर है, तो आप उसमें अपने को डाइवर्ट करके खुश रह सकते हैं। मान लीजिए हम दफ्तर में, हम या आप सभी दफ्तर में 8 घंटे 9 घंटे काम करते हैं, और अभी
1: जी
0: तो बहुत सारे कंपनियों में, बहुत सारी जगहों पे 12 12 14 14 घंटे काम होते हैं। तो उतना इतना काम करने के बाद एक ऐसा समय होना चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए खुद के लिए, जहाँ पर आप अपने मन का करें, अपने शौक पूरे करें।
1: बिल्कुल। और जैसे कि ये कह सकते हैं इन दिनों तो, क्योंकि ज़्यादातर काम तो स्क्रीन के थ्रू ही होते हैं, आप कंप्यूटर देख रहे हैं, आप फ़ोन देख रहे हैं, कुछ भी अगर वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर और फ़ोन से जुड़े रहना पड़ता है पढ़ाई के लिए भी। तो ऐसे समय में जब हम अपने किसी शौक की तरफ जाते हैं तो कुछ देर उससे भी दूर हो जाते हैं, तो क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन या ऐसा हम जब स्क्रीन देखते रहते हैं तो हमारा दिमाग थोड़े अलग तरह से चलता है, और जब हम अपने शौक की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे शांत भी हो जाते हैं और बहुत सी अच्छी अच्छी गतिविधियां हमारे मन में होती हैं, भावनाएं अच्छी आती
0: और
1: हैं।
0: कई नकारात्मक बातें जब होती हैं कहीं इर्द गिर्द, तो वो आप भूल जाते हैं।
1: जी
0: तो इसलिए आप अपने कामकाज के साथ साथ कोई ना कोई शौक जरूर पालिए, और वो कहते हैं शौक का नशा होना चाहिए। तो हमने तो इतनी सारी बातें कह दी, लेकिन हमारे श्रोता क्या कहना चाहते हैं? मुझे कुछ कहना है जो एक सेगमेंट है, उसके अंतर्गत हमें इंतजार है कि हमारे श्रोता अपने अनुभव साझे कि वो अपने काम के साथ किस तरह के शौक पालते हैं। कि पढ़ाई लिखाई का शौक है उन्हें,
1: जी
0: पिक्चर देखने का, घूमने का, या फिर कुछ बिनाई कढ़ाई का शौक है, पेंटिंग का शौक है, चित्रकारी का शौक है। तो अपने अनुभव साझा करें हमारे श्रोता।
1: बिल्कुल। और इसके साथ ही आज हम लोग कुछ विषय और भी लिए आए हैं उनके लिए, जैसे आज विश्व अंगदान दिवस है तो इस पर बातें होंगी, और कहानी पद्मश्री की में आज हम लेने वाले हैं पेट्रिशिया मुखीम की बातें, समाज
0: जी।
1: सेवा से वो जुड़ी हैं।
0: और कई बार ये तो शौक की बातें हमने की
1: जी
0: जहाँ पर आप खुश हो लेते हैं, लेकिन कई ऐसे दुखद जगह, दुखद घटनाएं होती हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ पर भी देखा है लोग कि कहीं शोक मनाने जा रहे हैं और बढ़िया जरी वाली साड़ी पहन के, तैयार
1: जी
0: होकर, लिपस्टिक लगाकर। ये महिलाओं की बात है, पुरुषों के लिए भी, कि अच्छे शर्ट वर्ट पहन के बढ़िया तैयार होकर गए और वहाँ पहुँच के बहुत तपाक से किसी से गले मिलना, नमस्ते करना और हाथ मिलाना।
1: जी
0: लेकिन वहाँ का एक शिष्टाचार होता है, उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है,
1: जी
0: क्योंकि आप दुख मनाने गए हैं, पता चला कि आप बड़े खुशहाल नज़र आ रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। तो
1: दुख
0: अब
1: में गए हैं तो उस तरह से, मतलब एक अपनी भावना भी उस तरह की होनी चाहिए, दिखावे के तौर पर नहीं लेकिन एक अपनी भावना, क्योंकि हम गए तो उसी लिए हैं। और साथ ही साथ आज हम जो एक और विषय लिए आए हैं वो है बारिश में कीड़ों के काटने पर क्या उपयोगी टिप्स हम अपना सकते, क्या करना चाहिए हमें।
0: बिल्कुल। तो ये सारी बातें हैं और हमारे श्रोता भी इस बारे में टिप्पणियां करेंगे विविध भारती
1: जी
0: के फेसबुक पेज पर जाकर। अब हम सुनवाते हैं श्रोताओं को एक गाना। ये

0: तो हम अपने सखियों सहेलियों को बहुत सी बातें करते रहते हैं ममता जी, और आज विश्व अंगदान दिवस है जो कि हर वर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है, और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ही है कि अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए और इससे जुड़ी जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं कि अंगदान करने से मुक्ति नहीं मिलेगी, तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं उसे दूर करने के लिए आज का दिन मनाया
1: अब
0: जाता है।
1: मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है ना कि ये
0: जी
1: जो भ्रांति है इस बारे में सोचना भी निरर्थक है।
0: जी
1: अब तो अगर आपके एक अंगदान से किसी की जान बचती है, किसी को जीवन मिलता है,
0: जी
1: तो इससे बड़ा उपकार क्या हो सकता है? अगर जो लोग ये मानते हैं कि हमें आध्यात्मिक रूप से कोई नुकसान होना
0: जी
1: है, तो
0: जी
1: उनको यही मानना चाहिए कि ये तो और उपकार एक तरह का
0: पुण्य
1: ईश्वर
0: के
1: की
0: साथ
1: पूजा
0: जुड़ा
1: पुण्य की तरह
0: जी
1: पुण्य से जुड़ जाता है, तो इसलिए अंगदान करने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए, ना ही ज़्यादा उसमें चिंता करनी चाहिए। डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें।
0: जी
1: और अंगदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इस दिन को हम याद करते हैं, जैसे गुर्दा, हृदय, अग्नाशय, आँखें, किडनी और फेफड़े जैसे अंगों का दान गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों की जान बचा सकता है, ये हमें
0: बिल्कुल
1: ध्यान में रखना चाहिए।
0: हाँ, और ये अंगदान के लिए अगर किसी को करना हो तो इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं भी मौजूद हैं और अपनी सहमति से ही होता है। अगर आप 18 साल के व्यक्ति हैं तो 18 साल के जो भी हैं उन वो अपने अंगदान को जीवित रहते हुए भी आप अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्म होता है, वो आप भर देते हैं, और उसके बाद जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके बाद अगर उसने अंगदान करने का ये संकल्प लिया है तो उसके जिन जिन अंगों को वो देना चाहता है वो सभी अंगदान के तहत ले लिया जाता है। और अगर 18 वर्ष से कम की आयु हो और माता पिता चाहते हो, अगर माता पिता ने खुद भी अंगदान किया हो और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी करें, तो वो उसके पहले एक फॉर्म भर सकते हैं और उसको अपनी अनुमति से वो अंगदान के लिए कह सकते हैं। हालांकि बच्चा अगर 18 वर्ष का होता है और वो नहीं चाहता है तो वो इस चीज़ से मना भी कर सकता है। और पहला अंगदान किया गया था 1954 में, रोनाल्ड ली हेरिक ने अंगदान किया था सबसे पहले अपने जुड़वा भाई को, उसने उन्होंने किडनी दी थी और ये सफल एक ऑपरेशन हुआ जिसके तहत दोनों ही स्वस्थ रहे काफ़ी लंबे समय तक। और उसके बाद धीरे धीरे अंगदान का महत्व भी लोगों को समझ में आया और जो हमारा साइंस है किस तरह से तरक्की करा, और अब तो बहुत ही अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें हैंडल की जाती हैं। पहले तो कुछ मुश्किलें भी आती थीं लेकिन अब इतनी तरक्की हो गई है कि तुरंत ही छुट्टी भी मिल जाती है। इन दोनों जो पहले जिन ऑपरेशंस को बहुत बड़ा माना जाता था वो तो आजकल बिना चीर फाड़ के लेजर के जरिए हो जाते हैं, और अंगदान जैसी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही आम होती जा रही है। और ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक डोनर लिस्ट होती है और उसमें आप जिनको भी अंग चाहिए, जिसका जिसे भी कोई गंभीर बीमारी है वो उस लिस्ट में अपना नाम उसमें रख सकते हैं, और उसके उनके अनुसार उनकी जो अवस्था है, उनकी आयु है, उनकी किस तरह का रहन सहन है उसे देखकर,
1: क्षमता उनकी कितनी, शारीरिक क्षमता
0: हाँ
1: कितनी है,
0: वो देखकर इस तरह की लिस्ट को देखा जाता है। और जो भी कोई अंगदान करता है और अंग मिलता है तो उसे इस तरह से तुरंत उन्हें बताया जाता है कि अब
1: हाँ।
0: एक उनके लिए अंग ऐसा मिला है जिसे वो ले सकते हैं।
1: और एक चीज़ और है, कुछ अंग के कुछ हिस्सों के लिए पहले से बताना पड़ता है जो मृत्यु के बाद ही हो सकता है, जैसे
0: जी
1: आँख, नेत्रदान।
0: जी
1: तो नेत्रदान के लिए आपको पहले जिस फॉर्म का जिक्र आपने किया वो
0: जी
1: फॉर्म भर लिया जाता है, और आँखों के दान के लिए कुछ

0: समय सीमा होती है,
1: जी
0: समय उस समय सीमा के अंदर ही आपको नेत्रदान किया जाता है,
1: जी
0: करना पड़ता है। तो ये बात हो गई, और किडनी और ये सब चीज़ें तो आप जीवित रहते भी दान करते हैं,
1: जी
0: लेकिन हाँ इन सब में खतरा बस इतना होता है कि आप अपनी इच्छा से ऐसी मुहिम ना चलाएं या कहीं डॉक्टर को कन्विंस ना करें। डॉक्टर जैसा कहें वैसा ही करना चाहिए
1: जी
0: कि आप उसके लिए उपयुक्त हैं या नहीं। बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट करने के लिए भी, रक्तदान के लिए भी
1: जी
0: चिंतित हो जाते हैं कि अरे मेरे शरीर से इतना सारा खून निकल जाएगा तो हमें कमजोरी आ जाएगी।
1: जी
0: वो डॉक्टर से पूछते भी हैं कि हमें चक्कर वक्कर तो नहीं आएगा। तो ब्लड डोनेट करना तो बहुत आम बात हो गई है आजकल, इसमें
1: जी
0: कोई भी खतरा नहीं होता है। बस कुछ मिनट के लिए डॉक्टर वहाँ पे आपको बिठाते हैं रेस्ट करने के लिए, बाकी आप तो रक्तदान कर सकते हैं। तो अंगदान के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके अंगदान से किसी को जीवन मिले तो आपको इस बात से खुश होना चाहिए। और अब
1: एक गीत सुनते
0: तेरे
1: हैं।
0: नैन।

0: किसी की जिंदगी बचा सकता है, तो इसलिए जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि हमने एक एक कहानी उन्होंने बता रही है कि वो उन्होंने सुनी इंस्टाग्राम पर, 25 साल के गौरव की कहानी जो ब्रायन दर्द के कारण अपनी जान खो दी उन्होंने, लेकिन अपने सारे अंगों को दान कर दिया और करीब 2 से 2.5 घंटे में उसका जो दिल है उसको अहमदाबाद से शायद गुजरात के सूरत पहुंचाया गया। हम सबको इस कहानी से प्रेरणा नहीं चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए और हम सबको अंगदान के विषय में सोचना चाहिए। और उस छोटे से बच्चे को भी बहुत सलाम जिसने छोटी सी उम्र में इतना कुछ देखा और जान जाने के बाद भी उनके माता पिता ने अंगदान किया और कम से कम 4-5 जिंदगी बचा कर वो इस दुनिया से गए।
1: क्या बात है, कितनी सजगता की बात है ये। इससे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। और नेहा, जीवन में सुख दुख का सिलसिला तो लगा ही रहता है।
0: जी
1: कहते हैं कि भले ही आप किसी के सुख में शामिल ना हो, लेकिन दुख में साथ जरूर निभाना चाहिए। हालांकि सामाजिक तौर पर कई बड़े, मतलब ये हमें पता नहीं चलता है बड़े मौकों पर कि किसी के शोक में कैसे शामिल हुआ जाए। कई
0: जी
1: बार तो ये भी आता है, लगता है कि बहुत जो नज़दीकी लोग हैं और अचानक अगर इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर समझ में नहीं आता कि कैसे ढांढस बंधाए,
0: जी
1: कैसे हम उनके दुख पर फाहा रखें। लेकिन कुछ बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए।
0: बिल्कुल। और जैसे हम शोक के माहौल में जैसे ही पहुंचते तो आमतौर पर आदत होती कि क्या हुआ था ये हमें जानना है, तो हम पहुंचकर लगातार बार बार पूछताछ करते रहते हैं। हाँ, सामने वाले व्यक्ति भी आमतौर पर वो चीज़ें बताते होते हैं क्योंकि उन्हें भी पता होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर वो नहीं भी बता रहे हैं तो हम बार बार उनसे पूछते रहते हैं क्या हुआ, फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ, तो इससे क्या होता है वो उस पल को लगातार उन्होंने बताया होगा आपके पहुंचते तक भी, और बार बार आप उन्हें याद कराते हैं तो मानसिक रूप से वो थक चुके होते हैं कई बार, लेकिन बार बार वो चीज़ें पूछते रहने से जो शोक में व्यक्ति है वो उससे निकल ही नहीं पाते, कुछ और ज़्यादा उसमें गहरा जाते हैं, तो ऐसा करना भी थोड़ा उचित नहीं है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और कई बार लोग शोक में जाते हैं और कुछ ही समय में हंसी मजाक करने लगते हैं,
0: हाँ
1: भले ही आप कई दिनों बाद किसी परिचित से मिल रहे हों, लेकिन मौके को देखकर व्यवहार करना सही रहता है।
0: जी
1: अब ये ज़रूरी नहीं कि आप बेवजह रोते रहें, लेकिन शांति से पास में बैठना, चुपचाप बैठना भी एक तरीका होता है, और एक कंधे पर अपनेपन से भरा हाथ रखना भी आपकी भावना को दर्शा सकता है। आजकल यहाँ, मतलब बड़े शहरों में कहें, महानगरों में आजकल ये परंपरा हो गई कि किसी के विदा होने पर लोगों को ये, मतलब एक तरह से बुलाना ही कहते हैं,
0: जी
1: मैसेज डाल देते हैं, लोग आते हैं तो उनके खाने पीने की व्यवस्था भी कर दी जाती है,
0: जी
1: चाय नाश्ते की भी व्यवस्था कर दी जाती है, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो लोग वहाँ भी जाकर खाने खाते पीते समय बातें करते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं कि ये पसंद है, वो नहीं पसंद है, अरे ये हम नहीं खाते हैं, फिर वो रेसिपी बताना शुरू हो जाता है कई लोगों
0: जी
1: को हमने देखा। तो ये ठीक नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था लोग इसलिए करते हैं कि बहुत दूर दूर से आप आए हैं और बेचारे खुद नहीं खाते हैं, आपके खाने की व्यवस्था किए, तो
0: जी
1: वहाँ पर बैठ खड़े होकर मीन मेक निकालना या अपनी पसंद नापसंद जाहिर करना, ये भी ठीक नहीं लगता है।
0: और कई बार ये भी बताने लगते हैं कि भाई वो मेरा जो फलाना दोस्त था, वो जो एक रिश्तेदार था, वो भी ऐसे ही हुआ, उसका ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर विस्तार में उसका बताने लगते। कई बार जो शोक संतप्त परिवार है उसी के सदस्य को वो बताने लगते, उन्हें भी कई लोगों से मिलना होता है क्योंकि सब उनसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में आप उन्हें पकड़ कर बैठ जाते हैं और आप उनके दुख को बांटने गए, उनको बढ़ाने तो गए नहीं है, तो ये करने लगते हैं। और कई बार ऐसा होता है क्योंकि इन दिनों बहुत से लोगों की तबीयत खराब रहती है, उतनी अच्छी नहीं होती, कुछ एक खास डाइट उन्हें फॉलो करनी पड़ती है, तो ऐसे में हो सकता है कि आप वहां जाके हो सकता है कि उनकी परेशानी बढ़ा दें, आप
1: बिल्कुल।
0: कहेंगे मैं तो ये नहीं खाता, मुझे तो ये चाहिए, या मुझे वो नहीं चाहिए, या मुझे तो अभी 1 घंटे के अंदर ही खाना चाहिए, मेरे हाथ पैर कांपने लगेंगे, तो इस तरह से अगर जब आप पहुंचते हैं तो कई बार वो परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए ऐसी जगह पर फिर आप फोन के जरिए भी उन्हें अपनी भावनाएं बता सकते हैं और वो यकीन मानिए वो बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि इतने लोग आते हैं उस बीच में, अगर आप बाद में भी जाते हैं तो ये ठीक लगता है, बजाय कि आप वहां जाकर अपनी जरूरतों की डिमांड करें कि हमको ऐसे ही रहना है या यहाँ ही बैठना है, तो ये थोड़ी मुश्किलें पैदा कर देता है।
1: बिल्कुल सही बात है। और किसी भी शोकाकुल व्यक्ति के सामने बैठकर ये कहते रहना कि उन्होंने जिस अपने को खोया है उसे क्या क्या काम बाकी रह गए थे। जैसे परिवार में किसी का विवाह, जन्म जैसी बातों को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि इसकी शादी देख लेते या नाती पोता देख लेते तो फिर
0: हाँ
1: जाते, थोड़ा और रुक जाते। ये कहना भी शोक को कम नहीं करता है बल्कि बढ़ा जरूर देता है। अगर आप ऐसा कहने से पहले ध्यान से सोचें तो आपको ये भान होगा कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ अधूरा छोड़ ही जाता है, पूरा
0: जी
1: नहीं कर पाता है। और मृत्यु किसी के हाथ में तो नहीं होती है ना,
0: हाँ
1: मृत्यु तो लिखा होता है, जिस दिन जिसको जाना है वो चला ही जाता है। तो ऐसे में ये सब कहना कि अरे क्या बताएं, छोटे छोटे बच्चे हैं और इतनी सारी जिम्मेदारियां थी, पैसे

0: हाँ,
1: जी
0: मोबाइल के स्क्रीन पर आप लगातार कुछ देख रहे हैं। किसी श्रोता ने कुछ लिखा है अंगदान के विषय में क्या?
1: हाँ, बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं हमारे सभी श्रोता, सुधी श्रोता है कह सकते हैं, क्योंकि उनको हर विषय में कुछ ना कुछ पता होता है। तो अंगदान के विषय में भी हमारे श्रोता ने लिखा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, लोगों को मनन करने और अपने अंगों को दान करने के प्रति जागरूक करता है। मानवीय कार्य किसी के परिवार में खुशियाँ ला सकते हैं।

0: भी ज्यादा छोड़ के नहीं गए। तो ये जो सुन रहा है ना, उसके ऊपर और दर्द का पहाड़ आप तोड़ते
1: जी,
0: हैं।
1: उनको और परेशानियां आप बता रहे हैं, उनकी उनकी क्या क्या परेशानियां आप उन्हें और बता रहे हैं कि क्या क्या जीवन में होना है। और कई बार ऐसा होता है, आप गए हैं शोक में शामिल होने के लिए, अपना फोन आप देख रहे हैं या फोन आ रहा है आपको, आप जोर जोर से बातें कर रहे हैं कि भाई इसके यहाँ पर हम आए हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और आप बताने लगते हैं। तो ज़्यादा मत बोलें, बेवजह ना बोलें, जितनी सहायता आप अपने आप कर सकते हैं वो कर दीजिए, या शोक से भरे जो किस्से हैं कहानियां हैं वो मत सुनाइए, अपने रीति रिवाज मत बताइए। बहुत से लोगों को होता है कि देखिए हमारे यहाँ ये होता नहीं, यही करिए ये कीजिए, तो इस तरह से आप बचिए, क्योंकि अगर आपसे पूछ रहे हैं

0: ज़्यादा मत बोलें, बेवजह ना बोलें, जितनी सहायता आप अपने आप कर सकते हैं वो कर दीजिए, या शोक से भरे जो किस्से हैं, कहानियां हैं, वो मत सुनाइए, अपने रीति रिवाज मत बताइए। बहुत से लोगों को होता है कि देखिए हमारे यहाँ ये होता नहीं, यही करिए, ये कीजिए, तो इस तरह से आप बचिए, क्योंकि अगर आपसे पूछ रहे हैं वो तो ज़रूर बताइए, अगर नहीं पूछ रहे हैं तो आप रहने दीजिए। आप खुद सोचिए कि आप अगर उनकी जगह होंगे तो कौन कौन सा व्यवहार आपको पसंद नहीं आएगा, तो
1: बिल्कुल,
0: उसके बाद आप खुद वो व्यवहार नहीं करेंगे उनके साथ।
1: उस समय तो बस शांत भाव से बैठ जाना
0: जी
1: ही, किसी के कंधे पर हाथ रख देना, सिर पर हाथ रख देना ही बहुत होता है। असल में उस समय शब्द कुछ काम नहीं करते हैं।
0: जी
1: जब इंसान दुख में होता है तो शब्दों की कोई अहमियत नहीं रह जाती, बस आपके बर्ताव की अहमियत रहती है कि आप हाथ पकड़ के कह दें कि चलो हम हैं आपके साथ, कोई
0: जी
1: ज़रूरत हो तो बताना, बस इतना ही काफ़ी होता है। और फिलहाल हमें अब चाहिए कि एक गाना सुनवा दें अपने
0: जी
1: श्रोताओं को।

0: ये आकाशदीप फिल्म का गाना था, और इस गाने से पहले नेहा हम लोग बात कर रहे थे कि शोक के मौके पर जब हम किसी से मिलते हैं, किसी के
1: जी
0: घर जाते हैं, तो किस तरह से शिष्टाचार का ख्याल रखना चाहिए। हमारी एक सखी हैं जो लिख रही हैं कि किसी के यहाँ शोक में जाना सबसे ज़्यादा सेंसिटिव विषय है और तमाम सवालों से बचना चाहिए। घर में बच्चे या बूढ़े हों तो उनके खाने पीने के लिए ज़रूर कुछ लेते जाएँ,
1: जी
0: बाकी बातों के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। उस दिन बस मौन रहकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आपका एक सांत्वना भरा हाथ शोकग्रस्त के लिए बहुत बड़ा संबल होगा।
1: बिल्कुल। और हमारे कुछ साथियों ने और भी बातें लिखी, जैसे एक साथी लिखते हैं कि शोक सभा में जाते हैं तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि आपस में बातें करते रहते हैं, हंसते बोलते रहते हैं चुप चुप करके। बहुत से लोगों को मैंने, मतलब कहेंगे कि थोड़ा चुप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, जोर से ना करो, लेकिन बातें करते रहते हैं। अगर आप किसी के शोक सभा में गए हैं तो उनके प्रति आपकी संवेदनाएं पूरी हैं, तो वो करें जो परिवार वालों के

0: उस समय होता है, उनके लिए गंभीर मुद्दा है, ये गंभीर बात है, तो ऐसे हंस बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जो संवेदना है उसे आप दिखाइए शांति से, उनके पास अगर आप बैठते हैं तो ये ठीक रहेगा, बजाय इस तरह से रहना। और एक साथी कहते हैं कि परिवार में निकट रिश्तेदारों के निधन के कारण बहुत बार शोक सभा में जाना हुआ है। जाने से पहले सोचती कि कोई हल्के कलर की या सिंपल सी साड़ी पहनूं, वही पहनकर जाती हूँ, लेकिन वहां जाने पर देखती हूँ कि महिलाएं आजकल फैंसी साड़ियां पहन के आ रही हैं। शोक सभा के दौरान बार बार मोबाइल देख रही हैं, आसपास बैठी महिलाओं से धीरे धीरे बातें कर रही हैं। ऐसा लगता है कि औपचारिकता निभाने के लिए ही वो वहां शामिल हुई हैं।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि रिश्तेदारी या आप अपने मिलने वालों के गम और शोक के समय मैं ज़रूर शामिल होता हूँ शिष्टाचार के साथ। मैं उनकी शादी ब्याह या अन्य फंक्शंस पर शामिल हूँ या ना हो सकूँ किसी भी कारण से, लेकिन किसी भी कारण से मैं शोक में ज़रूर पहुँचता हूँ।
0: ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वही बात है कि दुख में आप शामिल हों तो ज़रूरी है। कई बार हम नहीं जा पाते हैं शादी ब्याह में तो वो नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो, जब शोक के समय अगर आप नहीं जाते तो उन्हें ज़रूर याद रहता है कि कौन आया, किसने उनके मतलब ध्यान रखा, किन से बातें हुई, ये सारी बातें याद रह जाती मन में।
1: अब नेहा, ये बातें हम थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं इन
0: जी
1: बातों पर, और एक ब्रेक के बाद हम वापस अपने मुद्दे पर आएंगे और बहुत सारे विषयों पर बातें करेंगे।
0: जी

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
3: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
2: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
4: मैं अगले दिन आशुतोष गवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
6: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं सखी सहेली और आज ममता जी हम कहानी पद्मश्री की ये सुनाते हैं और इसमें उन महिलाओं की बात करते हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। आज हम बात करने वाले हैं पैट्रिशिया मुखीम की जो समाज सेवा से जुड़ी हैं। मेघालय की पत्रकार, लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने उग्रवाद के खिलाफ

0: उस समय आवाज़ उठाई जब इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और इसलिए पेट्रिशिया मुकीम की पहचान एक ऐसी सशक्त महिला के तौर पर होती है जिन्होंने 1970 से 1990 के दौरान मेघालय में फैली हिंसा और उग्रवाद का निडरता से सामना किया।
1: और ये भी बता दें कि ये वो दौर था जब मेघालय में उग्रवाद अपने चरम पर था। शाम होते ही सड़कें वीरान हो जाती, लोग घरों में बंद हो जाते, पूरे समाज में डर फैला हुआ था। और तो और, स्कूल बंद, व्यापार ठप और आम जनता कुछ कहने से भी डरती। हत्या, अपहरण, फिरौती, धमकी जैसी घटनाएं तो आम हो गई थी। पेट्रिशिया उन दिनों एक आम युवतियों के जैसे पढ़ना पसंद करती थी। उपन्यास में वो खोई रहती थी और एक खुशहाल भविष्य का सपना देखा करती, जबकि माहौल वैसा नहीं था।
0: और आखिरकार पेट्रिशिया ने निर्णय लिया कि कुछ और अपने साथ कुछ 20-25 लोगों को वो लेकर सड़कों पर उन्होंने निकलना शुरू किया। ये डर के खिलाफ लड़ने की मुहिम थी क्योंकि कोई निकलता ही नहीं था, तो उन्होंने ये लोग इससे आगे बढ़े इसलिए ऐसा किया। और बाद में वर्ष 1996 में उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा शिलोंग वी केयर, और इस संगठन में वो लोगों को जागरूक करने का काम करने लगी। दुकानदारों से वो कहा करती कि शाम के समय भी दुकानें खुली रखें, लोगों को बाहर निकलने के लिए कहती और जिंदगी जीने की बातें करती उनसे।
1: और उन्होंने शांति मार्च निकाले, नुक्कड़ सभाएं की, नुक्कड़ नाटक किए और एक ही संदेश दिया कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। उनकी इतनी कोशिशों के बाद लोग भी जुड़ने लगे क्योंकि जनता भी परेशान हो चुकी थी कैद कैद रहते हुए। पेट्रिशिया मुकीम के शांति मार्च में बच्चों से लेकर बड़ों तक हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। सभी ने मिलकर नारे लगाए कि हमें तो उग्रवाद नहीं चाहिए, और ये एक बड़ी बात थी क्योंकि ये सभी चाहते थे, लेकिन सामूहिक रूप से इस तरह कहने का साहस पहले किसी में नहीं था।
0: बिल्कुल, और ये हुआ क्योंकि इस मामले में एक घटना ऐसी हुई जिसने मुख्य भूमिका निभाई। उग्रवादियों ने एक टेलीविजन की दुकान में जाकर विवाद किया और कुछ निर्दोषों को मार दिया, और इसके बाद पेट्रिशिया के संगठन ने एक सभा बुलाई और उसमें और भी लोग शामिल हुए। सभी उग्रवाद से परेशान हो चुके थे क्योंकि आर्थिक विकास को ठप्प करने में भी उग्रवादियों का बड़ा हाथ था। रोजगार, व्यवसाय, स्कूल, जीवन सब कुछ प्रभावित था। आखिरकार लोगों ने डर के खिलाफ कदम उठाया और इस आंदोलन में सरकार का भी उन्हें साथ मिला। तत्कालीन गृह मंत्री रॉबर्ट गार्नेट लिंगडो ने अपना सहयोग उन्हें दिया और उग्रवादियों की आर्थिक मदद किस तरह से रोकी जाए इसके लिए एक नियम बनाया, और जो भी व्यक्ति उग्रवादियों को फिरौती देता तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती। तो लोगों ने फिरौती देना बंद कर दिया और उग्रवादियों को आर्थिक मदद मिलनी बंद हो गई। तो इसका असर ये हुआ कि वो आत्मसमर्पण करने लगे और धीरे धीरे पेट्रिशिया मुकीम की मुहिम को जीत हासिल होने लगी और शांति लौटने लगी।
1: 2015 में अदालत ने निर्देश दिया कि उग्रवादियों के बंद के आह्वान प्रेस विज्ञप्ति को प्रकाशित न किया जाए। इससे भी उनकी गतिविधियां प्रभावित हुई, उग्रवाद की घटनाएं कम से कम होने लगी। पेट्रिशिया मुकीम केवल यही नहीं रुकी बल्कि वो समाज के सुधार को लेकर बहुत सारे अन्य कार्य भी करती रहीं, जैसे कि उन्होंने पीपल्स रैली अगेंस्ट करप्शन के जरिए जमीन से जुड़े विवाद का विरोध किया। उन्हें गिरफ्तार किया गया फिर भी वो घबराई नहीं, जबकि उस समय वो अकेली महिला थी जिन्हें 45 अन्य लोगों के साथ हिरासत में लिया गया था।
0: जी, और पेट्रिशिया मुकीम ने ऑनलाइन लॉटरी के खिलाफ भी अभियान चलाया। मेघालय इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल में भी राज्य के भविष्य के लिए उन्होंने काम किया। द शिलोंग टाइम्स की संपादक रह चुकी पेट्रिशिया मुकीम को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया है, लेकिन साल 2000 में उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: सामाजिक संघर्षों और कार्यों में पूरी तरह समर्पित पेट्रिशिया मुकीम निजी जीवन में अपने बीते को खोने के गहरे दर्द से जूझती, अपने बेटे को खोने के दर्द से जूझती रही। आज भी समाज के लिए सक्रिय हैं। तकरीबन 17 बरस की उम्र में वो आज भी योग करती हैं, पहाड़ी रास्तों पर चलती हैं, पर्यावरण बचाने के लिए अभियान चलाती हैं, आदिवासी अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लगातार अपनी बुलंद आवाज़ आज भी उठाती हैं। उनका मानना है कि अगर बदलाव लाना है तो एकजुट होना होगा, क्योंकि जब सब साथ खड़े होते हैं तभी बदलाव आता है।
0: और तकरीबन 70 वर्ष की पेट्रिशिया मुकीम हमें सिखाती हैं कि कभी कभी एक निडर आवाज़ भी लोगों को एकजुट करने में सहायता करती है। किसी एक का साहस हो तो सभी लोगों में वो साहस हो जाता है, उन्हें देखकर सब साहस करते हैं और समाज डर, हिंसा और अन्याय से आगे बढ़कर शांति और लोकतंत्र कायम कर सकता है।
1: तो इस बात से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि बूंद बूंद से सागर बनता है। एक पेट्रिशिया का हाथ आगे बढ़ा और कारवा बढ़ता गया और उन्होंने विजय पाई, पद्मश्री सम्मान से उन्हें नवाजा गया।
0: जी,
1: अब गाना सुनते हैं ये।

0: हाँ तो नेहा, हमने शुरुआत में बताया था कि श्रोताओं से हमने ये शौक के बारे में पूछा था, लेकिन बहुत
1: जी
0: सारे श्रोता तो अभी लिख नहीं रहे। हमें लगता है हमारे श्रोताओं को विविध भारती सुनने के अलावा और कोई शौक नहीं, क्योंकि हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि शौक तो बहुत से थे, अब सिर्फ विविध भारती प्रोग्राम के ही सुन पा रहे हैं। उनमें से कोई प्रोग्राम मिस कर जाता हूँ, अब से 8 बजे तक अनवरत मोबाइल पर VVS के प्रोग्राम सुनता रहता हूँ, ऑफिस का काम भी चलता रहेगा। भाई, विविध भारती सुनने का शौक तो सबसे उम्दा शौक है, इस शौक को आप कायम रखिए। लेकिन इसके अलावा जब भी वक्त मिले, इसके साथ साथ और भी शौक कर सकते हैं। विविध भारती सुनते हुए आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं,
1: जी
0: पेंटिंग कर सकते हैं, निटिंग कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, क्या
1: कुछ
0: क्या
1: भी कर
0: नहीं।
1: सकते हैं, सब कर सकते हैं। रेडियो के साथ सब चीजें कर की जा सकती है। ऐसा ही तो, मतलब हमने शुरुआत से ऐसा ही तो सब
0: बिल्कुल
1: बड़े हुए हम सब,
0: सही बात
1: रेडियो
0: है।
1: सुनते सुनते सारे काम करते करते।
0: और रेडियो सुनते सुनते अगर हम काम करते हैं तो कल्पनाशीलता का विस्तार भी होता है,
1: हाँ
0: क्योंकि हम सोच रहे होते हैं, विविध भारती सुन रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से एक दृश्य खींच रहे होते हैं उस समय।
1: और एक मेडिटेशन जैसा हो जाता है। एक समय के बाद में हमें सब सुनाई दे रहा होता है, फिर हम अपने काम में भी डूबे रहते हैं, लेकिन किसी ने रेडियो बंद कर दिया तो पता चलता है कि अरे हम सुन रहे थे। ऐसा लगता है ना कि आप अपने काम में डूबे हुए हैं, तो बंद कर देते हैं, लेकिन ध्यान रहता है। हमारे एक साथी ने जरूर लिखा है कि उन्हें बागवानी का बहुत शौक है, इसके लिए मैं शनिवार रविवार को जरूर समय निकालती हूँ। पेड़ पौधों की गुड़ाई करना, कटाई छटाई करना या नए पौधे लगाना, और ये छुट्टी वाले दिन जरूर करती हूँ। मुझे गमलों में पेंटिंग करना, तरह तरह से क्यारियों को सजाना भी बहुत पसंद है, इसके लिए भी समय निकल ही जाता है। और रेडियो सुनना और विविध भारती पेज पर कमेंट करने के लिए काम से थोड़ा समय चुरा ही लेती हूँ। तो कितनी अच्छी तरह से वो अपना पूरा समय मैनेज कर रही है ना।
0: और बहुत सारे श्रोताओं ने और भी बातें लिखी। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें कुकिंग का शौक है, खाना बनाने का शौक है, रेडियो सुनते सुनते हम खाना बना लिया करते हैं। और विविध भारती के शौक के बारे में और भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हमें तो विविध भारती सुनने का बहुत शौक है। और एक श्रोता ने कुछ अलग सी बात लिखी है, वो ये लिख रहे हैं कि आपने शोक के बारे में बात की थी और गाना सुनवाया था जुल्मे संग आंख लड़ी रे, तो क्या गाना सुना दिया जुल्मे संग आंख लड़ी। 1% चैनल पर आने वाले ऐसे लोग हैं जो किसी के दुख दर्द में जाते हैं और बढ़िया बढ़िया साड़ी भी पहनते होंगे। अपने घर की पुण्यतिथि कभी नहीं मनाते, मगर दूसरों की उस दिन जन्मदिन जरूर मनाते हैं। एक प्रतिष्ठित चैनल पर होता है जो गाना सुनाते हैं, तो इनके लिए शायद ये विविध भारती के लिए इनकी बात है। तो
1: जी
0: इनको स्पष्ट कर दे कि आज कोई शोक का दिन नहीं है, ये
1: जी
0: तो हम एक शिष्टाचार के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि सखी सहेली ऐसा प्रोग्राम है नेहा, जिसमें हम हर मुद्दे पर बात करते
1: जी
0: हैं, महिलाओं के बारे में बात करते हैं, जहाँ महिलाओं के आगे बढ़ने की बात हो, जहाँ उनके शिक्षा की बात होती है, उनकी कामयाबी की बात होती है, उनके करियर की बात होती है, और तमाम मुद्दे हैं, खेल है, पढ़ाई लिखाई,
1: जी
0: कुकिंग से लेकर हर मुद्दे पर हम बात करते हैं। तो इसी के तहत ये मुद्दा उठाया, तो जहाँ पर शिष्टाचार की बात है,
1: जी
0: तो
1: लेकिन ममता जी, एक बात तो ये भी हम कहना चाहेंगे इनसे कि शायद ये बहुत ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि जुल्मी संग आंख लड़ी गीत से तो हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी,
0: बिल्कुल
1: और जब हमने शोक से संबंधित बातें की तो उसके अनुरूप ही गीत हमने सुनवाया, जिसे हमारे सभी श्रोताओं ने सुना है और उन्हें पता है कि असलियत क्या है। और
0: बिल्कुल
1: जिन्होंने नहीं सुना, हम तो कहेंगे इन श्रोता को कि 3 बजे रात में भी इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होता है, तो वो जरूर उसे सुने और उसके बाद ही कोई निर्णय लें, है ना।
0: और अब एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, इसके लिए मेरा रविवार फिक्स होता है। बहुत कुछ सीखा भी, जैसे कि धैर्य का गुण हमने सीखा। और एक श्रोता ने और लिखा है कि मुझे बागवानी का शौक है, मतलब बागवानी का शौक बहुत सारे लोगों
1: और
0: को है।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा कि हमको तो खाली समय में एडिटिंग का शौक है, मैं हमेशा 4 से 5 घंटे एडिटिंग करता हूँ। तो ये भी एक अच्छा शौक है, कुछ उससे कुछ उन्हें मिल रहा होगा, कुछ चीजें सीख रहे होंगे, क्योंकि एडिटिंग करना भी एक अपने आप में गुण है, और वो शौक के साथ साथ कभी कभी काम में भी बदल जाता है। अगर काम ही उनका शौक है तो बहुत अच्छी बात है।
0: बिल्कुल, कुछ लोगों को दिन भर मोबाइल देखने का भी शौक होता है, तो
1: जी इस शौक से
0: इस
1: मुक्ति पाना
0: मुक्ति
1: जरूरी है।
0: पाए बच्चे,
1: जी
0: क्योंकि ये शौक बहुत खतरनाक होता है, इससे आपका वक्त बहुत सारा खा जाता है मोबाइल,
1: जी
0: और आप अपने जो शौक है उन्हें जान ही नहीं पाते। सबसे बड़ी बात तो ये है नेहा कि आपके शौक क्या है उन्हें
1: जी
0: पहचानिए। खास तौर से छोटे बच्चों के भीतर कई बार हम बहुत सारे हुनर देखते हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा नहीं मिलती है।

0: मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो वो जान नहीं पाते कि उनके शौक क्या है और विपरीत दिशा में अपने आगे बढ़ते हैं, करियर का चुनाव कर लेते हैं, जिसके लिए उन्हें परेशान भी होना पड़ता
1: जी,
0: है।
1: और कई बार ऐसा होता है कि माता पिता कुछ बनना चाहते हैं और उनके बहुत सारे शौक होते हैं जो किसी वजह से पूरे नहीं हुए, तो उन्हें लगता है कि जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं उन्हें ये सिखाऊंगी, तो वो भी एक है। उसकी बजाय माता पिता को चाहिए कि खुद ही अपने शौक पूरे कर लें और
0: बिल्कुल।
1: बच्चों को उनके शौक पूरे करने दें, है ना
0: और शौक पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती है।
1: जी।
0: कई बार लोग ये कहते रहते हैं कि भाई हमें तो दफ्तर जाने के साथ हमें टाइम नहीं मिलता है, हम
1: जी
0: ये नहीं कर पाते। तो भाई उसके साथ एडजस्टमेंट हो जाता है, आप सामंजस्य बिठा सकते हैं। और नहीं होता तो जब आप रिटायर हो जाते हैं 60 साल के बाद, वो सारे शौक जो अधूरे रह गए उन्हें पूरे कर लेने चाहिए।
1: एक बड़ी मज़ेदार बात इससे हमें याद आई कि संगीत से जुड़े हुए हमारी एक पहचान के हैं, वो अभी भी एग्ज़ाम्स देते हैं संगीत के, तो वो उनकी उम्र वो 60 से सीनियर सिटीजन है, तो वो जब एग्ज़ाम देने जा रही थी एक बार, तो गार्ड ने उन्हें रोक दिया और कहा कि अरे बच्चों के साथ पेरेंट्स नहीं जा सकते ऊपर एग्ज़ाम देने, तो उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करे। तो फिर उन्होंने अपना जो वो एग्जामिनेशन हॉल का टिकट होता है वो दिखाया, कहा कि भाई मैं तो स्टूडेंट ही हूँ। तब वो बड़े मज़े से वो बात बताए थे कि मुझे रोक दिया मैं क्या करूँ, और बाद में उन्होंने अपनी बेटियों को और हम सभी को ये बातें सुनाई
0: और एक बात और बताएं नेहा आपको,
1: जी
0: जो जानी मानी गायिका है छाया गांगुली,
1: जी
0: विविध भारती में जिनका सानिध्य हमें मिला, हम गौरव का एहसास करते हैं जब छाया जी का नाम लेते हैं। और उनकी जो गज़ल है, रात भर आपकी याद आती रही, गमन फिल्म
1: जी
0: की गज़ल, जिसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया था। छाया जी बताती हैं कि वो रिटायरमेंट के कई साल बाद उर्दू सीखना शुरू किया, उनको उर्दू सीखने का शौक था,
1: जी
0: तलफ्फुज़ का बड़ा ख्याल रखती है वो
1: जी
0: कि कहीं कोई उच्चारण गलत ना हो,
1: हाँ
0: तो इसके लिए उन्होंने उर्दू सीखना शुरू किया। और एक साल नहीं, कई साल उन्होंने उर्दू सीखा। और जब भी कहीं किसी शब्द पर अटकती तो वो फोन करके पूछती थी हम सबसे।
1: जी
0: तो ये बड़ी बात है, हमने उनका नाम इसलिए यहां पर लिया कि वो एक मार्गदर्शक है हम सबके लिए,
1: जी
0: लेकिन वो एक उम्र के इस खास जगह पर आकर सीख रही है, तो सीखने की कोई उम्र
1: उम्र
0: नहीं
1: नहीं
0: होती
1: होती,
0: है। और गाना सुनवाने के लिए भी
1: कोई समय नहीं होता,
0: तो सुनते हैं
1: यहाँ
0: गाना।
2: सुख जब सदा संग रहे ना को, फिर दुख को

0: ना ही सताता भी है, क्योंकि बारिश के मौसम में अलग अलग तरह के कीड़े आसपास होते हैं, नमी बहुत ज़्यादा होती है और उसके कारण पता ही नहीं चलता कि कब कहाँ किसकी किस तरह के कीड़े ने अपनी जगह बना ली है। और छोटे छोटे बारीक मच्छर जैसे कुछ कीड़े होते हैं,
1: जी
0: आप नॉर्मल कहीं बैठे हों जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं भी हैं और पता चलता है आप दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, एकदम कण एक कण की तरह होते हैं और काट के चले जाते हैं, बहुत देर तक बदन खुजलाता रहता है ना।
1: बिल्कुल। और पानी भी भर जाता है बरसात के मौसम में कई जगह, तो कई हल्के जहरीले कीड़े भी अपने बिलों से बाहर निकलते हैं और उनके काटने की संभावना भी बढ़ती है। अगर इस तरह के कोई कीड़े आपको काटते हैं, जहाँ भी मतलब अगर सूजन दिख रही है, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो डॉक्टर से सलाह लेना तो उचित है सबसे ज़्यादा। और जहाँ कीड़े ने काटा हो वहाँ पर बार बार आप खुजलाएं नहीं, कि खुजली तो होती है पर खुजलाएं नहीं, या तेल चूना या कोई भी दवाई ऐसी हम लगा लेते हैं जो सामने दिखती है, कभी कभी मिट्टी का तेल होता है, केरोसिन होता है, वो लगा लेते हैं। तो ये सब ना करके पानी और एंटीसेप्टिक साबुन से पहले साफ़ कर लीजिए। और अगर काटने के बाद आपको सूजन आ रही है या चक्कर जैसा लग रहा है, तेज़ जलन हो रही है, सांस लेने में कभी कभी तकलीफ भी होती है, ऐसा कुछ हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, नहीं तो डॉक्टर को फोन करके आप सलाह ले सकते हैं बाकी मामलों में।
0: बिल्कुल सही कह रही। हालांकि कई बार कुछ छोटे कीड़ों के काटने पर लालिमा जैसी होती है, हल्की जलन भी महसूस होती है, तो इसे पानी से साफ करें और कुछ देर खुजलाने से बचने पर भी वो ठीक हो जाता है। उसे खुजलाए नहीं बल्कि उसको रब करें, हल्के
1: जी
0: हाथ से रब करें तो भी आराम मिलता है। ऐसे में बेकिंग सोडा के पानी से धोना ठीक रहता है या फिर डिटॉल वगैरह उस पर
1: जी
0: लगा देना धोने के बाद ठीक रहता है। और नीम का तेल लगाने की सलाह दी जाती है, हल्की सूजन के लिए बर्फ की सिकाई भी कारगर होती है, लेकिन इस बात के लिए भी डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है,
1: जी
0: क्योंकि कीड़े काटते हैं आपको पता नहीं चलता है कि कोई जहरीला कीड़ा तो नहीं है।
1: जी और बारिश में कीड़ों से बचाव के लिए आप नीम के तेल या कपूर जैसे सुगंधित चीज़ों को घर के किनारों में उपयोग कर सकते हैं, तो कीड़े ही कम पनपेंगे। या घर की साफ सफाई करते रहने से भी, नमी को दूर करते रहने से भी कीड़े नहीं बसेंगे। बिस्तर को झाड़ के सोइए, जो कपड़े हमने कहीं लगा दिए हैं या अलमारी में रखें तो भी एक बार झाड़ के पहनिए, जूते चप्पल भी झाड़ कर पहनिए, कभी कभी छोटे छोटे कीड़े उसमें छुपे होते हैं, तो इससे भी हम बच सकते हैं। और हमारे एक साथी ने बताया कि अगर कहीं काटता है, कीड़ा वगैरह काटता है, तो उस जगह को खुजलाए नहीं, अगर अगर आपको कहीं डंक वगैरह अगर दिखता है तो भी आप उसे बिल्कुल भी ना दिखलाएं, मतलब कुछ करें ना उसे।
0: बिल्कुल। और अब सुनिए गाना, प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: अब घड़ी की ओर जरा देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं है कि हम कुछ बोले बतियाएं या
1: जी
0: गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और नेहा शर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जी हां, अपने देश की पावन भूमि को हम नमन करते हैं। 15 अगस्त 2026 को हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और आज हेलो फरमाइश कार्यक्रम में हमने देश प्रेम पर कुछ बातचीत की और देश प्रेम की कुछ गीत आपके लिए पेश किए हैं अपने श्रोताओं की पसंद पर। तो चलिए सुनते हैं आज का हेलो फरमाइश। हमारे पहले कॉलर कौन है, सुनते हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम, कौन बोल रही हैं?
1: मैडम नमस्कार। मैडम
0: नमस्कार,
1: मैं बजरंग चौक गांधवा से संतोष पटेल तिरोली बोल रहा हूँ।
0: संतोष बोल रहे हैं, बताइए क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करता हूँ मैडम मैं।
0: अच्छा,
1: दो बच्चे हारे हूँ मैं और कल्याणी है, दो बच्चे है मेरे और 3 एकड़ जमीन है। 10 क्लास तक पढ़ा हूँ मैं भी।
0: अच्छा, फिर उसके बाद पढ़ाई क्यों छोड़ी?
1: वो क्या है कि आप पिताजी से काम नहीं बनता था तो बोले कि आप क्या करोगे पढ़ के, लग गया हम फिर।
0: अच्छा चलो,
1: रेडियो बचपन से सुन रहे हैं हम।
0: बिल्कुल सुन रहे होंगे, तभी तो हमें आपने फोन किया है अपने खेती बाड़ी से समय निकाल के।
1: जी जी, बहुत साल बाद फोन लगा मेरा, 6 साल हो गए।
0: अरे क्या बात है।
1: जी जी, ये मेरी पत्नी से बात कर लीजिए।
0: कराइए।
2: हेलो मैडम।
0: हेलो, क्या नाम है आपका?
2: मीरा बाई है मेरा नाम।
0: अरे मीरा बाई, क्या बात है। हम तो भजन बजाते हैं संत मीरा बाई के, तब बहुत बोलते हैं कि संत मीरा बाई के ये भजन सुनिए। अच्छा, आप क्या करती हैं? घर संभालती हैं?
2: हाँ, घर संभालते, खेती में भी काम करते।
0: अच्छा, बराबर हाथ बटाती हैं अपने पति देव का, है ना?
2: हाँ।
0: अच्छा तो बताइए, महिला किसान होने का एक अनुभव क्या है? कितना काम करती है महिला किसान?
2: महिला किसान का अनुभव ये है कि भाई भाई आदमी दोनों साथ में अच्छा खेती में काम करो तो धड़किया मजदूर कम लगते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, घर का काम भी करती है और खेती बाड़ी भी करती है ना, तो पशुधन भी होगा आपके पास।
2: हाँ, एक भैंस है, दो बैल है,
0: तो उनकी भी तो सेवा करनी पड़ती होगी आपको।
2: हाँ, करें ने, भैंसी दूते, चाय पीते।
0: सही कहा आपने, रोज वही जीवन, कितना मुश्किल होता है लेकिन इतने हंसकर आप अपने जीवन को जला रही हैं, ये बड़ी बात है ना।
2: लड़का 11वीं में जाता, लड़की 10वीं में जाती है, तो फिर काम तो करना पड़ता है ना।
0: बिल्कुल करना पड़ता है, और अपने बच्चों को पढ़ाना है आपको, उनकी पढ़ाई मत छुड़वाना।
2: नहीं नहीं, पढ़ा रहे बच्चे को तो अभी।
0: चलिए बताइए, आप दोनों मिलकर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज?
1: हाँ मैडम, नगीना पिक्चर गाना सुना दीजिए, बाबला मेहता की आवाज है, श्रीदेव और ऋषि कपूर है कलाकार, उसमें भजन भी गाते हैं हम, नेपाली में गाते हैं, हिंदी में गाते हैं हम, तो पुराना क्लासिकल भजन अच्छे लगते हैं।
0: क्या बात है, तो एक भजन सुना दीजिए, फिर आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं हम।
1: जी जी, भस्मी लगाए तन पर

0: कहते है भंग के प्याले, कहते है डमरू वाले।
1: बहुत सुंदर गाया, दिल में तुझे बिठाकर, है ना। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैम
0: नमस्ते
1: जी, मैं त्रिपुरा से संगीता देवनाथ बोल रही हूँ।
0: जी बताइए कैसी हैं आप।
1: मैं अच्छी हूँ मैम, आज पहली बार आपसे बात करने का मौका मिला मैम।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। त्रिपुरा में कहाँ रहती हैं आप।
1: मैं त्रिपुरा कैलाशहर में रहती हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट है ऊनकोटी त्रिपुरा।
0: अरे वाह, कैसा है आपका शहर बताइए इसके बारे में। हमें हमारे सुनने वाले जानना चाहते हैं कि त्रिपुरा शहर की क्या
1: जी
0: विशेषता है।
1: त्रिपुरा तो पहाड़ी इलाका है मैम, बहुत ही छोटा सा शहर है, तो यहाँ देखने के लिए ऊनकोटी टेम्पल भी है
0: हाँ
1: और बहुत सारे लोग भी देखने के लिए आती है यहाँ, और त्रिपुरेश्वरी टेम्पल भी है।
0: अरे वाह, फिर तो खूब पर्यटक आते होंगे ना।
1: जी बहुत सारा।
0: तो वहाँ के भोजन की कोई विशेषता, जब इतने पर्यटक आते हैं तो कुछ खास मिलता होगा खाने के लिए पहनने के लिए, बता सकती हैं आप।
1: जी यहाँ खाने के लिए तो मशहूर है रसगुल्ला।
0: रसगुल्ला।
1: जी तो
0: अरे वाह, चलिए कौन सा गाना सुनेंगे
1: मैम
0: आप।
1: मुझे गाना सुना दीजिए, लता दीदी की आवाज में, जुर्माना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: सलाम अलैकुम
0: वालेकुम सलाम
1: जी मैडम, हम कश्मीर से बोल रहा हूँ, हिलाल अहमद।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बस बहुत बढ़िया, आप कैसे हो?
0: हम भी ठीक हैं। ये बताइए, वहाँ का प्रकृति का वर्णन कीजिए।
1: जी मैडम, यहाँ तो बहुत बढ़िया मौसम है। आज इस मौसम में तो बहुत मजा है यहाँ। आगे भी जो मौसम आने वाला है तो वो भी बहुत बढ़िया लगता है, मगर थोड़ा सर्दी फिर आते हैं उस मौसम में।
0: हाँ, ठंड तेज हो जाती है ना,
1: हाँ, ठंडक तेज हो जाती है तो बहुत मुश्किलात भी होती है उस वक्त।
0: तो जो कश्मीर है उसको तो हम उसकी अद्भुत जो प्राकृतिक सुंदरता के कारण जानते हैं, धरती का स्वर्ग कहा जाता है। आपके वहाँ बहुत खास
1: हाँ
0: पारंपरिक व्यंजन भी बनाते होंगे, वो व्यंजन क्या-क्या होते हैं? क्योंकि दुनिया भर में उन व्यंजनों के बारे में चर्चा तो होती है, लेकिन वो कैसे बनते हैं, क्या स्वाद होता है, थोड़ा सा एक व्यंजन के बारे में बताइए ना।
1: वो है ना, वाजवान है।
0: वाजवान बनता है ना?
1: हाँ वाजवान, उसमें तो बहुत वैरायटी बनते हैं, तकरीबन 10-12 वैरायटी बनते हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं वो।
0: अच्छा, तो फिर कावा कैसे बनता होगा? वो तो बादाम और केसर और इलायची से बनता है।
1: हाँ उसमें इलायची भी डालते हैं, वो है ना, मतलब रंग, कश्मीरी रंग कहते हैं उसको, वो भी उससे बहुत बढ़िया वो बनते हैं
0: तो अभी आप
1: वो।
0: कावा
1: मतलब
0: पी

0: कभी कभी पीते हैं तो वही तप वगैरह बुखार उस पे भी हम वो यूज करते हैं तो उससे थोड़ा राहत मिलते हैं।
1: अच्छा, तो रूटीन का खाना क्या है आपका?
0: रूटीन का खाना है चावल 2 टाइम और दिन में 2 चाय हम बनाते हैं, लिप्टन चाय और वो है ना नमक चाय।
1: अच्छा, जिसे नून चाय कहते हैं।
0: नून चाय।
1: नून चाय ये क्या गुलाबी से रंग की कोई चाय होती है?
0: हाँ, ये गुलाबी बनते हैं। इससे आज बहुत पुराने वक्त में ये मतलब आज से पहले कुछ साल पहले ये हम समावार में बनाते हैं, कश्मीरी समावार है ना उसमें बनाते हैं, तो ये बहुत बड़ा मजा होता है इसको। तो वो इंडक्शन हीटर है बिजली पे जो चलने वाले उनपे बनाते तो ऐसा नहीं होते ये भी।
1: पहले जैसा स्वाद नहीं आता है जो स्वाद आया करता था ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कश्मीर के पारंपरिक व्यंजन कैसे होते हैं या वहाँ का रहन सहन कैसा है?
0: हमें भी बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करते हुए, तो आपके प्रोग्राम भी हम सुनते हैं सुबह से शाम तक।
1: बिल्कुल सुनते
0: मजा
1: हैं।
0: आता है।
1: बिल्कुल, बताइए गाना बताइए।
0: मैडम हम आज सिर्फ तुम फिल्म का गाना है, 5-6 सुर में गाते हैं।
1: चलिए सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से, अपना नाम बताइए।
1: मैं गजानन नादरे बोल रहा हूँ, गिरगांव तहसील बसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से।
0: स्वागत है आपका गजानन जी, कैसे हैं?
1: बस बिल्कुल ठीक ठाक है, ऊपर वाले की दुआ है।
0: बिल्कुल, तो बताइए ना अपने गांव के बारे में कुछ खास जो हम लोगों को नहीं पता है। कैसा है आपका गांव, कितनी आबादी है, क्या खासियत
1: में
0: है?
1: कैसा है, खेती किसानी होती है दीदी? यहाँ
0: सभी लोग खेती किसानी करते हैं?
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: अच्छा,

0: पानी की व्यवस्था वगैरह, बिजली वगैरह सब तरीके से आती है आपके यहाँ अच्छे से?
1: सभी सभी व्यवस्था है।
0: और मौसम कैसा रहता है, बदलता है या ये गर्मी का ही मौसम रहता है?
1: मौसम बदलता रहता है ना, अभी तो कैसा है बारिश का मौसम है, मगर बारिश उतनी हुई नहीं अभी तक, मगर फसल के लायक है।
0: अच्छा, फसल के लायक तो हो गई है ना, फसल जो आपकी खराब नहीं होगी ना?
1: नहीं,
0: क्या फसल बोई
1: अभी
0: आपने
1: फसल
0: अभी खेत में?
1: अभी तो कैसा है, इन दिनों सोयाबीन और हल्दी की फसल रहती है,
0: फिर
1: और साल भर रहने की फसल तो गन्ने की है, केले की है।
0: अच्छा, मतलब सोयाबीन और हल्दी की फसल कब तक रहेगी, कब इसकी हो जाएगी छटाई?
1: वो जून से लगभग नवंबर तक चलती है,
0: ठीक
1: चार
0: है,
1: महीने की रहती है दीदी, 4 महीने में उसकी कटाई होती है सोयाबीन की। और सोयाबीन निकलने के बाद गेहूँ और चने की भी कर सकते हैं उस जगह पर, कई
0: अच्छा
1: कई किसान करते हैं वही चीज खेती।
0: अच्छा यानी बारहो मासी कुछ ना कुछ खेत
1: हाँ
0: में डाला ही जाता
1: कैसा है,
0: है।
1: पानी की व्यवस्था है तो हर महीने में मौसम में आता है सब
0: हाँ,
1: फसल।
0: ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब खेत जो है खाली नहीं रहते हैं ना कोई फसल रहती ही है।
1: गेहूं की निकलने के बाद थोड़ी जमीन की अच्छी तरह से अगले साल के लिए मरम्मत करने के लिए 4 महीने ठीक रहती है ना, उप करेंगे।
0: अच्छा चलिए, तो आप अकेले कर रहे हैं, आपके साथ कौन कौन करते हैं, घर के अन्य सदस्य कौन कौन है जो आपकी खेती बाड़ी में सहायता करते हैं?
1: घर में है ना, मैं भी हूँ, भाई है और मेरी पत्नी भी है,
0: हाँ, सब मिलकर करते हैं। और बाहर से भी कुछ लोग रखे हैं आपने या आप ही पर्याप्त होते हैं?
1: मजदूर भी रहते हैं दीदी, उतना कैसा है घर के आदमी को संभालने में ज्यादा तकलीफ होती।
0: सही कह रहे हो, मजदूरों को रखना ही पड़ता होगा ना, कुछ काम ऐसे हैं जो वो ही कर पाते हैं।
1: हाँ कैसा है, जल्दी से जल्दी कई कई बार उसकी निगरानी करनी पड़ती है।
0: हाँ बिल्कुल, हम सबकी शुभकामनाएं हमारे किसान भाइयों के प्रति है जो अपने खेत में रात दिन लगे रहते हैं हम लोगों को अन्न दाना देने के लिए। कौन सा गाना सुनवाएं आपको? तो
1: लेकिन फिल्म है उपहार और गाने के बोले मैं एक राजा तू एक
0: एक रानी है, चलिए सुनते हैं गाना।

0: विद भारती।
1: अनिल नाइक बोरली मुंबई से बात कर रहा हूँ। नमस्कार।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: अरे नमस्कार नमस्कार मेरी बहन, क्या बात है
0: भाई।
1: आपको 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: अरे क्या बात है, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और उस दिन 1947 में भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से पूरी तरह आजादी मिली थी।
1: और 9 अगस्त क्रांति दिन का छोड़ो भारत आंदोलन।
0: बताइए आप कैसे लेते हैं इस बात को, क्या महसूस करते हैं स्वतंत्रता दिवस पर?
1: स्वतंत्रता दिवस पर में मेरे बहुत से प्रोग्राम हो जाए हमारे सोसाइटी में, झंडा वंदन किया जाता है, इधर गान होते हैं,
0: देश प्रेम के गान होते हैं ना।
1: हाँ, और मैं भी उसमें शामिल हो जाऊँ।
0: आप भी गाते हैं?

0: हाँ, छोड़ो भारत आंदोलन।
1: बताइए, आप कैसे लेते हैं इस बात को, क्या महसूस करते हैं स्वतंत्रता दिवस पर?
0: स्वतंत्रता दिवस पर मेरे बहुत से प्रोग्राम होते हैं हमारे सोसाइटी में, झंडा वंदन किया जाता है, इधर गान होते हैं।
1: देश प्रेम के गान होते हैं ना?
0: हाँ, और मैं भी उसमें शामिल हो जाऊँ।
1: आप भी गाते हैं देशगान?
0: जी जी
1: कौन सा गाना गाते हैं वहाँ पर,
0: मराठी गाना।
1: बताइए गा के।
0: जय हो स्तुते श्री महन मंगले वास्पदे शुभ दे स्वतंत्र से भगवती स्वामहम यशोयुता वंदे यशोयुता वंदे।
1: बहुत सुंदर।
0: और एक गाना है, ने मजसी ने परत मातु भूमि ला सागरा प्राण तरमल ला सागरा सागरा।
1: बहुत अच्छा।
0: मुझे जो गाना सुनने की इच्छा है वो है, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया। कविता कृष्णमूर्ति, शंकर महादेवन और बाल कलाकारों ने गाया है
1: जी।
0: उनका नाम है परदेश। ये गाना राग बैरागी पर आधारित है।
1: अच्छा, राग बैरागी पर आधारित ये गाना है। बहुत अच्छा लगा आपने इसको शास्त्रीय संगीत की जो राग है उस पर भी बताया कि किस राग पर आधारित गीत है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये देश प्रेम गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से,
1: हेलो फरमाइश।
0: नाम बताइए अपना, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं सोनीतपुर असम रंगापरा से अमल बसुमतारी बोल रहा हूँ मैम।
0: अच्छा ये बताइए, अभी आसाम में जब हम देख रहे थे काफी अतिवृष्टि हुई है।
1: ये बारिश हुई थी, ये शिव सागर में हुई थी, जोरहाट में हुई थी, और ये नाजिरा गोलाघाट चराइदेव असम में हुआ था। ऐसे बार बहुत लोगों की जान भी चली गई है, और बहुत नागालैंड में बादल फटने की वजह से हुआ ये
0: जी
1: कहानी,
0: जी
1: इसके वजह से हुआ था ये। और हमारी सोनितपुर में ऐसा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हमारा थोड़ा ऊंचा जगह है इसलिए, और
0: अच्छा
1: आज भी बहुत काफी धूप दे रहे हैं। हमारे
0: हाँ
1: यहाँ तो बारिश इतनी जोर से नहीं देता है, बारिश आते है तो ऐसे हल्के से बारिश आते हैं।
0: हाँ और अब कैसा है वहाँ माहौल?
1: यहाँ तो ठीक ठाक चल रहा है, फिर भी गर्मी ज्यादा चल रहा है, लगभग इसे 40 डिग्री तक जाता है हमारे यहाँ गर्मी।
0: बहुत सही कहा
1: और
0: आपने।
1: कभी कभी रात को बारिश भी होता है, रात पे थोड़ा राहत मिलता है, ठंडा होता है, और दिन भर ज्यादा गर्मी होता है।
0: जी तो एक बात बताइए, आप क्या करते हैं वहाँ पर आसाम में अमल जी?
1: असम में तो हम खेत के साथ जुड़ते हो और चाय का बगान के साथ जुड़ते हो, और धान का खेती है हमारा, धान का खेती से जुड़ते हो।
0: अरे वाह, असम की चाय तो सबसे प्रसिद्ध है ना, कितनी स्वादिष्ट
1: जी
0: चाय होती है। आप वहाँ काम करते हैं है
1: जी
0: ना, आपके खेत में चाय की
1: हमारे
0: खेती होती
1: असम
0: है?
1: के सबसे ज्यादा सोनितपुर में ज्यादा फेमस है, जैसे का मोहन टी बगान, इसको ही ज्यादा जानते हैं, उसमें
0: जी
1: ज्यादा फेमस है ये। और
0: जी
1: हमारे इस ग्राम क्षेत्र में भी है, सबके घर घर में चाय का बगान देखने के लिए मिल जाता है।
0: बहुत अच्छा लगता है जब हम इसकी पिक्चर्स देखते हैं तो चाय के बागान इतने अच्छे लगते हैं, बहुत अट्रैक्ट करते हैं हम लोगों को, तो वाकई धन्यवाद देते हैं वहाँ के किसानों को।
1: जी जी
0: तो देखिए स्वतंत्रता दिवस आ रहा है और आप भी शायद देशभक्ति गीत सुनना चाहते हैं इस कार्यक्रम में।
1: जी जी वीर जारा फिल्म का है, ऐसा देश है मेरा गाना को सुनना है, और इतना रहा इनकी आवाज में।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हेलो मैम, राधे राधे। परिधि राजपूत बोल रही हूँ, बैरची जिला भोपाल से। हाँ
0: ये आपका गांव है?
1: नो मैम, शहर ही है। हाँ
0: अच्छा, आपका
1: मैम,
0: नाम बड़ा प्यारा है, परिधि।
1: थैंक यू मैम।
0: किसने रखा ये नाम?
1: मैम मेरी मम्मी ने और पापा ने रखा है। मैम
0: क्या सोच के रखा होगा?
1: पता नहीं है उन्होंने क्या सोच के रखा है, पता नहीं। मेरे को तो बस यही पता है कि मेरी मम्मी पापा ने रखा
0: अच्छा,
1: है।
0: क्या मतलब होता है परिधि का?
1: मैम गोल चक्र होता है।
0: अच्छा, उसे परिधि कहते हैं। तो क्या करती हैं आप परिधि?
1: मैं पढ़ाई करती हूँ, 8th क्लास में हूँ।
0: 8th क्लास में हैं आप?
1: हाँ
0: अभी
1: मैम।
0: तो बहुत छोटी हैं। आप क्या हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनती हैं विविध भारती के?
1: हाँ मैम, मैं बिल्कुल सुनती हूँ। होमवर्क करते हैं ना, जब भी सुन लेती हूँ, टाइम निकाल के सुनती हूँ।
0: आपके घर में और कौन सुनता है ये कार्यक्रम?
1: मैम मेरे पापा जी भी सुनते हैं और मैं भी सुनती हूँ उनके साथ साथ।
0: क्या बात है, बचपन से आप रेडियो सुनना चाहती हैं। तो आगे चल के क्या बनना चाहती हैं? क्या इसी लाइन में आना चाहती हैं?
1: हाँ मैम बिल्कुल, मैं आना चाहती हूँ।
0: कैसे आएंगी बताइए, क्या लगता है आपको रेडियो की दुनिया में कैसे पहुंचा जा सकता है?
1: मैम अभी तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं आगे बड़ी हो गई जरूर समझूंगी क्या क्या क्या करना पड़ता है इसको आने में।
0: तो मुझे
1: हाँ
0: एक बात
1: मैम,
0: बताइए, आपने गाना कौन सा पसंद किया है?
1: देशभक्ति सॉन्ग सुना दीजिएगा मैम आप तो,
0: कौन सा?
1: कर्मा फिल्म का।
0: हाँ, तो मुझे एक बात बताइए, आप इतनी छोटी सी हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि देश प्रेम का मतलब क्या होता है तो क्या कहेंगे आप? कैसे मनाएंगे स्कूल में? आपने किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है?
1: मैंने एक मोबाइल में एक स्पीच निकाली, तो मैं उसको पढ़ना चाहती हूँ। देश का ही मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत कर लेते हैं।
0: तो हमारे भीतर देश प्रेम ऐसे होना चाहिए कि हम अपने देश को साफ सुथरा रखें। जब हम
1: हाँ
0: जहाँ
1: मैम,
0: रहते हैं वहाँ हम अपने देश के प्रति ईमानदार हों, प्रकृति के प्रति ईमानदार हों। हमारा जो व्यक्तित्व है वो ईमानदारी होनी चाहिए
1: हाँ मैम
0: हमारा।
1: बिल्कुल, ईमानदारी रहना चाहिए और सब
0: हाँ,
1: लोगों को।
0: सबसे बड़ी बात यह है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इतनी प्यारी सी छोटी सी उम्र में आप विविध भारती सुनती हैं अपने पिता के साथ। हमें भी अपना
1: हाँ
0: बचपन
1: मैम,
0: याद हो आया जब हम रेडियो सुना करते थे अपने पिता के साथ।
1: हाँ मैम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा देशभक्ति गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से, नाम बताइए अपना।
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागपुर, जिला उज्जैन से।
0: कैसे हैं प्रेम जी आप?
1: बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करते हुए मुझे बहुत घबराहट हो रही है अभी।
0: कोई इंटरव्यू थोड़ी दे रहे हैं जो आपको घबराहट हो रही है?
1: विविध भारती में जब कॉल लगता है ना, तो ऐसा ही हाल होता है सभी श्रोताओं
0: अरे
1: का।
0: मुझे तो लगा आप कहेंगे कि आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपने एक नई बात कह दी कि मुझे घबराहट हो
1: जी
0: रही है।
1: अच्छा तो लग रहा है, लेकिन क्या होता है जब कॉल कनेक्ट होता है ना एकदम से, तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है।
0: धड़कन तेज हो गई, अब कुछ थमी?
1: हाँ बिल्कुल नॉर्मल अब हो गया हूँ मैं। और
0: अच्छा
1: आपको बताऊँ, काफी अच्छा मौसम है यहाँ पर, अभी रुक रुक के तेज बारिश हो रही है।
0: चलिए, मौसम अच्छा हो गया और क्या चाहिए ना,
1: जी
0: बारिश होना
1: हाँ,
0: बहुत जरूरी है।
1: और अभी
0: चलिए
1: सावन का महीना चल रहा है ना, तो बाबा महाकालेश्वर बाबा के यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं।
0: सबसे बड़ी बात है, तो जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है आपके वहाँ, उसके लिए तो लोग बड़ी तादाद में आते होंगे, है ना?
1: जी बिल्कुल, कांवड़ यात्री आ रहे हैं, और सभी के लिए मतलब काफी अच्छी सुविधा की हुई है यहाँ पर। जी आने जाने के लिए रास्ते काफी चौड़े हैं, भंडारे जगह जगह लगाए हुए हैं, और रहने के लिए निःशुल्क जगह उपलब्ध कराई है सभी यात्रियों को।
0: क्या बात है, क्या शानदार माहौल हो रहा होगा। तो ये जो
1: जी
0: महाकाल
1: हाँ
0: मंदिर है आपके वहाँ, इसकी विशेषता क्या है?
1: जी, महाकालेश्वर बाबा के मंदिर में जब एक बार किसी की अर्जी लग जाती है, तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है।
0: अच्छा, और कहते भी है ना कि ये यहाँ पर उत्तर या दक्षिण मुखी शिवलिंग है,
1: हाँ जी बिल्कुल,
0: ये इसकी खास विशेषता बताई गई है जैसा
1: हाँ जी
0: हमने।
1: खास विशेषता है
0: तो
1: जी।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आपके उज्जैन में जो है अभी बहुत सारे पर्यटक आ रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं और सावन मना रहे हैं।
1: जी
0: तो 15 अगस्त भी करीब आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल करीब है। आप युवा
1: जी
0: हैं, क्या सोचते हैं आज के दौर में युवाओं के लिए देश प्रेम को दिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
1: सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक दूसरे से सद्भाव से रहे, प्रेम से रहे, और कहीं पर भी मतलब ऐसे कचरा कूटा ना फेंके, और एक दूसरे के लिए प्रेम की भावना रखे।
0: क्या बात है, आपने तो इंटरव्यू का बिल्कुल सही जवाब दे दिया है जो आपसे सवाल
1: जी
0: पूछा गया। बहुत अच्छी बात आपने कही।
1: फिल्म
0: कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: का नाम है हेलो ब्रदर, और गाने के बोले हटा सावन की घटा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ही।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, आपका स्वागत
1: हाँ
0: है।
1: नमस्कार मैडम,
0: नमस्कार
1: आप मंदाकिनी जी बोल रही है? पीयूष
0: जी। हाँ, आप कौन बोल रहे हैं?
1: मेहता सूरत से। बस
0: स्वागत है आपका पीयूष जी। कैसे हैं आप?
1: बस मजे में, स्थापना
0: आप तो विविध भारती के बहुत पुराने और पक्के श्रोता हैं हमारे,
1: के समय से। वो
0: तब से आप सुनते हैं?
1: पहले शुरू से 2-4 साल वो बड़े लोग बजाते थे और सुनता था, बाद में 12 साल की उम्र से मैं ही ट्यून करने लगा था।
0: क्या बात है। तो बताइए मुझे पीयूष जी, 12 साल की उम्र में जब आप विविध भारती सुना करते थे, फिर आप युवा हुए, फिर आपने धीरे धीरे इस कार्यक्रम को सुना, और आज जब आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, तब और अब के कार्यक्रमों में क्या फर्क नजर आता है आपको?
1: प्रसारण की प्रक्रिया में फर्क है। पहले 2 स्टेशन से लाइव होते थे, एक ही स्क्रिप्ट अलग अलग अनाउंसर पढ़ते थे, गाने बजते थे, मुंबई और मद्रास जो आज चेन्नई है वो। बाद में वो टेप जाने शुरू हुए।
0: हाँ, वो तो आंतरिक प्रक्रिया है। आप एज ए लिसनर, एक श्रोता के रूप में क्या अंतर महसूस करते हैं? मतलब उस वक्त जिस तरह से प्रोग्राम पेश किए जाते थे, आज जिस तरह से पेश किए जाते हैं, क्या अंतर लगता है आपको?
1: जमाने के साथ विविध भारती कदम मिला के चल रही है।
0: मतलब दौड़ रही है एक तरह से। और
1: हाँ
0: आप मुझे ये भी बताइए, जब हम अपने कार्यक्रम देते हैं और बीच में जब हम वाद्य धुन बजाते हैं, तो आप उसका भी जिक्र करते हैं फेसबुक पेज पर कि भाई ये वाद्य धुन बजाई जा रही है, ये गुण आप में कैसे है? क्या क्या सीखा है आपने? कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं आप?
1: मैं थोड़ा बहुत मांसगन बजा लेता हूँ।
0: आप बजाइए, अगर सुनाना चाहते हैं तो सुनाइए। अच्छा
1: एक ही
0: चलिए,
1: रास्ता गाने का फिल्म का सावरे सलोने दिन बहार के।
0: बिल्कुल सुनाइए।

0: क्या बात है, अभी आपकी उम्र कितनी है ये बताइए?
1: मेरी 77 अभी पूरे होने वाले हैं
0: सेवेंटी
1: सितंबर में।
0: सेवन इस उम्र में भी आप ये माउथ ऑर्गन बजा रहे हैं ना,
1: कुछ हद तक बजा लेता हूँ,
0: बहुत
1: मैं ऐसा
0: अच्छा।
1: नहीं बोलता कि मैं संपूर्ण कलाकार हूँ
0: लेकिन
1: इसका।
0: इतने लंबे समय तक इस शौक को बनाए रखना और आज भी बजाना, हमें सुनाना, ये बहुत बड़ी बात है। कौन सा गाना सुनेंगे बताइए?
1: प्रेम पत्र का गाना, ये मेरे अंधेरे उजाले तो होते, सरोज
0: अरे बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप तो, आपकी पसंद का गीत सुनते हैं
1: चौधरी का संगीत है और
0: सलील
1: विमल रॉय
0: साहब
1: की फिल्म और शशि कपूर और साधना की अदाकारी है।
0: जी, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती
1: जी। नमस्ते
0: नमस्ते
1: जी, मैं जोधपुर से गिरधारी लाल विश्वकर्मा बोल रहा हूँ।
0: नमस्कार गिरधारी जी, नमस्कार, जोधपुर राजस्थान से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ, बिल्कुल अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, बरसात का मौसम चल रहा है।
0: अच्छा, बरसात हो रही है राजस्थान में, खासतौर से जोधपुर में?
1: थोड़ी थोड़ी हो रही है, कल भी थी, आज भी थोड़ा सा मौसम बना हुआ है। अच्छा,
0: चलिए, तो स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल ही नजदीक है, और ऐसे में अगर मौसम अच्छा होगा तो हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा माहौल तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो स्टेडियम जाते हैं, परेड करते हैं, देशगान गाते हैं। आप क्या करते
1: जी,
0: हैं गिरधारी जी?
1: जी मैं वैसे पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ और म्यूजिक का शौक है। मेरा काम के साथ साथ रेडियो चलता रहता है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे रेडियो के बिना तो हम लोग काम ही नहीं कर सकते हैं, तो हमारे साथ पास में जब हम काम करते हैं तो पास में रेडियो चलना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे को काम करने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है और उसमें मन लगता है काम करने में।
0: तो रेडियो में कौन सा स्टेशन ट्यून करते हैं?
1: विविध भारती और रेडियो सलून, हमारे स्थानीय जोधपुर।
0: संगीत का भी शौक है, बताइए किस तरह का संगीत सुनते हैं?
1: संगीत से मैं पुराने फिल्म के गाने पसंद करता हूँ और मैं जो है रिकॉर्ड्स कलेक्शन करने का मेरा शौक है।
0: अच्छा,
1: मैं अपने घर पे ही एक आर्काइव बना रखा है, पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स को स्टे करता हूँ और उनको डिजिटलाइजेशन करता हूँ और सारा उनका कंप्यूटराइजेशन के ऊपर काफी रिकॉर्डिंग्सों को मैं शोध कार्य भी कर रहा हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स थे पुराने, जो नॉन फिल्मी उन सब के ऊपर मेरा फोकस रहता है, मैं उनके संबंधित डाटा इकट्ठे करता हूँ। इस तरह का शौक मुझे बचपन से था, मुझे कम से कम 40 साल से मैं ये रिकॉर्ड कलेक्शन कर रहा हूँ।
0: क्या बात है, तो आपके पास कितने सारे रिकॉर्ड है फिर, ग्रामोफोन रिकॉर्ड जिन्हें अब हम देखना ही भूल गए हैं?
1: हाँ जी, मेरे पास काफी बड़ा कलेक्शन है।
0: तो घर में आपके

0: पास वो ग्रामोफोन वाली मशीनें भी हैं जिन पर रखकर सुना
1: हाँ
0: जा
1: बिल्कुल,
0: सकता है निडिल
1: सारा
0: लगा के।
1: म्यूजिक सिस्टम है, सारा वो रिकॉर्डिंग सिस्टम है, मैं उनको रिकॉर्डिंग करता हूँ सारा का,
0: क्या बात है, चलिए
1: डिजिटाइजेशन का काम चल रहा है सारा। हाँ
0: बहुत अच्छा
1: जी,
0: लगा ऐसे संगीत प्रेमी से बात करना। कौन सा गाना सुनेंगे आज गिरधारी जी आप?
1: फिल्म शोकिया 1951 की है, कुमार सेन का म्यूजिक है, लता मंगेशकर जी की आवाज है, सपना बन साजन आए।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लग गई है उनसे हमारा हमेशा की तरह करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से, और इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222867 0288, दूसरा नंबर 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिनों में 19 बैठकें हुई। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी।
2: टोटल 12 बिल पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, क्योंकि बिजनेस अच्छा हुआ। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने संसद के मॉनसून सत्र के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की। नई दिल्ली में पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी बार बार अपनी मांग बदलते रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है। उन्होंने कहा कि कलाकार देश के समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेंगहोंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्कन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग को बढ़ाने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्कन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा कायदाए हिंद AQIS को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के अनुसार AQIS एक बिखरे हुए संगठन से विकसित होकर क्षेत्रीय आतंकवादी संगठन बन गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा तथा सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है। श्री नड्डा ने कहा कि राष्ट्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन कर रहा है। इस बीच देश भर में

0: हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए और राष्ट्र के प्रति एकता और समर्पण का संदेश दिया। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ी और युवा और नागरिक शामिल हुए। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। अमेरिका में विभिन्न राज्य 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी कर रहे हैं। इसके तहत भारत की स्वाधीनता, समृद्ध विरासत और विविधता के साथ साथ अमेरिकी ताने बाने में भारतीय अमेरिकी समुदाय के बढ़ते योगदान को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 5:10 पर आप भक्ति रचनाओं का कार्यक्रम सुनिएगा वंदन, और 5:30 पर आप सुनेंगे पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार बुलेटिन। हमारे युवा साथी अपना प्रसारण सुनेंगे युवावाणी 5:35 पर, और 6:05 पर आप सुनिएगा भोजपुरी लोकगीत, 6:10 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे।

सांस्कृतिक कार्यक्रम में दिल बहलाइएगा भोजपुरी फिल्म संगीत से संध्या 6:40 पर और 7:15 पर सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास सुनिएगा।

आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल आप सुनते हैं क्रमशः 7:30 और 7:45 पर। 7:50 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद।

श्रोताओं, दिल्ली से प्रसारित संसद समीक्षा आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे और 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या।

8:30 पर विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का 7वां अंक आज आप सुनेंगे और रात्रि 9 बजे सुनिएगा लोकधारा के अंतर्गत कुछ भोजपुरी लोकगीत।

गज़लों की महफिल सजेगी रात्रि 9:15 पर और 9:30 पर। सुनिएगा विविध भारती मुंबई की प्रस्तुति आज के फनकार। रस रंग के तहत हिंदी एल्बम सॉन्ग्स आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे और 10:30 पर। सुनिएगा सदाबहार फिल्मी गीतों का हमारा कार्यक्रम चित्रपट तराने। सभा का समापन होगा रात्रि 11:10 पर दिल्ली से प्रसारित समाचारों के बाद। तो श्रोताओं, यह थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा आपके लिए। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदन।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

तो श्रोताओं, अभी आपने सरदार मनिंदर सिंह छलिया की आवाज़ में यह रचना सुनी और कार्यक्रम का समापन लता मंगेशकर की गई इस भक्ति रचना से।

प्रणाम। ई आकाशवाणी पटना है। अब रहुआ जयप्रकाश से भोजपुरी में समाचार सुनी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बिहार लोक सेवा आयोग के 70वीं संयुक्त परीक्षा में चुनाइल 2027 उम्मीदवारन के बीच नियुक्ति पत्र बांटलन। पटना के बापू सभागार में भइल यह कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई गो मंत्री मौजूद रहलन। समारोह के संबोधित करत मुख्यमंत्री नया नियुक्त भइल अधिकारियन के विकसित भारत अविकसित बिहार के संकल्प पूरा करे खातिर ईमानदारी अलगन से काम करे के सलाह देहलन। लोकसभा के कार्यवाही अनिश्चित काल खातिर स्थगित कर देहल गइल बा। पिछला महीना के 20 तारीख से शुरू भइल मानसून सत्र के दौरान 25 दिन में लोकसभा के 19 गो बैठक भइल। सदन में कई गो विधायी आ राष्ट्रीय मुद्दा पर चर्चा भइल। एह दौरान लोक परीक्षा अनुचित संसाधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, अधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान आ औरी विधि संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 आ केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 समेत कई गो जरूरी विधेयक पास कैल गइल। ओहि जे राज्यसभा के भी कार्यवाही अनिश्चित काल खातिर स्थगित कर दिहल गइल। मानसून सत्र के दौरान नीट पेपर लीक प्रदर्शन करत छात्रन पर पुलिस के कथित कार्रवाई आ अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा में भइल कथित धांधली के लेके कार्यवाही में बार बार रुकावट आइल। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के तैयारी के अंतिम रूप दिहल जा रहल बा। हमार संवाददाता बतौलन कि मुख्य समारोह में होखे वाला झंडोत्तोलन आ परेड के फाइनल रिहर्सल कैल गइल। एने हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभक्ति आ राष्ट्रीय गौरव के भावना से जुड़ल अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कैल जा रहल बा। स्कूलन सरकारी विभागन आ सामाजिक संगठनन के भारी भागीदारी से तिरंगा यात्रा प्रभात फेरी साइकिल रैली आ सामूहिक वंदे मातरम गायन जैसन कार्यक्रम हो रहल बा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लेके राज्य के अलग अलग डाकघर में तिरंगा के बिक्री कैल जा रहल बा। लोग 25 रुपया के दर से अपना नजदीकी डाकघर से तिरंगा खरीद सकेला। भोजपुरी के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामला में राज्य सरकार मृतक के परिवार के आर्थिक मदद आ परिवार के एगो सदस्य के सरकारी नौकरी देवे के ऐलान कैले बा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ई जानकारी देले। उ बतौलन कि न्यायिक जांच आयोग के अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर ई फैसला लिहल गइल बा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहले बारन कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के चौथा चरण के विज्ञापन जारी होखे से पहले माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिहल जाई। एसटीटी में पास होखे वाला अभ्यर्थी ही TRI-4 में शामिल हो पाई हैं। एसटीटी के परीक्षा में बैठे वाला अभ्यर्थी TRI-4 खातिर आवेदन तक कर सकत बारन, लेकिन परीक्षा में बैठे खातिर एसटीटी पास कैल जरूरी हुई। बता दें कि एसटीटी खातिर आवेदन के प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू हो रहल बा। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात करके दिल्ली पटना के बीच नया ट्रेन चलावे के मांग कैले बाड़न। साथ ही किशनगंज जलालगढ़ नया रेल लाइन परियोजना के जल्द से जल्द मंजूरी देवे के अर्जी कैले बाड़न। श्री यादव रेल मंत्री से कोसी सीमांचल क्षेत्र के रेल कनेक्टिविटी मजबूत करे खातिर औरी रुकल योजना के तेजी से आगे बढ़ावे के आग्रह कैलन। राज्य में बरखा के गतिविधि कम भइला से लोगन के एक बेर फेर उमस भरल गर्मी के सामना करे के पड़ रहल बा। पिछला 24 घंटा के दौरान 37.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ वाल्मीकि नगर राज्य के सबसे गर्म जगह रहल। उहें मधुबनी के झंझारपुर में सबसे ज्यादा 41 मिलीमीटर बरखा रिकॉर्ड कैल गइल। मौसम के पूर्वानुमान में कहल गइल बा कि अगिला 24 घंटा के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिमी आ दक्षिण पश्चिमी हिस्सा में कुछ जगह आंधी तूफान के साथ

लता मंगेशकर की गई इसी भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदन अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। थोड़ी ही देर में यानी ठीक 5:30 पर आप सुनेंगे पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार बुलेटिन। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

आकाश से बिजली गिरे के अंदेशा बा। उहें कुछ जगह पर हलुक बरखा भी हो सकत बा। ए दौरान तापमान में कोनो खास बदलाव ना होई। एकरे साथ आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एजा समाप्त भइल।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 5:35 हुए हैं। अब हमारे युवा साथी अपना प्रसारण सुनेंगे युवावाणी।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को संजय चतुर्वेदी का सब प्रेम नमस्कार और कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी। श्रोताओं, एक ऐसे समय पर हम आपसे रूबरू हैं जबकि हम लोग चंद एक दो रोज में स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं और ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है और इसमें सब की सहभागिता हो, चाहे विद्यार्थी हों या कृषक हों या व्यापारी हों, जो कोई भी हों, राष्ट्रीय त्यौहार है ही इसीलिए कि हम सभी उसमें शरीक होते हों। और जब कभी भी हम राष्ट्रीय त्यौहार की बात करते हैं तो एक बात तो तय है कि हमें अनुशासन अवश्य याद आता है, क्योंकि हर चीज़ का अपना अनुशासन है। तिरंगा झंडा कैसे फहराना है, किस समय फहराना है, कहाँ फहराना है, कब उसे उतारना है, या और भी चीज़ें जो इसके साथ जो मिली हुई हैं तकनीकी चीज़ें, तो उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और आज का युग तो नेट का युग है, आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन हाँ, जो भी हो, सलीके से हमारी संसद, हमारा संविधान और राष्ट्रीय ध्वज, ये ऐसे प्रतिमान हैं जिनके प्रति हमारी सच्ची निष्ठा होनी चाहिए और है भी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि जीवन में सफल होने के लिए अगर कुछ एक दो शर्तें हैं तो उसमें पहली शर्त तो यही है कि अनुशासित होना चाहिए जीवन। जो अनुशासित नहीं है उसकी जीवनचर्या सच पूछिए तो अव्यवस्थित है या कुव्यवस्थित भी है। और जहाँ कहीं भी अनुशासन है वहाँ ये मानकर चलें कि सब कुछ बहुत ही सलीके से है, तरीके से है। अब आप जैसे देख लें कि सूरज, चांद, सितारे, यदि उनको ही आप देख लें तो सबका समय एकदम तय है। चंद्रोदय कब होना है, सूर्योदय कब होना है, सूर्यास्त, यही अनुशासन तो है और इससे हम अनुशासन की शिक्षा ले सकते हैं। आम जीवन में, साधारण जीवन में, यदि हम सैनिकों के जीवन को देखें या कहीं आप जाइए छावनी में देखिए सैनिकों की, वहाँ आपको जिस तरह से व्यवस्थित चीज़ें मिलेंगी वहाँ आपको ये मानना पड़ जाएगा कि भाई हाँ, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। और यदि हम बात छोटी मोटी सफलताओं की कर लें, जैसे कोई चाहता है कि हमें नौकरी मिल जाती, कोई चाहता है कि हम अपने बिजनेस में तरक्की कर जाते, या और भी कोई भी है, तो आप यकीन मानिए कि हर जगह अनुशासन की बड़ी ज़रूरत है। लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, लोगों से व्यवहार निभाना, संबंधों को निभाना, संबंधों को ऊँचाइयाँ देना, या दूसरों के साथ निभाना, निभाते हुए चलना, घर परिवार में भी, घर के बाहर भी, तो ये सारी चीज़ें बिन अनुशासन के संभव नहीं हो पाएंगी, मुश्किल होता है। तो इसी से मैंने कहा कि अनुशासन जो है वो देश को महान बनाता है और सफलता के लिए तो एकदम पहली कड़ी है, पहली शर्त है कि अनुशासन होना चाहिए। विद्यार्थी के लिए जो लक्षण बताए गए हैं, बको ध्यानम,

अल्पहारी स्वान निद्रा, तो ये सब चीज़ें जो है वो एक तरह का अनुशासन ही है। गृह त्यागी बिन अनुशासन के हम विद्या अध्ययन भी बढ़िया से नहीं कर सकते हैं या उसका लाभ भी हमको बढ़िया से नहीं मिल सकता है। समय से जगना, समय से बैठना, समय से उठना, समय से पढ़ना, समय से विद्यालय जाना या जहाँ कहीं भी और आपको निकलना हो, सब का एक इसी से जो अच्छे माता पिता अभिभावक गार्जियन हैं या शिक्षक हैं वो बच्चों को समझाते हैं कि एक रूटीन बना लो। रूटीन ही तो अनुशासन है, वही सिखाता है कि हमको कितने बजे क्या करना है, किनसे मिलना है कितने बजे। तो ये एक चीज़ है जो कि हमारी ज़िंदगी में अनुशासन यदि है तो ऐसा लग जाता है कि हाँ सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है। लेकिन जहाँ अनुशासन नहीं है, घर में आए कपड़ा कैसे भी फेंक दिए, जूता कहीं भी खोल दिए, मोजा कहीं भी खोल दिए, फिर जाना हुआ तो लगे ढूंढने, अब मिल नहीं रहा है, कौन लिया किसने देखा, तमाम तरह की बातें होने लगती हैं। तो ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने स्वयं सुव्यवस्थित नहीं रखा। अगर हम सुव्यवस्थित रखे होते तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अनुशासन का मतलब केवल यही नहीं है कि हम जो है दूसरों की बात माने, नहीं, अपनी जीवनचर्या को एकदम सीधा रखना, किसी भी नियम के अनुसार काम करना ही अनुशासन है। टू एक्ट अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संस्थान में आप जाएंगे तो वहाँ एक रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं और उसी के मुताबिक हमें काम करना है। बायोमेट्रिक का समय आ गया है, ज़माना आ गया है, अब तो अपने समय पर हमें अपनी उंगली लगानी है अटेंडेंस के लिए, और समय पर ही निकलना है तो अटेंडेंस फिर से बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करना है। अनुशासन है। अब कोई सोचे कि भाई चलो हमें क्या है, 9 बजे पहुंचना है, 11 बजे भी पहुंचेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा ऑफिस का ना कार्यालय का। तो इसीलिए सफलता के लिए अनुशासन का बड़ी महत्व है। मर्यादित जीवनचर्या होनी चाहिए। गुरुदेव, गुरुजनों, अभिभावकों, माता पिता, बड़े बुजुर्गों, छोटों के प्रति स्नेह दिखाना और हृदय से दिखाना, दर्शाया जाना, ये अनुशासन है जिससे कि हमारा व्यवहार परिष्कृत होता है और हम उसी से दूसरों के लिए अनुकरणीय भी बन जाते हैं और दूसरे हम पर भरोसा भी करते हैं कि हाँ फला एक व्यक्ति है। तो अनुशासन जो है सफलता के लिए मित्रों बहुत अच्छी कड़ी है और आवश्यक कड़ी है। तो हम अनुशासित रहें और अनुशासित रहते हुए अपना काम करें, आज इसकी बड़ी ज़रूरत है। आइए एक नगमा सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

तो श्रोता हूँ, अभी आपने यह गीत सुना और अब एक बार फिर से हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, गीत और भी सुनेंगे, लेकिन अभी बात कर लेते हैं आदि पूरम की, जिसे तमिल में आदि पूरम या आंडल जयंती भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक अत्यंत पवित्र और पारंपरिक हिंदू त्यौहार है। यह त्यौहार तमिल कैलेंडर के चौथे महीने आदि में पूरम नक्षत्र के दिन मनाया जाता है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जुलाई या अगस्त महीने में आता है। देवी आंडल का जन्मोत्सव इसमें बड़ी महत्व रखता है। वैष्णव परंपरा के अनुसार इस दिन 12 अलवर संतों में से एकमात्र महिला संत देवी आंडल का जन्म हुआ था, जिन्हें देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। शैव परंपरा में यह दिन देवी पार्वती को समर्पित है। माना जाता है कि इस दिन देवी पृथ्वी पर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने आती हैं, तो इस तरह से यह देवी शक्ति की पूजा का भी प्रतीक है। और इस दिन देवी पार्वती और आंडल की मूर्तियों को कांच की रंग बिरंगी चूड़ियों से सजाया जाता है। बाद में यह चूड़ियाँ महिला भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटी जाती हैं। त्यौहार के अंतिम दिन भगवान रंगनाथ यानी विष्णु और देवी आंडल के दिव्य विवाह का भव्य आयोजन किया जाता है। और इस दिन घरों और मंदिरों में देवी को गुड़ की मिठाई, पायसम और कलकंडू सादम यानी मिश्री चावल का भोग लगाया जाता है। भक्त इस दिन देवी आंडल द्वारा रचित तिरुप्पावई और ललिता सहस्रनाम का पाठ भी करते हैं। विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति और सामंजस्य के लिए प्रार्थना करती हैं इस दिन। और ऐसी मान्यता है कि अविवाहित कन्याएं यदि इस दिन व्रत रखकर प्रार्थना करें तो उन्हें जल्दी ही सुयोग्य वर मिलता है। और निसंतान महिलाओं को प्रसाद की चूड़ियाँ पहनने से संतान सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये कुछ बातें थीं आदि पूरम के बारे में, और आइए हम एक और गीत सुन लेते हैं।

0: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
3: पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: श्रोताओं, अब SAR यानी सिंथेटिक एपर्चर रडार की बात कर लेते हैं। SAR उपग्रह एक उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, पारंपरिक यानी ऑप्टिकल कैमरों के विपरीत, जो केवल दिन के उजाले और साफ मौसम में तस्वीरें ले सकते हैं। SAR उपग्रह रडार तरंगों का उपयोग करते हैं और रात के अंधेरे, घने बादलों, धुएं और बारिश में भी पृथ्वी की स्पष्ट तस्वीरें खींचने में सक्षम होते हैं। SAR उपग्रहों की मुख्य विशेषताएं और उपयोग को हम कुछ ऐसे समझने की, यह उपग्रह स्वयं पृथ्वी की सतह पर माइक्रोवेव सिग्नल भेजते हैं और सतह से टकराकर वापस आने वाली तरंगों को मापते भी हैं। इन परावर्तित तरंगों के आधार पर वस्तु की दूरी और उसकी विशेषताओं, जैसे शहरी क्षेत्र, जंगल या पानी का सटीक 3D या 2D मानचित्रण किया जाता है और इनका मुख्य रूप से उपयोग रक्षा और सुरक्षा के लिए सभी मौसमों में सीमाओं पर नज़र रखने और जहाज़ों की ट्रैकिंग के लिए भी होता है और बाढ़, भूकंप या तेल रिसाव के दौरान सटीक स्थिति का पता लगाने के लिए यानी आपदा प्रबंधन में भी होता है।

और कृषि और पर्यावरण यानी जंगलों की कटाई, फसल की वृद्धि और बर्फ की स्थिति की निगरानी के लिए भी इनका प्रयोग होता है। यह इसरो और नासा द्वारा विकसित एक बड़ी परियोजना है जो एल और एस बैंड दोहरे रडार पर रडार का उपयोग करती है। बेंगलुरु स्थित स्पेस स्टार्टअप गैलेक्स आई द्वारा निर्मित यह दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह है। यह इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और सिंथेटिक अपर्चर रडार दोनों सेंसर एक साथ रखने वाला दुनिया का पहला ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म है। तो ये चंद बातें SAR उपग्रह के संबंध में, और अब चलते चलते एक नगमा सुन लेते हैं।

श्रोताओं, आज 13 अगस्त है और आज का यह दिन कई मायने में बहुत ही ख़ास है। चलिए एक बार एक नज़र डालते हैं। 1947 में आज ही के दिन देश के विभाजन का दुख और स्वतंत्रता मिलने का चरम उत्साह था, यानी स्वतंत्रता की पूर्व संध्या के रूप में हम इसे एक ख़ास मानते हैं। और पहला स्वदेशी विमान 1991 में, यानी भारत के विमानन उद्योग में एक मील का पत्थर साबित करते हुए देश में डिजाइन किए गए पहले स्वदेशी विमान हिंदुस्तान ट्रेनर 2 ने सफलतापूर्वक पहली उड़ान भरी थी आज ही के दिन। और प्रथम फेडरल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर हरिलाल जेकी सुंदास कानिया को स्वतंत्र भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश आज ही के दिन नियुक्त किया गया था। और बर्लिन की दीवार का नाम तो आपने सुना ही होगा। 1961 में आज ही के दिन पूर्वी जर्मनी ने बर्लिन के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच की सीमा को सील कर दिया था, जिसके बाद बर्लिन की दीवार का निर्माण शुरू हुआ। और इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे, जी हाँ, दुनिया भर में बाएं हाथ से काम करने वाले लोगों के लिए, लोगों के खास हुनर और चुनौतियों को सराहने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और साथ ही साथ अंगदान दिवस, विश्व अंगदान दिवस के रूप में भी आज के दिन को जाना जाता है। अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को मृत्यु के बाद अंगदान करने के लिए प्रेरित करने हेतु यह दिन मनाया जाता है। तो ये ख़ास बातें थी आज के इस दिवस से संबंधित। और एक और गीत सुन लेते हैं चलते चलते।

तो श्रोताओं, इसी नगमे के साथ ही आज के युववाणी कार्यक्रम से दीजिए संजय चतुर्वेदी को इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों को संबोधित हमारा प्रसारण युवावाणी। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। आइए सुनते हैं एक लोकगीत। गायक कलाकार हैं विभा रानी सिन्हा।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि सहकारिता किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, किसान वाणी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं संजय किशोर
4: और मैं सुधा आपके लिए लेकर आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियाँ गीत संगीत के साथ। सुनेंगे जानकारी वर्षा जल संरक्षण एवं उपयोग पर, वार्ताकार होंगे मनीष कुमार।
3: और कैच द रेन, इसके बारे में भी आपने जरूर सुना होगा। नहीं सुना तो कोई बात नहीं, इसके विषय में भी आज हम आपको जानकारी देंगे। और इसके बाद लोकगीत सुनवाएंगे, कलाकार होंगी टुक्कू पाठक,
4: साथ ही देंगे कुछ कृषि संबंधी सुझाव भी। लेकिन संजय जी, पहले शुरुआत करते हैं अपनी बातचीत से। और इस समय देखिए, हम भी और आप भी जब किसी से भी मिल रहे हैं तो यही सब लोग पूछ रहे हैं आपस में कि क्या भाई तुम्हारा धान की रुपाई हो गई।
3: जी, बात भी सही है कि इस समय रोपनी का कार्य पूरे राज्य में जोरों शोरों से चल रहा है
4: और लगभग रुपाई सब जगह हो ही गई है। कुछ ही लोग हैं जो अभी पिछड़ गए हैं, पिछड़ धान की कर रहे हैं, लेकिन अब मैं उनसे भी कहूंगी कि अब समय बिल्कुल बहुत तेजी से बीत रहा है।
3: बहुत सही कहा आपने,
4: यही बात हम लोग आज यही करने वाले हैं कि भाई पिछात जो धान की खेती कर रहे हैं तो उनमें किन किन बातों का ध्यान रखें।
3: चलिए,
4: तो देखिए, समय पर अगर वर्षा ना हो, खेतों की तैयारी समय पर ना हो पे तो कोई बात नहीं, इसमें घबराने की बात नहीं है, देर से हम कर सकते हैं इसकी पिछात खेती।
3: और धान की खेती के लिए जो किस्में जो होती हैं पिछात के लिए, उसका चयन उसी के हिसाब से करना चाहिए। पोषक तत्वों का प्रबंधन और सिंचाई की विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसका तो जरूर ही ध्यान रखना चाहिए।
4: तो जो भी किसान भाई बहन पिछात धान लगा रहे हैं तो उचित किस्म का चुनाव करें। इसके लिए जल्दी पकने वाली किस्में हैं जो कि 90 से 110 दिन में ही तैयार हो जाती हैं। तो पिछात धान की कुछ किस्मों के बारे में बता दें।
3: मैं बिल्कुल जरूर बताइए।
4: तो कुछ किस्में हैं, राजेंद्र श्वेता, सोनम, सबौर हर्षित, तुरंता धान, प्रभात, बिरसा धान 105 और बिरसा धान 106, जो कि कम अवधि में तैयार होने वाली किस्में हैं।
3: तुरंता धान, प्रभात और सीआर धान 40 तो विशेष रूप से देर से रोपाई की परिस्थिति में अच्छी होती हैं। इसके लिए तैयार होने की जो अवधि होती है वो 80 से 90 दिन की होती है सुधा जी। हाँ, तो इन किस्मों का चयन करने से लाभ होता है और इसका चयन स्थानीय जलवायु के अनुकूल होना चाहिए और अनुशंसित किस्मों का ही चयन करना चाहिए। इन बातों का ध्यान किसान भाई खास तौर से रखेंगे।
4: और एक और बात जिसका ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि पिछात धान में रोपाई के लिए बहुत अधिक उम्र के जो पौधे होते हैं उन्हें लगाने से बचना चाहिए। जैसे कि अधिक दिन के पौधे होंगे तो

0: रोपाई के बाद उनकी वृद्धि और कल्ले निकलने की जो क्षमता होती है वो प्रभावित हो जाती है।
1: सही कहा आपने, और इसीलिए जो कम दिनों में तैयार होने वाली फसल है उसका चयन किया जाना चाहिए। और साथ ही पिछात धान में एक और भी बात ध्यान देने की है, वो है उर्वरक का संतुलित प्रयोग। खेत की मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरक देना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखें कि अधिक खाद का मतलब अधिक उपज नहीं होता
0: ये
1: है।
0: तो बहुत सही बात आपने कही। कुछ लोग, जैसे हम लोग भी यही सोचते हैं कि
1: जी
0: अरे ये अच्छा होता है फसल, थोड़ा सा और ज्यादा दे देते
1: जी
0: हैं।
1: इससे बचना चाहिए और पौधों की आवश्यकता के अनुसार ही सभी पोषक तत्वों को देना
0: देना
1: चाहिए।
0: चाहिए बिल्कुल। और पिछात धान की फसल में कीट एवं रोगों की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए। धान में तना छेदक, पत्ती लपेटक, माहो, फुदका जैसे कीट और जो विभिन्न फफूंद जनित, जीवाणु जनित रोग होते हैं उनका प्रकोप भी हो सकता है परिस्थितियों के अनुसार। तो इसके लिए खेत की नियमित रूप से जांच करते रहें और कीट या रोग की सही पहचान होने के बाद उचित जैविक नियंत्रण के तरीके अपनाएं। यहाँ पर मैंने जोर देकर कहा है जैविक नियंत्रण,
1: जी जैविक,
0: ताकि किसान भाई जो रासायनिक हैं उनसे, उनके प्रयोग से बचें।
1: हाँ थोड़ी दूरी बनाइए, एकदम तो बंद नहीं कर
0: हाँ
1: सकते,
0: बिल्कुल, अचानक से तो नहीं ही रोक सकते,
1: नहीं
0: लेकिन
1: रोक
0: धीरे
1: सकते
0: धीरे
1: हैं।
0: उसको करते करते हम कोशिश करेंगे कि जैविक पर आ जाएं हम
1: हाँ
0: लोग।
1: जी बहुत सही होगा आने वाले समय के लिए। तो किसान भाइयों, देर से धान की रोपाई होने पर भी आप इन बातों को ध्यान में रखकर अपनी अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें कि किस्म और सही प्रबंधन पिछात धान में अच्छी उपज का आधार है।
0: संजय जी,
1: जी कहिए, आगे और क्या कुछ
0: मैं
1: कहना
0: ये कह रही
1: है
0: थी
1: किसान भाइयों के
0: कि
1: लिए?
0: बारिश का मौसम है, आकाश में बादल छाते हैं, बारिश की बूंदें धरती को भिगोती हैं और चारों ओर हरियाली दिखाई देने लगती है,
1: अच्छा
0: लेकिन मैं ये कह रही कि इतना सारा पानी आखिर जाता कहाँ है?
1: हाँ सवाल तो है, इसका जवाब भी होगा।
0: बिल्कुल, तो जवाब आप दीजिए।
1: दरअसल इसका जवाब ये है कि पानी का बड़ा हिस्सा बहकर नालियों, नहरों, नदियों में चला जाता है और पर्याप्त मात्रा में ज़मीन के भीतर ये नहीं पहुंच पाता। तभी तो आज कई क्षेत्रों में भूजल का स्तर जो है लगातार नीचे जा रहा है, कुएं और हैंडपंप सूख रहे हैं। गर्मियों में तो पानी की समस्या बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो
0: बताइए,
1: इसका
0: तो फिर ऐसे में करें क्या? क्योंकि मैं भी इसीलिए पूछी थी कि इतनी बारिश होती है तो भाई पूरे साल भर हम लोगों को मिलना चाहिए, भाई भूमि का जो भूमिगत जल है वो बरकरार रहना चाहिए ना।
1: जी भूमि पर दबाव बढ़ रहा है, चूंकि जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ी है तो भूमि पर दबाव है, तो जल का
0: तो वही
1: जो
0: मैं कह रही थी कि तो
1: प्रबंधन
0: फिर
1: है,
0: क्या करें?
1: जल का प्रबंधन करना चाहिए।
0: यानी कैच द रेन, यही कह रहे
1: हाँ
0: ना।
1: मेरा इशारा इसी ओर था, कैच द रेन, बारिश का पानी जो है
0: हाँ,
1: उसको एकत्र करें, उसका प्रबंधन
0: इसका सीधा
1: करें।
0: सा अर्थ, जैसे कि अब हम लोग बारिश होती है तो हाथ बढ़ाकर बूंदों को हथेली पर लेते हैं ना, पकड़ने की
1: हाँ
0: कोशिश
1: पकड़ने की
0: करते हैं
1: कोशिश करते हैं।
0: करते हैं, तो एक सीधा सा अर्थ ये हुआ। और इसका एक जो गहन अर्थ है वो ये है कि बारिश की इन बूंदों को हम बेकार न जाने दें,
1: बिल्कुल
0: बारिश की एक एक बूंद को बचाएं,
1: बिल्कुल
0: जहां बारिश हो, जब बारिश हो, उस पानी को संग्रहित करें
1: जी
0: और जमीन में पहुंचाएं, साथ ही भविष्य के लिए इसे सुरक्षित रखें।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संरक्षण की तो बहुत ही संभावनाएं हैं। खेतों में मेढ़बंदी, खेत तालाब, छोटे जलाशय, चेक डैम जैसी संरचनाएं वर्षा के जल को रोकने में उपयोगी साबित हो सकती हैं। खेत में पानी रोकने से मिट्टी में नमी बनी रहती है। घर, स्कूल, सरकारी भवन, पंचायत भवन और अन्य संस्थानों की छतों से वर्षा जल को पाइप के माध्यम से रिचार्ज पिट या फिर संग्रहण टैंक तक पहुंचाया जा सकता है।
1: बहुत सही कहा आपने, और यही कैच द रेन अभियान की भावना है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर की गई थी, जिसका उद्देश्य है बारिश के पानी को सहेजने के लिए उपयुक्त संरचनाओं का निर्माण करना और सूखे तालाबों, जलाशयों में पानी पहुंचाकर भूजल के स्तर को सुधारना।
0: तो हम सभी इस अभियान से जुड़ें, हर व्यक्ति, हर घर और हर संस्था बारिश की हर संभव बूंद को बचाने का प्रयास करें।
1: हाँ और याद रखें, जल है तो कल है। जल संरक्षण केवल आज की आवश्यकता नहीं, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों के प्रति भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, वो तो बात है एकदम, जो कहा जाए शत प्रतिशत सही। लेकिन संजय जी, एक और बात है, हम लोग बातें ही करते रहेंगे या फिर श्रोताओं को कुछ सुनवाएंगे भी गीत संगीत?
1: सुधा जी, आपकी बातों से लग रहा है कि आप कुछ मनोरंजन
0: बिल्कुल
1: परोसना चाह रही हैं किसान भाई।
0: जानकारी की बातें अच्छी लगती है, लेकिन बीच बीच में एक म्यूजिकल ब्रेक तो बनता है ना।
1: बिल्कुल बनता है, मनोरंजन होगा तो आगे की बातें सुनने में भी रुचि लेंगे।

0: वाह, बहुत ही प्यारा कजरिया आपने सुनवाया किसान भाइयों को। मुझे उम्मीद है कि वो इसका भरपूर आनंद लिए होंगे। और अब आगे क्या बात बता रही हैं?
1: देखिए, जब मिट्टी पर बारिश की फुहारें पड़ती हैं तो उसकी वो सौंधी सी खुशबू और ये कजरी गीत, उनका मेल जो है, तालमेल, बहुत ही सुकून पहुंचाता है।
0: क्या बात है, एकदम गांव पहुंचा दिया आपने।

0: कि वो इसका भरपूर आनंद लिए होंगे और अब आगे क्या बात बता रही हैं।
1: देखिए, जब मिट्टी पर बारिश की फुहारें पड़ती हैं तो उसकी वो सौंधी से खुशबू और ये कजरी गीत, उनका मेल जो है तालमेल बहुत ही सुकून पहुंचाता है।
0: क्या बात है, एकदम गांव पहुंचा दिया आपने।
1: संजय जी, आज हमने बात भी की कैच द रेन के बारे में और बारिश के जल को संग्रहित करने के बारे में। तो देखिए, आज हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो भी हमें बता रहे हैं कि वर्षा जल का संरक्षण और उपयोग कैसे कर सकते हैं, और विस्तार से वो बता रहे हैं कि किस तरह से इनका हम संग्रहण कर सकते हैं और भविष्य में उसका किस किस तरह से उपयोग कर सकते हैं।
2: जी, ये बहुत ही जरूरी वार्ता है, हमारे किसान भाई इसको जरूर सुनेंगे। सुनते हैं मनीष कुमार से उनकी ये वार्ता।
3: भविष्य में पानी की कमी को पूरा करने और जल को बहने से बचाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों और कृत्रिम डिजाइन संसाधनों के माध्यम से बारिश के पानी को संग्रह और संग्रहित करना वर्षा जल संचयन है। विभिन्न कारणों से जल संचयन की मात्रा प्रभावित होती है, जैसे बारिश को प्राथमिकता, बारिश की मात्रा, बारिश की पानी को संग्रह करने का तरीका और पानी को संग्रह करने के लिए संसाधनों का आकार। कई सारी वजह से वनों की कटाई और परिस्थिति के असंतुलन से भूमि जलस्तर घटता जा रहा है। खास तौर से शहरी क्षेत्रों में लगातार बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण जल आपूर्ति की मांग बढ़ रही है। इसका कारण अत्यधिक भूमिगत जल का इस्तेमाल है, जिससे ये नीचे की ओर जा रहा है। अगर कुछ प्रभावशाली कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में पानी की कमी का संकट बड़े पैमाने पर बढ़ेगा और ये जीवन यापन के लिए भी खतरा साबित हो सकता है। जल संचयन बहुत ही मददगार है, ये विभिन्न जरूरतों को पूरा करता है, जैसे जल स्तर का जल आपूर्ति में खर्च होने वाले बिजली के बिल को घटाएगा और किसी भी समय सरल जल आपूर्ति उपलब्ध कराएगा जब भी इसकी ज़रूरत होगी। बारिश के पानी का संग्रहण सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए ज़रूरी है। सतह से बारिश के पानी को इकट्ठा करना बहुत ही असरदार और पारंपरिक तकनीक है। छोटे तालाबों, भूमिगत टैंकों, डैम, बांध आदि के इस्तेमाल से किया जा रहा है। हालांकि भूमिगत का पुनर्भरण तकनीक संग्रहण एक नया तरीका है। इसे कुआं खोदकर, गड्ढा, खाई, हैंडपम्प, कुआं को पुनः चार्ज करके किया जा सकता है। पहले गांवों, कस्बों और नगरों की सीमा पर या कहीं निचली स्तर पर तालाब अवश्य होते थे, जिनमें स्वाभाविक रूप से मानसून की वर्षा का जल एकत्रित हो जाता था। साथ ही अनुपयोगी जल भी तालाब में एकत्रित हो जाते थे, जिसे मछली और मेंढक आदि साफ करते रहते थे। यह जल पूरे गाँव के पशुओं आदि के काम आता था। जरूरी है कि गाँवों, कस्बों और नगरों में छोटे बड़े तालाब बनाकर वर्षा जल का संरक्षण किया जाए। मोहल्ला, नगरों और महानगरों में घरों की नालियों के पानी गड्ढे बनाकर एकत्र किया जा सकता है। घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करने के लिए एक या दो टंकी बनाकर उन्हें मजबूती, जाली या फिल्टर करके कपड़े से ढका जा सकता है, जल संचयन कर सकते हैं। जल के संकट को देखते हुए आज समुद्र के खारे जल को पीने योग्य बनाया जा रहा है। बड़ी नदियों की नियमित सफाई बेहद जरूरी है। बड़ी नदियों के जल का शोधन करके पेयजल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जंगल कटने पर वाष्पीकरण न होने से वर्षा नहीं हो पा रही है, इसलिए वृक्षारोपण जल संरक्षण में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज की दुनिया में पानी का उपयोग घर, कृषि और औद्योगिक के क्षेत्र में अत्यधिक उपयोग में लाया जाने लगा है। अब ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में भी अत्यधिक बोरवेल स्थापित हो जाने पर भी मिट्टी के अंदर जल स्तर कम होने लगा है और कुछ जगहों पर तो कई बोरवेल बंद भी हो चुके हैं। आज न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में बोरवेल है बल्कि शहरी क्षेत्रों में कई औद्योगिक में पानी का उपयोग होने के कारण भी पानी की दिक्कत होने लगी है। ऐसे में घरेलू और व्यावसायिक उपयोग के लिए वर्षा जल को संरक्षित करना सबसे आसान और बेहतरीन तरीका माना जा रहा है। ईश्वर की कृपा से प्रतिवर्ष थोड़ी बहुत वर्षा हर क्षेत्र में होती है। वर्षा जल संचयन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम वर्षा के पानी को ज़रूरत की चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं। वर्षा के पानी को एक निर्धारित किए गए स्थान पर जमा करके हम वर्षा जल संचयन कर सकते हैं। इसको करने के लिए कई तरीके हैं जिनकी मदद से रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जा सकता है। इस तकनीक में जल को मिट्टी तक पहुंचने से पहले जमा करना जरूरी होता है। सतह जल संग्रहण सिस्टम। सतह जल वह पानी होता है जो वर्षा के बाद जमीन पर गिरकर धरती के निचले तल में बहकर जाने लगता है। गंदी अस्वस्थ नालियों में जाने से पहले सतह जल को रोकने के तरीके को सतह जल संग्रह कहा जाता है। बड़े बड़े पाइप के माध्यम से वर्षा जल को कुआं, नदी, तालाबों में लगा करके रखा जाता है, जो बाद में पानी के संकट को दूर करता है। छत प्रणाली। इस तरीके से आप छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को संचय करके रख सकते हैं। ऐसे में

0: ऊंचाई पर खुले टंकियों का उपयोग भी किया जा सकता है, जिनमें वर्षा के पानी को रोकित करके नलों के माध्यम से घरों तक पहुंचाया जा सकता है। यह पानी स्वच्छ होता है, जो थोड़ा बहुत ब्लीचिंग पाउडर के इस्तेमाल के बाद पूर्ण तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है। बांध, बड़े बड़े बांध के माध्यम से वर्षा के पानी को बहुत ही बड़े पैमाने पर रोका जाता है, जिन्हें गर्मी के महीनों में या पानी की कमी होने पर कृषि, बिजली उत्पादन और नालियों के माध्यम से घरेलू उपयोग में भी इस्तेमाल किया जाता है। जल संरक्षण के माध्यम में बांध बहुत उपयोगी साबित हुए, इसलिए भारत में कई बांधों का निर्माण किया गया है, साथ ही नए बांध भी बनाए जा रहे हैं। भूमिगत टैंक, यह भी एक बेहतरीन तरीका है जिसके माध्यम से हम भूमि के अंदर पानी को संरक्षित कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में वर्षा जल को एक भूमिगत गड्ढे में भेज दिया जाता है, जिससे भूमिगत जल की मात्रा बढ़ जाती है। साधारण रूप से भूमि के ऊपरी भाग पर बहने वाला जल सूर्य के ताप से भाप बन जाता है और हम इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, परंतु इस तरीके से हम ज़्यादा पानी को मिट्टी के अंदर बचा कर रख सकते हैं। यह तरीका बहुत ही मददगार साबित होता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर का पानी आसानी से नहीं सूखता है और लंबे समय तक पंप के माध्यम से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जल संग्रहण जलाशय, यह एक साधारण प्रक्रिया है जिसमें बारिश के पानी को तालाबों और छोटे पानी के स्रोतों में जमा किया जाता है। इस तरीके में जमा किए हुए जल को ज़्यादातर कृषि के कार्यों में लगाया जाता है, क्योंकि यह जल दूषित होता है। जल संग्रहण एवं संरक्षण के लाभ, घरेलू काम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचा सकते हैं और इस पानी को कपड़े साफ करने, खाना पकाने, घर साफ करने तथा स्नान के काम में भी लाया जा सकता है। बड़े बड़े उद्योग में स्वच्छ पानी के इस्तेमाल में लाकर बर्बाद कर दिया जाता है, ऐसे में वर्षा जल को संचय करके इस्तेमाल में लाना जल सुरक्षित करने का बेहतरीन उपाय है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी की बचत और जल संचय करने के लिए ऊपर दिए गए तरीकों का उपयोग उद्योग कर सकते हैं। आज दुनिया एक आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़ी दुनिया बन गई है, ऐसे में लोगों की बढ़ती जनसंख्या के कारण आज विश्व के हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी इमारतें का निर्माण हो रहा है। यह बात तो साधारण है कि इन इमारतों के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग हो रहा है, ऐसे में वर्षा जल संचयन के माध्यम से बचाए हुए पानी को इन इमारतों के निर्माण में लगाकर कई प्रतिशत स्वच्छ पानी को हम बचा सकते हैं। वर्षा जल किसानों के लिए सबसे कारगर साबित हुआ है, क्योंकि वर्षा के पानी को बचाकर आज ज़्यादातर किसान गर्मियों के महीनों में बहुत ही आसानी से पानी के संकट को दूर कर पटवन का काम कर सकते हैं और अपना क्रॉप लगा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक पानी का इस्तेमाल करने से स्वच्छ पीने योग्य पानी को हम ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं। वर्षा के पानी को शौचालय, स्नान करने और बर्तन धोने के काम में भी हम ला सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण एवं संरक्षण की कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां हैं, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से जमा किए हुए पानी को इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से फिल्टर किया जाना चाहिए, जिससे कि इसमें मौजूद अशुद्धियाँ पानी से अलग हो जाए। वर्षा के पानी को ऐसे बर्तन या पात्रों में रखना चाहिए जो धूप के संपर्क पर आने पर जहरीले तत्व ना बनाते हों। वर्षा जल संचयन द्वारा जमा किए हुए पानी को अच्छे से उबालना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि इसमें मौजूद जहरीले तत्व और बैक्टीरिया नष्ट हो जाएं। ये भारत और दूसरे देशों के पहाड़ी और रेगिस्तान क्षेत्रों में बहुत असरकारी होता है। बड़े और स्वच्छ जल के आकारों को बनाने के द्वारा बरसाती मौसम में अधिक स्वच्छ बारिश के पानी को इकट्ठा किया जा सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि किसान भाई यदि वर्षा जल संग्रहण करते हैं तो वो अपने खेती में भी इसका इस्तेमाल करके और अपनी समय की बचत कर सकते हैं और अपनी लागत को भी कम करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं।
1: बारिश के पानी का संरक्षण कर हम इसका खेती और अन्य कार्यों में बेहतर उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही उपयोगी वार्ता थी, तो हम इस वार्ता के लिए मनीष कुमार जी को धन्यवाद देते हैं।
2: बात हमारी जब होती है तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी बातें भी अपने किसान भाई बहनों को बताएं जो उनके बहुत ही काम की हो।
1: जी,
2: अब देखिए, जैसे खेतों की मिट्टी होती है तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि धीरे धीरे कभी पानी की वजह से, हवा की वजह से या फिर कभी कभी तेज बहाव की वजह से जो ऊपर की उपजाऊ मिट्टी होती है वो बह जाती है या उड़ जाती है।
1: जी।
2: तो ये हमारे लिए बहुत ही गंभीर स्थिति होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो ऊपरी परत होती है मिट्टी की वही उपजाऊ होती है, सारे उर्वरक वगैरह उसी में होते हैं, पोषक तत्व। तो इसे ही हम मृदा अपरदन या फिर मिट्टी का क्षरण कहते हैं। तो इससे मिट्टी की उर्वरता और फसल उत्पादकता कम हो सकती है। तो खेतों की मिट्टी का क्षरण न हो, इसके लिए कुछ उपाय हम अपना सकते हैं संजय जी?
1: हाँ, बिल्कुल उपाय हैं और इसे अपनाने की आवश्यकता है। जैसे कि ढाल के विपरीत ही जुताई करनी चाहिए, खेत के चारों ओर मजबूत मेड़ बनाने चाहिए,

0: जिसमें वर्षा के जल के साथ मिट्टी का क्षरण न हो सके। खेत के मेड़ पर पेड़ और ढाल वाले स्थान पर घास लगाने से मिट्टी का कटाव कम होता है। खाली खेत को लंबे समय तक खुला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसमें हरी खाद और कवर क्रॉप लगा देना चाहिए।
1: और इसके साथ ही जैसे कि पराली या फिर अन्य जो अवशेष होते हैं फसल के, उनको मिट्टी में ही छोड़ दें, तो ये जो है सीधे वर्षा की बूंदों और तेज हवा से मिट्टी को बचाती हैं। इसलिए फसल अवशेष को खेत में ही दबाने की सलाह दी जाती है। हवा से होने वाले अपरदन क्षेत्रों में खेत की सीमा पर पेड़ों की कतार या फिर वायु अवरोधक पट्टी भी लगाए जा सकते हैं।
0: हाँ, और मिट्टी की ऊपरी परत जो होती है, अच्छी फसल और बेहतर उत्पादन की आधारशिला, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसमें मौजूद जैविक पदार्थ मिट्टी की संरचना, उर्वरता और उत्पादकता को हमेशा बढ़ाते हैं।
1: और भी ऐसे कई कारक हैं संजय जी, जो कि हमारी कृषि को प्रभावित करते हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा कारण है क्या? मौसम। तो क्यों ना किसान भाइयों को हम मौसम की जानकारी दे दें।
0: बिल्कुल, भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा भी चलने की संभावना है और हल्की वर्षा भी हो सकती है।
1: अधिकतम तापमान 35 डिग्री से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूर्वा हवा चलने का अनुमान है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 60 से 65% रह सकता है। तो ये थी मौसम संबंधी जानकारी और अब विदा लेने का समय हो चला है श्रोताओं से।
0: तो इस अनुरोध के साथ हम विदा लेंगे कि आप इस कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं, कैसा लग रहा है या कुछ और चाहते हैं, कोई विचार मन में है या कोई प्रश्न है, तो हमें अवश्य अपने सुझाव और विचार इस पते पर दें।
1: तो फीडबैक के लिए हमारा ईमेल आईडी है airpatna@gmail.com।
0: तो किसानवाणी के अगले अंक में फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी संजय किशोर
1: और सुधा को दे विदा। नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि सहकारिता किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार।

किसान वाणी कार्यक्रम संपन्न हुआ। अभी आप यह प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। लीजिए सुनिए भोजपुरी फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ गीत।

तो अभी आपने जसपाल सिंह के साथ हेमलता को सुना। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था, फिल्म थी नदिया के पार। आइए सुन लेते हैं श्रोताओं एक नगमा शारदा सिन्हा की आवाज़ में। फिल्म है मैंने प्यार किया। असद भोपाली के लिखे गीत की तर्ज बनाई है राम लक्ष्मण ने।

0: सुन, सोचतानी कि काहे ना आपन बिजनेस बढ़ाई।
1: त रोकले के बा?
0: रोकले त कोई नहीं खे, बाकी समझ में नहीं खे आवत कि कैसे मदद मांगी।
1: हमरा से?
0: तोहरा से? त बतावो।
1: आकाशवाणी बा ना, हम सुनले बानी कि आकाशवाणी के नेटवर्क देश भर में फैलल बा।
0: तो ओकरा से हमरा के का फायदा बा?
1: फायदा बा, जौना शहर में चाही विज्ञापन के माध्यम से ओही जगह पहुंच जाई।
0: तो इहो बता द कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे होई?
1: बहुत आसान बा, हम बतावत बानी। नंबर लिखी 8700014242।
0: ओ, 8700014242।
1: हाँ।
0: तो बहिने फोन लगावत बानी 8700014242 पर।
2: इस संदेश के पहले आपने शारदा सिन्हा की आवाज में मैंने प्यार किया फिल्म का नगमा सुना, और अब आइए सुन लेते हैं एक गीत चंद्रानी मुखर्जी की आवाज में। शब्दकार हैं लक्ष्मण शाहबादी, धुन तैयार की है चित्रगुप्त ने, फिल्म है गंगा किनारे मोरा गांव।

गंगा जैसन माई हमार, अभी आपने इस फिल्म में सुरेश वाडेकर और साथियों को सुना। विनय बिहारी ने गीत लिखा, धुन तैयार की राजेश गुप्ता ने। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुन लेते हैं उदित नारायण और खुशबू जैन के युगल स्वरों में प्यारे लाल यादव का लिखा और अशोक कुमार दीप का स्वरबद्ध किया गीत। फिल्म है साजन चलल ससुराल।

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ गीत। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 7:15 हुए हैं।

रोहतास जिला समाहरणालय से प्राप्त सूचना के अनुसार आज दिनांक 13/8/2026 को जिला पदाधिकारी रोहतास द्वारा समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुँचे आमजनों ने अपनी समस्याओं एवं शिकायतों से जिला पदाधिकारी को अवगत कराया। इस दौरान कुल 8 आवेदन प्राप्त हुए। जिला पदाधिकारी ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त मामलों का शीघ्र निष्पक्ष एवं नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आमजनों की समस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। जनता को सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ समय पर मिले तथा उनकी शिकायतों का प्रभावी निराकरण हो, इसके लिए सभी संबंधित पदाधिकारीगण पूरी जिम्मेदारी एवं तत्परता के साथ कार्य करें। वहीं एक अन्य जानकारी के अनुसार रोहतास जिले में प्रशासनिक आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने एवं लोगों को प्रखंड एवं अंचल स्तर पर बेहतर तथा सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न प्रखंडों में निर्माणाधीन नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवनों के कार्यों की समीक्षा को लेकर आज दिनांक 13/8/2026 को जिला पदाधिकारी रोहतास की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में भवन निर्माण प्रमंडल सासाराम द्वारा जिले के विभिन्न प्रखंडों में निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवनों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रत्येक योजना की प्रगति, निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति, भूमि से संबंधित मामलों एवं कार्यों में आ रही विभिन्न समस्याओं की जानकारी जिला पदाधिकारी को दी गई। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि करगहर, दावत, नासरीगंज, नौहट्टा, सूर्यपुरा, शिवसागर, चेनारी, तिलौथु, डेहरी, दिनारा, नोखा एवं काराकाट प्रखंडों में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवनों तथा आवश्यकता अनुसार कार्यालयों सह आवासीय परिसर के निर्माण की योजनाएं संचालित हैं। जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कार्यकारी एजेंसियों को निर्माणाधीन योजनाओं में अपेक्षित गति लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता के अनुरूप होना चाहिए तथा कार्यों की नियमित रूप से स्थल निरीक्षण एवं समीक्षा की जाए। उन्होंने निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलम्ब को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में भवन निर्माण प्रमंडल सासाराम के कार्यपालक अभियंता सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं अभियंता उपस्थित रहे। वहीं आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह को सफल, सुव्यवस्थित एवं गौरवपूर्ण बनाने को लेकर आज फजलगंज स्टेडियम सासाराम में फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित किया गया। वहीं कैमूर से प्राप्त सूचना के अनुसार हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज करमचट बांध कैमूर में जिला प्रशासन कैमूर द्वारा ड्रोन शूट किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और मानव श्रृंखला के माध्यम से कैमूर की आकृति बनाकर देशभक्ति एवं तिरंगे के

प्रति सम्मान का सुंदर संदेश दिया गया। बच्चों, युवाओं और जिलावासियों ने हाथों में तिरंगा थामकर देशभक्ति और एकता की अलख जगाई। आइए हम सब मिलकर इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने घरों और संस्थानों पर शान से तिरंगा लहराएं और देश की आन बान और शान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं।

रोहतास संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीपीएससी की 70वीं संयुक्त परीक्षा में चयनित 2027 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का किया वितरण। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, TRE4 में उन अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का अवसर मिलेगा जो इस वर्ष आयोजित होने वाली STET के लिए आवेदन करेंगे। राज्य सरकार ने भोजपुर में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता और एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से।

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिन में 19 बैठकें हुईं। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केवल 19% कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने समापन वक्तव्य में सदन की कार्यवाही में बार बार आई बाधा पर चिंता व्यक्त की। हालांकि उन्होंने कहा कि सदन ने 12 विधेयकों को पारित और वापस करके अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा किया। उन्होंने बताया कि राज्यसभा की कार्यवाही केवल 37 घंटे 49 मिनट चली, जिससे सदन में 39.17% ही कामकाज हुआ। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर सदन में चर्चा नहीं होने देने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि संसद बहस, चर्चा और विधायी कार्य के लिए है, लेकिन मॉनसून सत्र में लगातार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन ने सदन के कामकाज को प्रभावित किया।
2: ओपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है, क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए बिहार के 5 समेत 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कला, कठपुतली कला, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार विजेता आधुनिक भारत की प्रतिभा और निष्ठा के प्रतीक हैं।
3: कला से जुड़े प्राचीन विद्वानों ने भारतीय नाट्य की बड़ी व्यापक परिभाषा की है। उनके अनुसार नाट्य जीवन का ही पर्याप्त है। जीवन के ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा नाट्य अपने भीतर ग्रहण ना कर सके और फिर व्यक्त ना कर पाए। उनकी परिधि में आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर शास्त्रीय विद्या तक, हस्त कौशल से लेकर संगीत और नृत्य तथा मनुष्य के विभिन्न कर्म और व्यवहार समा हुआ है।
0: बिहार के 5 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी के विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वरिष्ठ अभिनेता सुरेश कुमार हच्चू, नाट्य निदेशक शिव नारायण झा और लोक कलाकार महेंद्र राम को राष्ट्रीय कला पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं युवा रंगकर्मी रोहित चंद्रा और लोक गायिका मनीषा श्रीवास्तव को उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त परीक्षा में चयनित 2027 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। पटना के पापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य मौजूद थे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त पदाधिकारियों से विकसित भारत और विकसित बिहार के संकल्प को पूरा करने के लिए कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से काम करने की सलाह दी।
4: मैं तो आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा,

0: कि सरकारी नियुक्ति आपने कैरियर जरूर चुना है, लेकिन ये लोक सेवा का रास्ता है सच में। क्या बिहार की समृद्धि का रास्ता आपके माध्यम से खुलेगा, क्योंकि आप जितने ईमानदार होंगे उतने ही बिहार आगे प्रगति करेगा साथियों।
1: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के चौथे चरण TRE4 में उन अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का अवसर मिलेगा जो इस वर्ष आयोजित होने वाली माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET के लिए आवेदन करेंगे। उन्होंने कहा कि TRE4 का विज्ञापन जारी होने से पहले STET का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि TRE4 परीक्षा में बैठने के लिए STET पास करना अनिवार्य होगा।
2: इन दिनों बड़ी संख्या में STET के वैसे छात्र जो इसकी परीक्षा में शामिल होना चाहते थे और इसमें से उत्तीर्ण होने के बाद वो TRE4 में भी अपना भाग्य आजमाना चाहते थे, हमने आज ही निर्णय लिया कि 17 तारीख से STET के आवेदन लिए जाएंगे और उनके परीक्षा होंगे और BPSC जब भी TRE4 की विज्ञापन जारी करेगी तो BPSC में उन अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा जो STET की इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उसमें शर्त होगी जो पास होंगे उन्हें ही एडमिट कार्ड दिया जाएगा।
1: भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में राज्य सरकार ने मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता और एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि न्यायिक जांच आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला किया गया है। सीवान में हुई पुलिस फायरिंग की घटना के विरोध में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के लोक भवन मार्च को जदयू ने राजनीतिक दिखावा बताया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राजद राजनीतिक लाभ के लिए इस मार्च का आयोजन कर रहा है।
3: भी राजभवन मार्च होता है, ये पॉलिटिकल इवेंट है, उसमें ज्यादा से ज्यादा विधायक MLA MP लोग साथ में जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, हम लोग भी ओपोजिशन में रहे हैं तो हम लोगों ने भी किया है, अपनी बात को रखा है, ज्ञापन सौंपा है राज्यपाल। ओपोजिशन का ये काम है, सरकार के बातों से जिस बात से सरकार से नहीं अवगत होते हैं उसको राजभवन जाके अपना ज्ञापन देते हैं।
1: मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि प्रदेश में जिस किसी भी कंपनी की शराब पकड़ी जाएगी उस कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज होगी। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत हो चुकी है।
4: बिहार मॉडल है और बिहार मॉडल रहेगा। हम लोगों ने विभाग में निर्देश दिया है कि जो भी विदेशी शराब पकड़े जाते हैं उस कंपनी पर हम लोग FIR करेंगे और उसकी शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। 10 साल से जितना शराब पकड़े गए हैं उससे अधिक इस वर्ष पकड़े गए हैं और ये आगे भी हम लोग पकड़ेंगे।
1: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि समारोह में होने वाले झंडोत्तोलन और परेड का आज फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। इधर हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में स्कूलों, सरकारी विभागों और सामाजिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी से तिरंगा यात्रा, प्रभात फेरी, साइकिल रैली और सामूहिक वंदे मातरम गायन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सोनपुर रेल मंडल की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई जिसमें रेल कर्मियों के साथ साथ आम

0: लोग भी शामिल हुए। पटना और मुंगेर में डाक विभाग के कर्मियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। पटना में इग्नो क्षेत्रीय केंद्र की ओर से भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसके अलावा सुपौल, सीतामढ़ी, अरवल, भोजपुर, बेगूसराय, शेखपुरा, पूर्णिया और अररिया जिले में भी भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर प्रदेश के विभिन्न डाकघरों में तिरंगे की बिक्री की जा रही है। लोग 25 रुपए की दर से अपने नजदीकी डाकघर से तिरंगा खरीद सकते हैं। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने औरंगाबाद के बारुण स्थित राजकीयकृत केशव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक सह समन्वयक शशि भूषण को 10,000 रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शिक्षक एनआईओएस के अंक पत्र समेत अन्य प्रमाण पत्र देने के एवज में रिश्वत ले रहा था। प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आने से लोगों को एक बार फिर उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 37.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ वाल्मीकिनगर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं मधुबनी के झंझारपुर में सबसे अधिक 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल राज्य के उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण मध्य हिस्सों में कुछ स्थानों पर आंधी के साथ वज्रपात की आशंका है।
1: दिनांक 14 अगस्त को राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है।
0: हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के तिक्खी नया टोला में अपराधियों ने एक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार अपराधियों ने लगभग 10 राउंड फायरिंग की। शेखपुरा जिले के कुसुम्बा थाना क्षेत्र के काशीचक मोड़ के पास उत्पाद विभाग की टीम ने एक एम्बुलेंस से 10 कार्टन शराब बरामद की है। मौके से चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं जिले के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र से पुलिस ने 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र के जीटी बाईपास ओवर ब्रिज के पास यात्री बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 20 यात्री घायल हो गए। इनमें से 5 की स्थिति गंभीर बताई जाती है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में सुपौल जिले ने जुलाई महीने की रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। अररिया और सीतामढ़ी में आज पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर मेले का आयोजन किया गया। मेले में लोगों से अधिक संख्या में सोलर पैनल लगवाने की अपील की गई। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीपीएससी की 70वीं संयुक्त परीक्षा में चयनित 2027 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का किया वितरण। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, TRE4 में उन अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का अवसर मिलेगा जो इस वर्ष आयोजित होने वाली STET के लिए आवेदन करेंगे। और राज्य सरकार ने भोजपुर में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता और एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है औरंगाबाद जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर।
1: औरंगाबाद जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का उत्साहपूर्वक आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य आमजनों, विद्यार्थियों एवं युवाओं में राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान, देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता की भावना को और अधिक सुदृढ़ करना है। इस अभियान के तहत 12 अगस्त को जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों में तिरंगा रैली निकाली गई। भारतीय रेल बिजली कंपनी BRBCL में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया गया। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह और विधायक प्रमोद कुमार सिंह ने जिलेवासियों से अपने घरों तथा प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने एवं इस राष्ट्रीय अभियान में उत्साहपूर्वक भागीदारी की अपील की है। पर्याप्त वर्षा के अभाव में जिले में धान की अपेक्षित रोपनी नहीं हो पाई है। किसान बोरिंग, आहार तथा अन्य संसाधनों से धान की रोपनी में जुटे हुए हैं। जिला कृषि पदाधिकारी संदीप राय ने बताया कि जिले में उर्वरक की कोई कमी नहीं है। इधर उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के लिए 21 से अधिक उर्वरक बिक्री प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई, जिसमें गड़बड़ी पाए जाने पर 7 दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। बिहार के दूसरे बैद्यनाथ धाम के रूप में प्रख्यात देवकुंड में भगवान शिव को जल अर्पण के लिए श्रद्धालुओं तथा कांवरियों का तांता लगा हुआ है। हर सोमवार को 60,000 से अधिक श्रद्धालु यहां जलाभिषेक कर रहे हैं। दाऊदनगर के अनुमंडल पदाधिकारी अमित राजन के नेतृत्व में श्रद्धालुओं की सुविधा तथा भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। भारत सरकार के संयुक्त सचिव तथा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के प्रभारी अधिकारी मनोज कुमार गांगे ने विकास कार्यों की समीक्षा की। श्री गांगे ने कुटुम्बा स्थित कस्तूरबा विद्यालय और मध्य विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों तथा वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। पीएम सूर्य घर योजना के तहत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से औरंगाबाद में सोलर मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी ने किया। इस दौरान उपभोक्ताओं को सोलर पावर से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी गई। बारून प्रखंड की सीमा पर स्थापित NTPC के नबी नगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की ओर से पूर्वी क्षेत्र स्तरीय मेधा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन करते हुए NTPC के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक LK बेहरा ने कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य प्रतिभागियों में ज्ञान, तार्किक क्षमता, टीम भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है। जिले के सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज में BEd के नव प्रवेशित छात्र छात्राओं के स्वागत और मार्गदर्शन के लिए इंडक्शन मीट का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्हें BEd पाठ्यक्रम, शिक्षक की भूमिका, अनुशासन, नैतिक मूल्य और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। बारून स्थित PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में नवोदय विद्यालय स्थापना दिवस के अवसर पर अटल टिंकरिंग लैब समेत अन्य योजनाओं का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विधायक चेतन आनंद, प्राचार्य रविंदर कुमार सिंह और शिक्षाविद आनंद प्रकाश ने विद्यार्थियों को रचनात्मकता और नवाचार की क्षमता को बढ़ाने के संबंध में मार्गदर्शन दिया। औरंगाबाद के विधायक त्रिविक्रम नारायण सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उनसे जन सेवा तथा संगठनात्मक दायित्व के निर्वहन को लेकर विस्तार से चर्चा की। ओबरा के विधायक डॉक्टर प्रकाश चंद्र ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े विकास के मुद्दों पर चर्चा की। जिले के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर व्रज किशोर सिंह को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की औरंगाबाद जिला इकाई का नया अध्यक्ष चुना गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि IMA चिकित्सकों के हित के साथ साथ मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करेगा। विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत के दौरान कहा कि विधानसभा में विधायी कार्यों के निष्पादन को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिससे जनप्रतिनिधियों को जनहित

0: मुद्दे को उठाने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि गया के निकट औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना से मगध के चौमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह, जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा, पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा एवं रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह मौजूद रहे। शहादत दिवस पर 1942 की अगस्त क्रांति में पटना सचिवालय के समक्ष शहीद हुए जगतपति कुमार को पूरे जिले में श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इस अवसर पर ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस समेत कई संगठनों की ओर से शहीद जगतपति की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
1: अभी आप सुन रहे थे औरंगाबाद जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता कमल किशोर।
2: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को संजय चतुर्वेदी का सप्रेम नमस्कार और कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी। हमेशा की तरह आज भी आपके बहुत सारे ईमेल आए हैं। चलिए शुरू करते हैं, आपको सुनवाते हैं अग्नि साक्षी फिल्म का एक नगमा। इसे सुनना चाहते हैं हमारे श्रोतागण ईमेल के माध्यम से। पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश और आपके परिवार के सदस्यगण। और ये फरमाइश है मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ की ओर से आया हुआ है यह मेल। और साथ ही साथ आप हैं मेहर नगर उमड़खेर महाराष्ट्र से अभिजीत गंवाड़कर, राही सरिता गंवाड़कर, प्रणीता सिद्धांत गंवाड़कर, अर्जुन गंवाड़कर टुक टुक ने भी इस गीत को सुनना चाहा है। चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं आपकी पसंद का ये नगमा।

श्रोताओं, कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे 8:15 से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित संसद समीक्षा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

दूर करने पर सहमति न बन सकी। बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले उच्च सदन में खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित किया गया, जिसके तहत राज्यों को खनिज अधिकारों पर अतिरिक्त कर लगाने से रोका जाएगा। लोकसभा में यह विधेयक

अगस्त को पारित हो चुका है। खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के जरिए केंद्र सरकार ने खनिज वाले क्षेत्रों में खनिज संपदा की मात्रा से संबंधित निर्धारित मानकों के अनुसार खनिज युक्त भूमि के विनियमन को भी अपने नियंत्रण में लेने का प्रावधान किया है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए खान मंत्री रेड्डी ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राज्यों की स्वायत्तता या उनके राजस्व अधिकारों में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि पूरे देश में खनिजों की दरों में एक रूपता को सुनिश्चित करना है। रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, तांबा और मैंगनीज जैसे प्रमुख खनिजों को विनियमित करना चाहती है, जबकि 49 गौण खनिजों के मामले में राज्यों के अधिकार बरकरार रहेंगे। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन के लिए कोयला बेहद महत्वपूर्ण है और भारत में बिजली उत्पादन का 73% कोयले से होता है। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए बिजली की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। रेड्डी ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार के दौरान कोयला ब्लॉकों का आवंटन घोटाला था। उन्होंने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में खनिजों का आवंटन पारदर्शी तरीके से नीलामी के माध्यम से किया गया है और पहले के विपरीत अब किसी ब्लॉक का आवंटन नामांकन के आधार पर नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि खनिज राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 2014-15 के 65% से बढ़कर 85% हो गई है, जबकि कोयला राजस्व में उनकी हिस्सेदारी 51% से बढ़कर 96% हो गई है। मंत्री ने कहा कि केंद्र को खनिज राजस्व का केवल करीब 11% हिस्सा ही मिलता है, जबकि 88% हिस्सा तो राज्यों के पास चला जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संशोधन से किसी भी राज्य को राजस्व का नुकसान नहीं होगा। रेड्डी ने संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 54 का हवाला देते हुए कहा कि ये संसद को जनहित में खानों और खनिज विकास को विनियमित करने का अधिकार देती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को विनियमित करने और उसके विकास के लिए कराधान एक महत्वपूर्ण माध्यम है। विधेयक पर हुई चर्चा में भाजपा के तरुण चुग, बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी, अंधना द्रुमुक के डॉक्टर एम थंबीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार झा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के डॉक्टर वी शिवादासान, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी, द्रमुक के एसआर शिवलिंगम और डीएमडी के सदस्य एल के सुधीश ने हिस्सा लिया। कुछ सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है। कुछ सदस्यों ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग भी की। रेड्डी ने कहा कि खनिज के क्षेत्र में राजकोषीय व्यवस्था को निश्चित, स्थिर और पूर्वानुमेय बनाने से राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को बढ़ावा मिलेगा और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को हासिल करने में मदद मिलेगी। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को पारित कर दिया गया। इससे पहले सदन ने द्रुमुक सदस्य तिरुचि शिवा और कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों द्वारा विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजने के लिए पेश संशोधन को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। कुछ विपक्षी सदस्यों ने संशोधन पर मत विभाजन की मांग की, लेकिन सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि सदन में हंगामे के बीच ऐसी प्रक्रिया कराई नहीं जा सकती। इससे पूर्व सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध लोगों ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान के उस मंच का शुद्धिकरण किया जहां उन्होंने भाषण दिया था। खड़गे ने मांग की कि हल्द्वानी में मंच का शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ अस्पृश्यता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए। सभापति सीपी राधाकृष्णन तथा सदन के नेता एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी इस

घटना की निंदा की। सदन के नेता नड्डा ने कहा, पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। सभापति राधाकृष्णन ने भी घटना की निंदा की और सरकार से मामले की जांच कराने को कहा। उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता एक अपराध है, इसलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए। इसके बाद सदन में खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। तत्पश्चात बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करते हुए राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने और भारतीय लोकतंत्र की सर्वोच्च संसदीय परंपराओं के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा की उत्पादकता महज 39% रही। हालांकि व्यवधानों के बीच सदन ने 12 विधेयकों पर विचार किया और उन्हें पारित या वापस किया। अपने परंपरागत संबोधन में राधाकृष्णन ने कहा कि राज्यसभा के 271वें सत्र के समापन पर मैं इसकी कार्रवाई को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करता हूं। ये खेद का विषय है कि सत्र लगातार अव्यवस्था और बार बार हुए व्यवधानों से प्रभावित रहा, जिससे सदन का कामकाज बार बार बाधित हुआ। उन्होंने कहा कि बहुमूल्य कार्य घंटों के नुकसान के कारण राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और बहस का अवसर भी सदन को न मिल सका। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी समेत कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया। सभापति ने कहा कि व्यवधानों के बावजूद सदन अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा करने में सफल रहा है और 12 विधेयकों पर विचार करने के साथ उन्हें पारित किया गया या लोकसभा को लौटाया गया है। इनमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान या इसके गान को दंडनीय बनाने संबंधी प्रावधान वाला राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक, परीक्षा में सुधार से संबंधित लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाला सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 तथा केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रावधान वाला केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर कार्यवाही में हम सभी सामूहिक रूप से भाग लेते, अपने बहुमूल्य सुझाव देते और सार्थक विचार विमर्श में शामिल होते तो स्थिति निश्चित रूप से अलग होती। राधाकृष्णन ने बताया कि सदन में सिर्फ 37 घंटे 49 मिनट काम हुआ और इसकी उत्पादकता 39.17% रही। उन्होंने बताया कि सदन के दौरान 285 तारांकित प्रश्न, शून्यकाल के तहत 380 विषय और विशेष उल्लेख के जरिए 380 मुद्दे उठाने का अवसर था, लेकिन इनमें से केवल 16 प्रश्न, शून्यकाल के तहत 52 विषय और 93 विशेष उल्लेख ही सदन में किए जा सके। सभापति ने कहा कि सदस्यों ने लोगों की आवाज को उठाने के लिए उपलब्ध अवसरों का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि सदन के वरिष्ठ सदन के रूप में इस गरिमापूर्ण सदन की तर्कपूर्ण बहस, गरिमामय असहमति और विचारशील कानून निर्माण को बनाए रखने की विशेष जिम्मेदारी है। बार बार होने वाले व्यवधान अंततः लोगों के विश्वास और उनकी आकांक्षाओं को प्रभावित करते हैं। उन्होंने सदस्यों से संसदीय आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने तथा संस्था की गरिमा और पवित्रता की रक्षा करने का आह्वान किया। सभापति ने बताया कि नवनिर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए 2 दिवसीय अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संसदीय कार्य प्रणाली, प्रक्रिया और सदस्यों से अपेक्षित आचरण के मानकों के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में 35 सदस्यों ने हिस्सा लिया। राधाकृष्णन ने कहा, मुझे उम्मीद है कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो इस गरिमापूर्ण सदन की प्रतिष्ठा को बनाए रखने और लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप अपनी संसदीय जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के एक नए संकल्प के साथ मिलेंगे। इससे हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं और हमारा लोकतंत्र हमेशा मजबूत होगा। और लीजिए, अब सुनिए लोकसभा

0: सभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। इसके लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव महेश्वरी। लोकसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई और मानसून सत्र में निचले सदन की कार्य उत्पादकता 19% रही। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के चलते लोकसभा में लगातार गतिरोध बना रहा। इसे दूर करने के लिए विपक्ष एवं सत्ता पक्ष के बीच आज तक सहमति बन नहीं पाई है। मॉनसून सत्र के दौरान केवल 28 और 29 जुलाई के दौरान सदन में सामान्य माहौल देखने को मिला था, जब लगभग 10 घंटे तक लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई थी। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन सदन की कार्यवाही 11 बजे प्रारंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ने आसन पर बैठते ही सदस्यों से राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने को कहा। हालांकि सामान्यतः सत्र समाप्ति के मौके पर वंदे मातरम से पहले वो अपने पारंपरिक संबोधन में उस सत्र की कार्य उत्पादकता, उसमें पारित विधेयकों, पूछे गए प्रश्नों आदि का उल्लेख करते हैं। वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों के गायन की रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य दलों के प्रमुख नेता और सदस्य सदन में मौजूद थे। हालांकि कार्यवाही स्थगित होने के बाद अपने संवाददाता सम्मेलन में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि इस सत्र में लोकसभा की कार्य उत्पादकता केवल 19% रही। संसद का वर्तमान मॉनसून सत्र बीते 20 जुलाई को प्रारंभ हुआ था। सरकार ने कहा था कि वो छात्रों के विषय पर चर्चा कराने और इस पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब के लिए तैयार है। हालांकि विपक्ष का कहना था कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर शाह के जवाब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग करने के मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हैं तथा वो इन तीनों मांगों पर कायम है। लोकसभा अध्यक्ष पूरे सत्र में विपक्षी सदस्यों से बार बार प्रश्नकाल चलने देने, विधेयकों पर चर्चा में भाग लेने और कार्रवाई में सहयोग करने की अपील करते रहे, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। सत्र के आखिरी दिन तक ये गतिरोध टूट न सका। सदन ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में 29 जुलाई को परीक्षा में सुधार से संबंधित लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम हमलों की बरसी पर 6 अगस्त को पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन और वैश्विक शांति एवं सौहार्द के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अध्यक्ष बिरला ने सदन में कुछ दिन प्रश्नकाल के दौरान ग्लासगो के राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 8:15 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम ई मन पसंद का शेष भाग।

श्रोताओं, हमारे श्रोताओं ने फरमाइश की है ईमेल के माध्यम से, पत्थर के सनम फिल्म का गीत सुनने की। हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज़ में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का स्वरबद्ध किया बहुत ही लोकप्रिय नगमा। इस गीत को सुनने के लिए हमें ज़िला नवांशहर पंजाब से आपने मेल किया है। आप हैं गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, प्रशांत थांदी, प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी, और गांव

थाना पंजाब से आप हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी सीता और गीता, मलियाबाग से संजय महतो, बाबूलाल सिंह और लालदेव सिंह ने हमें मेल किया है और एक मेल हमें मिलता हुआ दिख रहा है इस गीत के लिए। हमारे श्रोतागण हैं संझौली के, आप हैं दिनेश गुप्ता, पप्पू गुप्ता, लाल बिहारी गुप्ता और समस्त गुप्ता परिवार की ओर से ये मेल आया है। और तेंदुनी चौक विक्रमगंज से हमसे जुड़ रहे हैं मेल के माध्यम से हमारे श्रोता, जी हाँ, आप हैं सुरेश सिंह, रामेश्वर सिंह, अब्बास और आपके ढेर सारे दोस्त। चलिए हम आपको सुन, बहुत ही प्यारा नगमा ये रहा आपके रेडियो सेट पर फिल्म पत्थर के सनम से।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: तो अभी आपने पत्थर के सनम फिल्म का ये नगमा सुना और अब आइए सुन लेते हैं अवतार फिल्म से एक गीत। किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल सुरों में आनंद बख्शी की शब्द रचना है, सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। और इस गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम नहौना प्रखंड सासाराम से भरत सिंह, धर्मराज सिंह, डॉक्टर अनिल, जयनाथ सिंह, जगदीश सिंह, दशरथ सिंह, बिमला देवी, मास्टर अनिल, रविंद्र सिंह और डमरू कलाकार। महावीर स्थान सासाराम से राजू सिन्हा, रवि सिन्हा, संजय सिन्हा, राहुल सिन्हा और समस्त सिन्हा परिवार की ओर से ये फरमाइश है। और बक्सर बिहार से आप हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुमित रमेश साहू। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य, परमानंद आर्य। और सारिमपुर बक्सर से आप हैं राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और इकबाल मस्तान। और इसी गीत के लिए हमें फरमाइशें आपकी भी आई हैं मेल के माध्यम से। श्रोताओं, आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और फुटानी चौक नरन स्टेट से धरन मिश्रा, नूतन मिश्रा, गुंजन छोटू, अमित सुमित, अमन पराशर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित जी। और आप हैं आकाशी सासाराम से निसार, कमाल, मेराज, साकिबा, आलिया और आपके मित्रगण। और एसएम जावेद, शगुफ्ता, अंजुम और नजमुल खुदा ने हमें मेल किया है गुमला झारखंड से। और एक ये फरमाइश मिलती हुई दिख रही है नरेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नोहाकर, निर्मला नोहाकर, विशाल नोहाकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मुरहेकर और संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया ने भी इस गीत को सुनना चाहा है बागपत उत्तर प्रदेश से। और साथ ही साथ आप हैं ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी राय, कारी मीनाकारी, पुंजराज, आरती, आकर्षण और जय श्री। और ये है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोर छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर। चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं आपकी फरमाइश का बहुत ही प्यारा नगमा अवतार फिल्म से। लीजिए सुनिए।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: तो श्रोताओं, इस संदेश के पहले आपने अवतार फिल्म का नगमा सुना और अब इन्हीं गीतों के साथ ही आज के ई मन पसंद कार्यक्रम से संजय चतुर्वेदी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 8:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम की 8वीं कड़ी, क्षमा करेंगे 7वीं कड़ी।
2: We bring you a talk on mental health and access to justice, care and human dignity. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
3: तो जब तक एक इंडिविजुअल ये नहीं समझता कि मुझे मेंटल हेल्थ की इश्यूज हैं, मुझे हॉस्पिटल जाना है या मुझे किसी से कनेक्ट करना है, तब तक नेक्स्ट स्टेप आता ही नहीं है। वी डू नॉट टेन टॉक अबाउट व्हाट राइट्स ही हैज और व्हाट वेयर ही कैन गो। जब भी हम अक्सर स्वास्थ्य की बात करते हैं, फिजिकल हेल्थ, वेदर ही इज हेल्दी और नॉट, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हैं कि नहीं, एंड वी यूजली इग्नोर that the mental health aspect and the social. So WHO has identified that mental health is integral to health. So when we are talking about mental health, what is mental health? It's a complex process. क्या हम समझ पा रहे हैं मेरे साथ जिंदगी में क्या हो रहा है, लाइफ में कितने सारे पड़ाव पड़ते हैं, आर वी एबल टू कोप अप विद दोज थिंग्स, आर वी प्रोडक्टिव डिस्पाइट having to face various challenges in life. So if we are able to do so, we would say that I am mentally healthy, I am able to deal with my

mental health adequately. There are various situations in life, whether it is at workplace, family, with how we are connecting with other individuals, whether we are facing some legal battle or we are having shortage of funds, someone in the family is ill, or home environment or the school environment or the workplace is having problems. So in sab cheezon ko leke hum, some individuals may feel stressful, some individuals may feel that this is part of life. To hamare reactions alag alag hote hain. And at the same time, we need to understand that some amount of stress is important to drive us to face those challenges. अगर हमारे पास एक बच्चे के सामने एग्जाम हो ही नहीं तो वो पढ़ेगा ही क्यों? तो एग्जाम एक तरह से उसके लिए स्ट्रेस भी क्रिएट करता है, पर दूसरे पर्सपेक्टिव से उसको एक चैलेंज भी मिलता है कि मुझे आगे सीखना है. बट एट द सेम टाइम आफ्टर सर्टन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस वी बिकम डिसफंक्शनल. जिसको हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे लिए एंग्जाइटी देता है, घबराहट देता है, एक helplessness की फीलिंग देता है. दैट इज द टाइम when वी नीड टू सीक हेल्प. इफ वी आर एबल टू फेस द स्ट्रेस adequately, वी आर फाइन. बट इफ वी आर नॉट एबल टू फेस द कोपिंग, वी आर नॉट एबल टू फेस दोज चैलेंजेस, देन वी स्टार्ट हैविंग हेडेक हो रहा है, मुझे बहुत थकान लगती है, मेरे को नींद नहीं आ रही है. सो दीज आर सम ऑफ द साइंस एंड कॉमनली रिपोर्टेड सिम्टम्स, वेदर दे आर इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल इशूज. क्योंकि अक्सर हम मेंटल हेल्थ इश्यूज को भी फिजिकल का नाम देते हैं. हमें महसूस यही होता है कि हमारे शरीर में थकान है, बट एक्चुअली द कॉज मे बी एट द मेंटल लेवल. ये कहना कि कब उदासीपन, डिप्रेशन मतलब एक क्लिनिकल डिसऑर्डर बन जाता है, एक बीमारी का रूप धारण कर लेता है, बहुत कोई डिमार्केशन नहीं है. जनरली वी से दैट इफ इट इज परसिस्टेंट, I'm just giving an example of sadness, depression, which is a very common mental disorder. And it is sadness or depression is commonly used word among the public. So how do we recognize these signs? जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले हम शारीरिक कंप्लेंट्स देते हैं. मेरे हेडेक हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा नहाने का, मेरा कोई नींद ठीक से नहीं आती, या मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, या मेरा मन नहीं करता है खाना खाने को. So these are some of the physical somatic complaints that if one is feeling that or one is reporting, we need to take it seriously. Some of the behavioral signs include, there is a sudden, parents aake kehte hain ki kai bari pata nahi bina provocation ke, bina koi kisi context ke, irritable ho jata hai, wapis jawab deta hai, ya unnecessarily shopping aajkal ho rahi hai. Extremes of behavior which was not there earlier. So any change over the time which is not there, which is not acceptable by the family, that means there is some, this behavior needs to be attended to. At a social level, we don't want to interact with people, we don't want to respond to people, respond to family members. छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम nervous हो जाते हैं. Sometimes we say that मुझे लग रहा है कि बस जिंदगी का अंत आ गया है. सो दीज काइंड ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्सेज ऑल्सो आर अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड मे बी एन इंडिकेशन फॉर मेंटल इलनेस. सो मोटे तौर से अगर हम देखें तो कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो इररिस्पेक्टिव, दे कैन बी, दीज साइंस कैन बी ड्यू टू सम फिजिकल इलनेस एंड दीज कैन ऑल्सो बी साइन फॉर सम मेंटल इलनेस. हमारे रोज़मर्रा का जो रूटीन है उसमें चेंजेस आ रहे हैं. बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, कॉलेज जाने में छुट्टी अक्सर आ रही है, हम वर्क प्लेस से कोई ना कोई बहाना लेके जल्दी वापस आ जाते हैं. वी आर नॉट ईटिंग वेल, आई गेट अप इन बिटवीन एट नाइट, और देयर इज़ अ चेंज इन माई इंटरेक्टिव. पहले बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन होती थी, अभी मेरा मन नहीं करता है. सो दीज आर ग्रॉस साइंस विच मे बी ड्यू टू एनी रीज़न, but they are important to be picked. Some signs are specific to a particular disorder. ये सब common बीमारी है. बहुत ज़्यादा checking होती है, बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत गंदा हूँ तो बार बार नहाते हैं, या बहुत ज़्यादा hand washing होती है, तो OCD, obsessive compulsive disorder. बच्चों में अक्सर स्कूल से रेफरल आते हैं कि बच्चे में बहुत ज़्यादा, वो 7th क्लास में पढ़ रहा है पर उसको अभी तक सेंटेंस बनाना नहीं आता, उसकी स्पेलिंग में एरर्स बहुत हैं, या मैथ्स में वो 2nd क्लास का

0: परफॉर्मेंस है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, तारे जमीन पर हम सब ने देखी है, एंड दैट इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉट दिस इज अबाउट. मैनी टाइम्स अनलाइक अदर इलनेसेस पीपल डू रिपोर्ट मेरे को बहुत डिप्रेशन रहता है. इट शुड बी टेकन सीरियसली. इट्स अ क्राई फॉर हेल्प दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल. अक्सर देखा गया है कि इंडिविजुअल्स हु डू ट्राई टू कमिट सुसाइड दे डू से दे वर्बलाइज देयर प्रॉब्लम्स, देयर हेल्पलेसनेस एंड दे सीक हेल्प विच वी मोस्ट ऑफन इन आवर पीयर ग्रुप्स वी डू नॉट रिकॉग्नाइज लेटर ऑन. अरे उसने तो ऐसा कहा था. समटाइम्स इंडिविजुअल रिपोर्ट मुझे कुछ सुनाई देता है, हम हंस के उड़ा देते हैं बात को. दिस मे बी साइंस फॉर साइकोसिस. समटाइम्स वी से दैट बहुत एंग्जाइटी, बहुत घबराहट हो रही है, तो मुझे लगता है कुछ मिनट को लगा कि मेरा तो अंत आ गया. इट मे बी अ पैनिक अटैक. सो वी नीड टू सीक हेल्प रादर देन फेस दैट मेरा लोग मजाक उड़ाएंगे तो मैं नहीं जाता हूँ दिखाने. एट टाइम्स इफ इट इज पॉसिबल तो टीचर्स सेटिंग में या पेरेंट्स जो एजुकेटेड हैं, वी हैव स्मॉल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट क्वेश्चनेयर विच कैन एक्चुअली टेल यू कि ये इस 10 आइटम्स में से इतना कट ऑफ 2 के ऊपर है. दैट मीन्स यू नीड टू कंसल्ट अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल. PHQ GAT 7 आइटम्स 9 आइटम्स, इट्स हार्डली एनीथिंग, वेरी सिंपल आइटम्स विच कैन बी यूज इन कम्युनिटी.
1: You had been listening to a talk on mental health and access to justice, care and human dignity. We slip into a short break.

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की

0: 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी।
2: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
3: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या हम बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
4: भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि संसद में आज पारित खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक किसी भी राज्य के अधिकारों को नहीं छीनेगा और न ही राज्य के राजस्व ढांचे पर कोई असर पड़ेगा। नई दिल्ली में श्री रेड्डी ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य प्रमुख खनिजों का उत्पादन बढ़ाना है।
5: एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी भी भारत सरकार बढ़ा रही है, क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल स्पीड अप करा रहे, ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, रोजगार मिले लोगों को, देश को एक मिनरल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। उसके साथ साथ भारत सरकार का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम है, उसके लिए प्रयास कर रही है। आज नरेंद्र मोदी सरकार जो रिफॉर्म्स लाए हैं, होल ऑफ मिनरल रेवेन्यू जनरेशन में 65% था 2014-15, आज 85% शेयर बढ़ाया, वैसा ही लगभग 23% स्टेट्स का रेवेन्यू बढ़ाया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
6: भारत से अमेरिका, चीन, सिंगापुर, केन्या और मलेशिया को जुलाई महीने में होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई। इस दौरान

0: संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इटली और वियतनाम को होने वाले निर्यात में भी सुधार हुआ है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद जुलाई में पश्चिम एशिया के देशों में होने वाला भारत का निर्यात सालाना आधार पर 8.62% बढ़कर 570 करोड़ डॉलर हो गया। पिछले साल इसी महीने में यह 520 करोड़ डॉलर था। अमेरिका को होने वाला निर्यात 12.85% बढ़कर लगभग 900 करोड़ डॉलर और चीन को होने वाला निर्यात 64.57% की भारी बढ़त के साथ 220 करोड़ डॉलर हो गया। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में यह जानकारी दी। राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्किन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024-2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है।
2: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण का प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किला में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। इस वर्ष का समारोह वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा और इसकी मुख्य थीम विकसित भारत एट 2047 के लिए युवा शक्ति है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 1500 कैडेट ने आज शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंजाब और चंडीगढ़ में तिरंगा यात्राएं बड़े उत्साह के साथ निकाली गईं। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज राजधानी में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में दिव्यांगजनों के साथ एक विशेष संवाद का आयोजन किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उनके अनुभवों को सुना और उपलब्धियों की सराहना की। इस विशेष सभा में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों से जुड़े दिव्यांगजन शामिल हुए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग ने इस महीने की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा

0: चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, केरल और माहे में गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी गरज के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई। ईशानी के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
2: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार बारिश ने कई उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सिमलीपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बूढ़ा बलंग नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मयूरभंज में घर डूब गए हैं और कई गांव तथा बारीपदा शहर के कुछ हिस्से अलग थलग पड़ गए हैं। केंदुझर में पटना और अनंतपुर के पास बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मयूरभंज के कुछ हिस्सों में सड़कें डूब गई है और एक पुल बह गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इस डिप्रेशन के उत्तर पश्चिम की ओर गंगा के मैदान इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर गुजरने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर नांदेड़ के मुगत स्थित गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी से वापसी के दौरान हाथ में चोट लगने के बाद उनका महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं तो वे और भी बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदर्शनकारियों द्वारा 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना के मद्देनजर रांची प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिता में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM बैंड के 103.4 MHz पर स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए लोकधारा के अंतर्गत भोजपुरी लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आपने अनुपमा शरण की गाई रचना सुनी। इसके पहले आपने ललन सिंह गहमरी को सुना। कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं धरणीधर शुक्ल और साथी।

धरणीधर शुक्ल और साथियों की गई इसी भक्ति रचना के साथ ही लोकधारा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, महफिल। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में सबसे पहले गुलाम अली की गाई ये रचना।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

ये थे अनूप जलोटा और आपने राही कानपुरी का लिखा गीत सुना। और अब इन्हीं रचनाओं के साथ ही हमारी आज की ये महफिल अब यहीं संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के प्रसारण। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

भारतीय सिनेमा की नामचीन अदाकारा वैजयंतीमाला बहुआयामी प्रतिभा संपन्न कलाकार हैं। अभिनय के अलावा भरतनाट्यम, कर्नाटक संगीत गायन और नृत्य निर्देशन में अपनी कामयाबी साबित करने के बाद जन प्रतिनिधि के रूप में भी अपनी एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने शानदार अभिनय और नृत्य में अपनी दक्षता के रहते वैजयंतीमाला ने फिल्म जगत में बनाई अपनी विशिष्ट पहचान।

सिने जगत में वैजयंती माला ने 16 बरस की आयु में अभिनय की शुरुआत जिस फिल्म से की वो थी 1949 में आई तमिल फिल्म वजकई। अगले ही बरस 1950 में उन्होंने तेलुगु फिल्म जीवितम में काम किया। अपनी प्रतिभा से वैजयंती माला ने दक्षिण भारतीय फिल्मों में तो कामयाबी के शिखर छुए ही, मुख्य धारा के हिंदी सिनेमा की भी वो बेहद लोकप्रिय और सफल अभिनेत्री साबित हुई।

13 अगस्त सन 1933 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत की मद्रास प्रेसिडेंसी के ट्रिप्लिकेन में जन्मी वैजयंतीमाला की शुरुआती फिल्म मंगामा सबाथम बहुत सफल रही। सन 1951 में रिलीज हुई वैजयंतीमाला की पहली हिंदी फिल्म बहार।

फिल्म बहार के 3 बरस बाद वैजयंतीमाला की यादगार फिल्म आई नागिन। राजेंद्र कृष्ण के गीतों और हेमंत कुमार के संगीत से सजी इस फिल्म के गाने आज भी बेहद लोकप्रिय हैं।

0: सन 1955 में आई शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर कृति देवदास पर इसी नाम से बनी बिमल रॉय द्वारा निर्देशित फिल्म, जिसमें वैजयंतीमाला ने निभाई चंद्रमुखी की भूमिका।
1: इतने कपड़े लगते, पेटी बिस्तर की जरूरत तो नहीं थी मुझे।
2: जरूरत थी या नहीं, ये मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ।

0: देश में एक दासी की तो जरूरत होगी, मुझे भी साथ ले चलो।
1: ये हो ही नहीं सकता चंद्रमुखी, दुनिया तुम पर उंगलियां उठाएगी और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा।
0: मगर मुझे बहुत फिक्र हो रही है, तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं, परदेश में अकेले कैसे जाओगे, कैसे रहोगे?
1: मैंने धर्मदास को खत लिख दिया है, वो स्टेशन पे मुझे मिल जाएगा।
0: मुझे एक वरदान दोगे?
1: क्या?
0: अब कभी शराब नहीं पियोगे?
1: वादा तो नहीं करता चंद्रमुखी, लेकिन तुम्हारी बात याद जरूर रखूंगा।
0: सुनो, जहां भी रहो, अगर तुम्हारा शरीर जरा भी खराब हो तो इस दासी को जरूर खबर दे देना।
1: अच्छा चंद्रमुखी, देखो ये रख लो अपने पास।
0: नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं।
1: जरूरत है या नहीं ये तो मैं जानता हूँ। देखो चंद्रमुखी, जीने का तो कोई भरोसा नहीं, तुम क्या मझदार में डूबोगी? ये अपने पास रख लो और कुछ मत कहो।

0: होगा।
1: कौन जाने, पर जब तक मैं जिंदा हूँ चंद्रमुखी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकूंगा। तुम्हें देखने की प्यास कभी नहीं बुझेगी। न जाने पाप और पुण्य के विचार करने वाले तुम्हारे बारे में क्या फैसला करें, लेकिन अगर मरने के बाद मेल होता है तो मैं तुमसे कभी दूर नहीं रह पाऊंगा।
0: उसी जन्म के इंतजार में जिंदगी गुजार दूंगी।
2: शरद बाबू की जैसी कालजयी कृति है देवदास, उस पर बनी फिल्म भी उतनी ही खूबसूरत है।

फिल्म देवदास के लिए वैजयंतीमाला को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार देने की घोषणा हुई, लेकिन वैजयंतीमाला ने यह कहकर पुरस्कार अस्वीकार कर दिया कि उनकी भूमिका सह अभिनेत्री की नहीं बल्कि मुख्य भूमिका जैसी ही थी। फिल्म फेयर पुरस्कार अस्वीकार कर देने वाली वो पहली कलाकार थीं। इसके बाद वैजयंतीमाला की कई कामयाब फिल्में आईं। ये थीं न्यू दिल्ली, नया दौर और

1958 में वैजयंतीमाला की दो चर्चित फिल्में आईं, जिन्हें दर्शकों और फिल्म समीक्षकों की भरपूर सराहना मिली। इनमें से एक थी फिल्म साधना।

0: लगभग इसी दौर में वैजयंतीमाला तमिल सिनेमा में वापस लौटी और उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया। सन 1961 में मूल रूप से दक्षिण भारतीय सिने कलाकार वैजयंतीमाला ने गंगा जमुना में काम किया, जिसमें उनके संवादों में भोजपुरी का रंग था। उन्होंने इस फिल्म में बहुत समर्पित होकर काम किया। गंगा जमुना को फिल्म समीक्षक उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनते हैं। फिल्म गंगा जमुना में अपने शानदार अभिनय के लिए वैजयंतीमाला को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार।
1: बीच रस्ते में हुड़दंग मचा रहे गुंडे के लिंके।
2: अरे देख रही धन्नो, हम अपने मुन्ना के लिए फाउंटेन लावा है।
1: फाउंटेन लावा है, चलत ना ही सारे सेके निकाल दे हो एक मिनट में।
2: अरे बाह रे महारानी, बाह फोकट का माल लूट के लाई रही बजरिया से का?
1: फोकट का नहीं, इकन्नी दिए हूँ, इकन्नी चार पैसे खून पसीना एक करके। हाँ
2: अरे इकन्नी देखी है कौन दिन?
1: हाय हाय, तेली का तेल जले, मसालची की छाती फटे। तोरी छाती काहे फटे रे? एक मिनट इको समझाए दियो,
2: नहीं तो का तोप दम कर देगी।
1: ये हाथन में कांच की चूड़ियां नहीं, लोहे के कड़े हैं, कड़े दिखा।
2: तो ये हाथन में भी मेहंदी नहीं लगी है देखा?
3: अरे ज्यादा चिपड़ चिपड़ लग कर।

0: सन 1964 में भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर लेकर आए अपनी फिल्म संगम। इस फिल्म में राज कपूर और वैजयंती माला के अलावा राजेंद्र कुमार ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रेम त्रिकोण पर आधारित इस फिल्म में वैजयंती माला जी को किस तरह अभिनय के लिए राजी किया गया, इस बारे में एक दिलचस्प प्रसंग का जिक्र करते हुए अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राज कपूर के अभिनेता पुत्र ऋषि कपूर।
1: संगम में मुझे एक किस्सा बताया गया था कि जब वैजयंती माला जी को साइन करने की इच्छा थी उन्हें, तो उन्होंने टेलीग्राम भेजा वैजयंती माला जी को कि बोल राधा संगम होगा कि नहीं, यानी कि ही वांटेड हर टू प्ले द लीड इन संगम। उन्होंने टेलीग्राम वापस भेजा होगा होगा होगा।

फिल्म संगम में अपने अविस्मरणीय अभिनय के लिए वैजयंतीमाला ने तीसरी बार पाया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार।

फिल्म संगम के बाद वैजयंतीमाला की एक और महत्वपूर्ण फिल्म आई आम्रपाली। आम्रपाली में वैजयंतीमाला के नायक बने सुनील दत्त। इस फिल्म के गीतों को यादगार धुनों से सजाया शंकर जयकिशन ने।

गीत संगीत अभिनय हर तरह से बेहतरीन होने के बावजूद फिल्म आम्रपाली को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। लेकिन फिल्म आम्रपाली का संगीत आज भी कालजयी है।

अपने करियर के ढलान में भी वैजयंतीमाला ने कई खूबसूरत फिल्मों में काम किया। ये थी सूरज, ज्वेल थीफ, प्रिंस और संघर्ष।

सन 1968 में वैजयंतीमाला ने चमनलाल बाली से विवाह किया। विवाह के बाद 1968 से 1970 के बीच उन्होंने अपनी कुछ फिल्मों की शूटिंग कर उन्हें पूरा किया। इन फिल्मों के नाम हैं प्यार ही प्यार, गंवार और प्रिंस।

वैजयंतीमाला जी का एक बेटा है जिसका नाम है सुचेंद्र बाली। स्थायी रूप से चेन्नई में बस चुकी वैजयंतीमाला ने सहयोगी लेखिका ज्योति सबरवाल के साथ मिलकर लिखी अपनी जीवनी बॉन्डिंग। वैजयंतीमाला जी की फिल्मों से, उनके अभिनय से दर्शकों की जो बॉन्डिंग है वो अटूट है।

0: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला पर। कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रस रंग। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आबिदा परवीन की गाई अमीर खुसरो की इस रचना से।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से हिंदी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रस रंग। आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में एक रचना।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं सोनू निगम।
2: कुछ बातें अनकही दिल में दबी रह जाती हैं, जो कभी तपिश कभी खलिश और कभी घुटन बनकर हमेशा सताती हैं। इसीलिए जो कहना है कह दो, वरना ये अनकही यादें बनकर तमाम उम्र तुम्हारा पीछा करेंगी।

अभी आपने सोनू निगम का गाया यह एल्बम सॉन्ग सुना, और इसी के साथ ही हिंदी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रस रंग अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम चित्रपट तराने। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त संजय चतुर्वेदी। स्वीकार कीजिए हमारा सप्रेम नमस्कार। रास्ते यूं ही बढ़ते जाते हैं, वक्त गुजरते जाता है, मंजिल सामने होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि पांव उठाना ही मुश्किल हो जाता है। जिंदगी के इस जद्दोजहद में बहुत सारी चीज़ें वैसी हैं जो चाह कर भी इंसान पा नहीं पाता, खास करके तब जबकि दिल लगाने की बात हो, मोहब्बत की बात हो, दिल लगी की बात हो। स्वार्थ से अलग हटकर निस्वार्थ भाव की मोहब्बत ही सच्ची मोहब्बत है।

बहारें मिलन का आमंत्रण है, मौन ही सही निमंत्रण तो है। शब्दों की सीमा के उस पार की दुनिया से कोई बुलावा तो हो, ताबादामा तेरे कूचे से गुब्बार आए तो, फूल बरसाए ना बरसाए बहार आए तो।

बीते हुए लम्हों को एक पास लाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत हो और बहारों को बुलाकर कुछ इस तरह का माहौल बने कि कलात्मकता की आंधी चलने लगे।

तो श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ ही आज का चित्रपट तराने कार्यक्रम से संजय चतुर्वेदी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। एक नज़र हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। प्रातःकालीन प्रसारण सभा में आप 7:30 पर सुनते हैं प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास, और 8:20 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार आप सुनते हैं सुबह 8:45 पर, और 9:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम गीत मालिका। दस बजकर पाँच मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम

खेल खिलाड़ी सांध्यकालीन प्रसारण में 5:10 पर आप सुनेंगे माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा सशस्त्र सेनाओं को दिए गए संदेश का प्रसारण। शाम 7:00 स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र की जनता के नाम संदेश का प्रसारण सुनिएगा। इसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अब एक नज़र कल के मौसम पूर्वानुमान पर। जी हां, कल का संभावित अधिकतम तापमान है 33°C और न्यूनतम तापमान है 28°C। कल हवा की रफ्तार 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और आर्द्रता 80% रहने की संभावना है। आसमान में बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 MHz पर। रात्रि के 11:00 को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद का मानसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
2: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या हम बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार

0: इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नियांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी बल दिया। डॉ जयशंकर ने नई दिल्ली में लाइबेरिया के दूतावास के उद्घाटन पर विदेश मंत्री नियांती को बधाई दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा ए हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने आज विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य समेत कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. The monsoon session of Parliament has concluded with both houses being adjourned sine die today. The session began on July 20 and saw a total of 19 sittings over 25 days. In all, 12 bills were passed by the Parliament, including the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill. In his concluding remarks, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan expressed concern over the repeated disruptions in the House. He said the House managed to fulfill its core legislative duties by passing and returning 12 bills. Mr. Radhakrishnan informed that the House functioned for only 37 hours and 49 minutes.
2: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 starred questions, 380 zero-hour submissions and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions and 93 special mentions could be taken up.
1: Earlier, the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 was passed by the Parliament, with the Rajya Sabha approving it today. Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy moved the bill to further amend the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has accused the opposition of running away from discussions in Parliament when the government was ready for it. He said the conduct of opposition MPs is not good for democracy, especially for parliamentary democracy. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Rijiju said that parliament is meant for debate, discussion and legislative business, but continuous sloganeering and protests had affected the functioning of the House in the monsoon session. Mr. Rijiju said that 12 bills were passed during the monsoon session, but only one of them was discussed in both houses. He stated that during this session, productivity stood at 19% in the Lok Sabha and 39% in the Rajya Sabha. President Draupadi Murmu will address the nation on the eve of the 80th Independence Day tomorrow. The president's address will be broadcast at 7 p.m. on the entire night.